सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948, श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:58:45 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र

0: 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रकृत्यात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भारत के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विशेष वंदना। प्रस्तुति असीम सक्सेना की है।

स्वर्ग से सुंदर देव भूमि है, चरणों में सागर लहराया, नील गगन है छत्र सुशोभित, सबने इसका गौरव गाया। हमारी शस्त्र श्यामला धरती माँ, हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि भारत माता, जिसे ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, जहाँ देवता भी मानव रूप में जन्म लेने को आतुर रहते हैं। हिमगिरी शीर्ष मुकुट है तेरा, सिंधु चरण रज धोता है, जब मुस्काती तू खुश होकर तभी सवेरा होता है। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जन सब मातृ वंदना करते हैं, दिव्य अलौकिक ज्ञान बांटकर जग आलोकित करते हैं। पावन भारत भूमि को हमारा

अनेकता में एकता, वो विचारधारा है जो भारत की महान संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भारत भूमि पर बहुजन हिताय और वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावनाएं कण कण में रची बसी हैं। जो हमारे पास है सब कुछ वतन के वास्ते, क्या अजा अरदास व्रत पूजन वतन के वास्ते, हर खुशी तेरी तेरे सम्मान हित तैयार है। आज हम हर त्याग हर बलिदान को तैयार हैं। पावन मातृभूमि को हमारा बारंबार प्रणाम है।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम जीवंत संस्कृति है। भारत की पावन माटी में हमें जन्म मिला, इसका गर्व है हमें। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस संबाल काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों ना हो मोद में।

अन्नपूर्णा है हमारी धरती माता, वन उपवन यहाँ तक कि पुष्प की भी अभिलाषा है तो बस ये कि वो अपने देश के काम आए। उषा काल में कमल हैं खिलते, पंछी कलरव करते, जलद तरंगे लहराती हैं, झरने गीत सुनाते, संध्या रानी लोहित पीतांबर में है इटलाती, नव जीवन का सुखद संदेशा लेकर लाली आती, ध्वजा तिरंगा चक्र है नीला बिखराता निशान, प्यारा भारत देश हमारा ये है दिव्य महान। ये तिरंगा शाम से उन्मुक्त गगन में लहराता रहे यही प्रार्थना है।

ज्ञान कला और संस्कृति की त्रिवेणी है हमारी पावन वसुंधरा, हमारी जन्मभूमि। प्रकृति ने जहां अपना अद्भुत सौंदर्य लुटाया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, महान मातृभूमि को शत शत वंदन।

0: अभी आप स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विशेष वंदना सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। कलाकार हैं शोभा जोशी और संगीत सतीश भाटिया का है।
1: एपिसोड 235 2-3-5।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग सुन रहे थे। कलाकार थी शोभा जोशी और संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 में हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: स्वतंत्रता सार्वभौमिक है। स्वतंत्रता का अधिकार कोई किसी से नहीं छीन सकता। और भी अनेक मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हमें हुई और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई और अधिकारों के प्रति जागरूकता से हमारी उपलब्धियां भी बढ़ी। संविधान लागू हुआ और जन जन के कल्याण के लिए उसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए आज हम स्वतंत्र हैं। उपभोक्ता होते हुए अन्य अनेक अधिकारों की प्राप्ति हमें हुई और अब सूचना का अधिकार भी हमें प्राप्त हो चुका है। को नृप हो हमें का हानि, इस मानसिकता से उबर कर आज हमारा सचेत होना बहुत जरूरी है। वोट देने के अधिकार से हमें किसी भी जाति, दल या फिर धन के प्रलोभन से उठकर सही उम्मीदवार को सफल बनाना चाहिए और इस देश की बागडोर सुरक्षित हाथों में सौंपकर अपना अहम दायित्व पूरी तरह निभाना चाहिए। अधिकारों की फहरिस्त अगर हम दोहराने बैठेंगे तो शायद थक जाएंगे, लेकिन जब दायित्वों को निभाने की बात आती है तो उसे नजरअंदाज करने में हम नहीं थकते। कार्यालय के कार्यों के दायित्वों से लेकर घर तक के दायित्वों में एक आम नागरिक होते हुए हम पर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हम अपनी सुख सुविधाओं के सामने गौण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यदि किसी विभाग की किसी खामी पर नजर पड़ जाए तो उस पर तीखी टिप्पणी करते हम नहीं चूकते। विकासशील अपना ये देश असंख्य समस्याओं से जूझ रहा है और प्रत्येक नागरिक का आंशिक योगदान मिलकर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है, परंतु भ्रष्टाचार, जमाखोरी, टैक्स की चोरी और न जाने कितनी सामाजिक बुराइयां हमारे मन पर अधिकार कर चुकी हैं कि हम स्वयं को स्वार्थ के घेरे से निकाल नहीं पाते। आज हमें ये नहीं भूलना है कि विज्ञान के क्षेत्र में जहां हम पहुंचे हैं तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमें रचनात्मक कार्यों में ही करना है। जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है और जियो और जीने दो का संदेश ये प्रकृति भी हमें देती है। यदि वृक्ष का दायित्व छाया और फल देने का है तो उसको हवा, मिट्टी और खुली धूप पाने का अधिकार भी तो है। पर वृक्ष शिकायत नहीं करता। जीवन रस सूख जाने के बाद भी लकड़ी बन अपना जीवन अपने दायित्व के लिए चुका देता है। जरा सोचें, यदि ऐसी स्थिति हमारी हो तो हम तो आक्रोश से भर उठेंगे और न जाने किस किस से शिकायत करेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना इन योजनाओं को सफल बनाना ही है, लेकिन जरा सोचिए, सार्वजनिक स्थलों पर तोड़फोड़, समय पर आयकर जमा ना करना और अपने दायित्वों की अहमियत को ना समझकर क्या हम एक सही नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं? कुछ पाने से ज्यादा कुछ देने में सुख मिलता है, इसका अनुभव करना हो तो अपने देश के स्वर्णिम अतीत की ओर देखें, जो भरा है निस्वार्थ सेवा की सुनहरी कहानियों से।
0: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है काव्यधारा। काव्यधारा में श्रोताओं आज आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक कुमार का काव्य पाठ।
2: आज स्वतंत्रता दिवस के

सारे पथ पर हम चलते दीप हैं, अंधियारे पथ पर हम जलते दीप हैं, ओषकणों को रत्न बनाते सीप हैं, अंधियारे पथ पर हम जलते दीप हैं, ओषकणों को रत्न बनाते सीप हैं, एक तिरंगा सांस और विश्वास है, एक तिरंगा सांस और विश्वास

अभी आप डॉक्टर अशोक कुमार का काव्य पाठ सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में संस्कृत में समाचार होंगे।

0: मां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्य आवश्यकता अनुभूता। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रही हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण ने, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चले।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
3: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व

0: करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहाँ बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहाँ पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की मंद बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है

0: और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है, उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ, केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहाँ से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहाँ से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहाँ पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक तक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है, अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं। एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है

0: जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों, और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

फोर्थ कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे

0: देखते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर्भ टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधैव वे कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर। विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से माँ भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए। और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ।

0: मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यही हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहां चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायक

के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम में साहस सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय।

अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

0: पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अठखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम। और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए, बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में, पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखार बिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तरफ त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं

श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। अरे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि

कोटि नागरिकों ने दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पार करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उसमें डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि आप 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। सारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं।

नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। ये क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी।

एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य पर जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने 5 ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में चढ़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 107

8 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं। हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने इन एक दशक के अंदर 70% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में इतने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का, कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने

देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास फिर पॉलिटिकल मैंडेट है, फिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं,

मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का 1/4 हिस्सा बीत चुका और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैपिटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो,

0: आकर्षित करने वाला हो।
1: हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेनर, हर एमएसई से, एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे पाल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा, और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में
0: दुनिया

जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आयोग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना

करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है, हम ये काम आराम से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश जाने सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है,

0: स्टार्टअप इंडिया अभियान,
1: आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए।
0: देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं,
1: अनेकों को रोजगार दे रहे हैं।
0: 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ₹2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण

देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। तो मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुलता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी

भी मनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हम हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकड़ा, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेतृत्व बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर

करके डेटा सेंटर को जा करके एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्री या तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे देखकर दिखाई दे रही है। सेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सानंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर
100 करोड़

देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बजी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाला। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती है। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता।

की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मदद और वो सामने से
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे, और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते

0: हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने की भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश की युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष

0: अवसर होता है, क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए, जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो है बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
0: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं उनकी योजनाएं रही हैं उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव

0: किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहां थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमा में मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें

0: बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाई ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं, और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60

0: करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
1: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
0: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:17 हुए हैं। श्रोताओ, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयास

0: की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्र तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत

0: बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
1: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना

0: शीर्ष समाचार बनाया है, परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है, तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards including 13 posthumous for defence and central armed police forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Galle.

0: And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: Aaj jab hum desh ke log Vande Mataram ke 150 varsh mana rahe hain to isse bada uttam avsar kya ho sakta hai. Pichle dinon देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं. पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं.
0: Prime Minister said, a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है. मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं. हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है. मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पार करके गरीबी से बाहर निकले हैं.
0: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है.
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में defence production करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया. इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े.
0: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी.

0: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: Desh azad hone ke baad विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चिप का महत्व हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना है, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: I would like to remember that time when the country of Bharat's strength was in the form of the Sapt-Sindhu. We knew, we understood, we listened. अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज। For quick news updates round the clock, follow us on our X handle, AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website, www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to The Morning News. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of unfair means in public examinations. Addressing the nation on the eve of the Independence Day, she said students are the architects of India's future and government is making the system more transparent, secure and trustworthy for the youth.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure and more trustworthy for the youth.
1: President Draupadi Murmu has approved 78 gallantry awards to the person

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान तेजी से तरक्की की है, जिनमें डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और समाजी बहबूद के शोबों में पेशरफ्त काबिले जिक्र है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने 78 बहादुरी इनामात को मंजूरी दी है, जिनमें दिफाई और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज अहलकारों के 13 बादज मर्ग इनामात भी शामिल हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से गाले में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आजादी तकरीबात की कयादत की। वजीर आजम की लाल किला आमद पर पहली मरतबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वजीर आजम ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया। परचम कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की पंखुड़ियां निछावर की गईं। इस साल की यौम आजादी तकरीबात साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर में यंग इंडिया के तावुन के इतराफ के तौर पर युवा शक्ति को भी तस्लीम करती है। लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली मरतबा लाल किले की फसील से वंदे मातरम गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सैलाब और चट्टाने खिसकने के वाकयात हुए हैं, जिससे कई कुनबे मुतासिर हुए। वजीर आजम ने सभी मुतासिर कुनबों को यकीन दिलाया कि मुल्क उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 वर्षों में मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने मुसम्मम इरादे और लगन के साथ मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के सबब 25 करोड़ अफराद ने गरीबी से निजात हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत, जो कभी 5 कमजोर मईशतों में शामिल था, आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बन चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक बड़ा हदफ अपने सामने रखा है और वो है साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना, और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि खादी और देही सनत की पैदावार में 5 गुना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7 गुना, जदीद रेलवे कोच की मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना और मोबाइल फोन तैयार करने में 33 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सारिफिन की

0: बाद में भी तकरीबन चार गुना, जबकि डिजिटल माली लेन देन में जबरदस्त 100% इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद और बुनियादी जरूरियात के तई यकसां संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हजारों जाब्ता जाति तामीली तकाजों और सैकड़ों फरसुदा कवानीन को मनसूख करके तर्ज हुक्मरानी में भी गैर मामूली तब्दीलियां की हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: वजीर आजम ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन होते हुए कई गैर मुतवक्के बहरानों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कोविड-19 वबा और यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजों के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन बहरानों के दौरान टीकों, ईंधन, गैस, डीजल और फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों के दरमियान खौफ फैलाने की खातिर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत की मंसूबाबंद पॉलिसियों, तैयारियों और बरवक्त इकदाम से मुल्क ने इन चैलेंजों का बखूबी सामना किया। वजीर आजम ने कहा कि नागरिक देवो भवा के नजरिए को सामने रखते हुए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि पिछले दहाई के दौरान किए गए इंतजाम बहरान के वक्त में मुअसर साबित हों। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के पास गैस, पेट्रोल और यूरिया की अच्छी सप्लाई मौजूद है और मुल्क अपनी सलाहियतों की ताकत की बुनियाद पर इतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कई मौकों पर मुल्क वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि वो अपनी महदूद सोच की वजह से रुक जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत को खाम तेल पर मुनहसर होना पड़ रहा है और ये भी महदूद सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साहिली इलाकों के 99% को खोल दिया है जहां पहले कोई नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत समंदर की गहराइयों में नए वसाइल तलाश कर रही है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा वक्त की अहम जरूरत है और हुकूमत ने इस समत कई ठोस इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई मुल्क की तवानाई फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम जरिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत 2047 तक न्यूक्लियर बिजली की सलाहियत 100 गीगावाट के हदफ को हासिल करने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत इस दहाई के दौरान 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का हदफ रखता है।
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं जिससे भारत के ताजिरों और बरामदकारों के लिए वसी मवाक़े पैदा हुए हैं। वजीर आजम ने मुल्क की बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों MSMEs से कहा कि वो इन मवाक़े का भरपूर इस्तेमाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत का सामान पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचे। वजीर आजम ने कहा कि आज हर भारतीय मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की लगन के साथ काम कर रहा है।
1: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
0: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के अवाम से सप्त धारा के नाम से ताकत और कुव्वत की 7 धाराओं पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में मुल्क वो सब हासिल कर लेगा जो पिछली 5 से 7 दहाइयों में हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की ताकत और सलाहियत के साथ हुकूमत मुल्क को नई बुलंद

0: पर ले जाएगी और मुल्क को नए हदफ हासिल करने के काबिल बनाएगी। वजीर आजम ने पहली धारा को मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की दूसरी ताकत ज़राअत और ग़िज़ाई पैदावार है, तीसरी टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, चौथी गतिशक्ति, पांचवी दिफाई सलाहियतें, छठी ताकत सब्ज मईशत और समंदरी मईशत है और सप्त धारा की सातवीं धारा भारत का सकाफती विरसा है।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरबियत उन नौजवानों को मस्नूई जहानत के आलमी शोबे में क्यादत के काबिल बनाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को 3 चीजों, कीमत, मेयार और हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज करना होगी।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: वजीर आजम ने कहा कि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सलाहियतों को पहचानने के लिए गांव, शहरों और स्कूलों में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुनर की शिनाख्त की जाएगी और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज खेलों की दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत साल 2030 में दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वीं यौमे आजादी के मौके पर कल शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामी इकदामात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौमे आजादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बादज मर्ग दिए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
3: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने मुल्क के 80वें यौम आजादी के जश्न और सदर जमहूरिया के यौम आजादी से कबल कल शाम कौम से खिताब को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप की 6 सुर्खी है। सदर जमहूरिया के बयान पर मबनी है युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी दौलत, सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत आज अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज 7 निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल, कहा विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना के साथ धूमधाम से मना रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय है वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदान की महान परंपरा को जगाने वाले क्रांतिकारियों को नमन किया।
4: देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा, अपने तप त्याग और बलिदान आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वतंत्र सेनानियों को, बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
3: श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम गूंज रहा है, ये देश के लिए उत्तम अवसर है।

0: सबके लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: इस बीच प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा भवन के सामने आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल शाम एक बधाई संदेश में कहा कि स्वतंत्रता का ये पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करने की अपील की। उधर प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया गया और विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की

0: पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। उन्होंने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी गई है।
0: पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है।
0: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। यह युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जिलों में कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विविध आयोजन किए गए। इस दौरान देश के विभाजन की त्रासदी को इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर कल लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्याय में एक है। उन्होंने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा।
2: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। ये हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं।

0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है, इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीडी सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इनमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल हैं।

मुंबई के घाटकोपर में बारिश के दौरान कल मकान पर पेड़ और पत्थर गिरने से जौनपुर जिले के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार बदलापुर तहसील क्षेत्र के इनामीपुर गांव का रहने वाला था। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल, कहा विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार, नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10:20 होने को हैं। श्रोताओ, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप समोस्वर में देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10:25 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

कार्यक्रम जिंदगी लाइव का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से आज दिन में 12:05 पर। कार्यक्रम में आज का विषय होगा स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां।

महिला जगत का प्रसारण समय रहेगा आज दिन में 1:15 पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद बिजनौर और नजीबाबाद तहसील्स में आयोजित कार्यक्रमों की स्थलीय रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण समय रहेगा आज दिन में 1:45 पर। वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग होगा नमित राज और जसवंत सिंह का। प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कवि गोष्ठी का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से आज दिन में 2:30 पर। कवि गोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे श्री विनोद भ्रंग, श्री वीरेंद्र आजम, श्री नरेंद्र मस्ताना। कवि गोष्ठी का संचालन करेंगे श्री हरिराम पथिक।

शोधव आज शाम 8 बजे हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।

कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत आज की हमारी जानकारियां होंगी ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कार्यक्रम का समय रहेगा हमारे केंद्र से आज शाम 5 बजे। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा आज शाम 5:15 पर। कार्यक्रम के आकर्षण होंगे स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आवाज आज़ादी की, आलेख शुमाइला परवीन का, प्रतिभागी कलाकार होंगे शुमाइला, श्रेया विश्वास, नंदई माहेश्वरी, दिव्यम, मोहित और दीपांशु। प्रस्तुति होगी शोभित शर्मा की।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्तिपूर्ण लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम माटी मारे देश की

0: श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान और हमारे साथी
1: मनोज वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओ, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम को और भी हसीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी श्री मनोज वर्मा जी।
1: धन्यवाद फैजुर। और भाई, हमारा काम है दोनों का कि हम अपने श्रोताओं से मुखातिब हों, लेकिन श्रोताओं हम आपको बता दें, और फैजुर आप तो सुबह सवेरे से हमारे श्रोताओं की सेवा कर रहे हैं, है ना, और अब अपने श्रोताओं से हम जुड़े हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर अपने सभी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं पहले हम दे दें।
0: जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रोताओ आप सभी को। और देश मना रहा है आज 80वां स्वतंत्रता दिवस,
1: और ये दिवस मना रहे हैं हमारा देश, और सभी तरफ बहुत खुशी है, सभी तरफ
0: तिरंगे की शान लगातार पूरे मैं देख रहा था सुबह नजीबाद में आते हुए।
1: जी,
0: वाकई छोटे छोटे बच्चे और सब लोग सरोबोर हैं इस वक्त आजादी की इस मदहोशी में, जो हमने बहुत ही श्रोताओं कठिनता से पाई। और वाकई वो क्या ताबीर रही कि आज हम उस खुली हवा में सांस ले पाते हैं।
1: और ये विरासत है फैजुर रहमान, मैं ये कहूँगा।

0: और हमारा हक है कि हम इस विरासत को जिंदा रखें, है
1: बेशक,
0: ना।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: सभी युवाओं से, अपने देशवासियों से हम ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि
1: जी
0: वो इस ओर ध्यान दें और देश को विकास में अपना पूरा योगदान दें, तभी तो हम
1: जी
0: 2047 तक विकसित भारत
1: भारत
0: की
1: की ओर
0: तरफ बढ़ेंगे। और यही
1: बिल्कुल
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज के संदेश में अपना उनका बयान था।
1: जी, सभी देशवासियों के लिए उन्होंने यही संदेश दिया है कि अपना काम हम ईमानदारी से करें और जो जहां है वहां अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें।
0: तो बातें तो बहुत हो गई हमारे श्रोताओं से फैजुर रहमान, और ये भी हम कहेंगे कि भाई हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। और एक खास बात ये है कि अपनी जो आज़ादी हमें मिली है, हमारे जो शहीद रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके इस आज़ादी को हमें दिलाया है, और हम एकदम एक खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सब ये उन्हीं का किया धरा है, उन्हीं का
1: बिल्कुल
0: कर्म है। इसको
1: जी,
0: हमें संभाल कर रखना
1: रखना
0: है,
1: होगा जी,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आज़ादी को उनके कामों को हम भूल जाएं।
1: जी
0: और आज़ादी हमें भूलनी भी नहीं चाहिए ना।
1: बि बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं के लगातार मैसेज मिल रहे हैं फैजुर रहमान, और
1: जी जी
0: ये सभी श्रोता हमें
1: जी
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो ये
1: जी
0: पहला मैसेज हम पढ़ेंगे गीत, तुम्हारे कार्यक्रम के पहले गीत के लिए, तो ये मैसेज पढ़िएगा फैजुर रहमान साहब।
1: जी श्रोताओं, ये मैसेज हमें मिला है प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पी हो कुमार, विमल कुमार, आप हमें ये मैसेज भेज रहे हैं पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज बिहार से। और ये इनके साथ हैं नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से, ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता, लाडो, दीक्षा, देव, दिव्यांशु और डब्लू। तो आइए जो है मनोज जी और दूसरे पत्र की ओर भी हम चलते हैं। ये दूसरा पत्र हमारे पास आया है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय का, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। मोहल्ला अफगानान शेरकोट से हमारे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप माध्यम से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार हमारे साथ व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ चुका है। लोरमी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं कमल कांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और आपने हमें ये मैसेज भेजा है धनौरी तेलीवाला से।
0: इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता भी हैं, और लगातार हमें मैसेज मिल रहे हैं। पुराने बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर के श्रोता हैं हमारे मोहम्मद ताहिर और इदरीस हिलाल, जैन प्लांट देहरादून से इनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कहाँ कहाँ से हमारे श्रोता
1: जी
0: जोड़कर ये मैसेज लगा रहे हैं। इसके अलावा ये मैसेज मुझे मिला है, ये मैसेज कुम्हार रेहड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप सब श्रोता भी हैं, आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता हैं हमारे राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा भी इनके साथ में हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे बिल्कुल श्रोता हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ के, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी के साथ पूरा ही हाशमी परिवार हमें यह मैसेज कर रहा है। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं, शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं ये, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी के साथ।

0: का पूरा परिवार और परिमहल काजगंज के हमारे श्रोता हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और इनका साथ में जो जुड़े हुए हैं मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और मीरा सराय बदायूं से इसी में जुड़े हुए हैं आफरीन खान और जमीर खान भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस मैसेज को कर रहे हैं हमारे श्रोता, जी ये मैसेज मुझे मिल रहा है। भाई देखिए, हाँ
1: जी
0: हमारे कुछ श्रोता जो है ना अपनी बात भी लिख रहे हैं कि साहब आपके एक आरजे सुनील वर्मा जी थे उनका और आरजे मनोज वर्मा साहब के बीच कोई लिंक है क्या, ये सवाल हमारे श्रोता पूछ रहे हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, बहुत पुराने हमारे साथी थे वो और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनको याद करने वाले लोग
1: बिल्कुल
0: मौजूद हैं और वो
1: जी
0: हमारे गुरुओं की श्रेणी में रहे हैं। तो ये हमने आपका जवाब दे दिया, धन्यवाद इतनी बात पूछने के लिए। और इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान तायड़े मोहन करांगले जिगांव विदर्भ से, बसंत राव भोजने और पीएस नवाणकर के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप श्रोता भी हैं। चकला बाजार समाना शहर पंजाब के पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। तो एक मैसेज और पढ़ देते हैं फैजुल, उसके बाद अपने श्रोताओं को सुनवा देंगे हम कार्यक्रम का पहला गीत, है ना।
1: जी
0: तो उत्तम नगर दिल्ली के श्रोता हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल और भानु प्रकाश।
1: तो आइए श्रोताओं, इन सब की पसंद पर सुनते हैं फिल्म लीडर का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। नौशाद का संगीत है, गीतकार हैं शकील बदायूनी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लीडर का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। संगीत था नौशाद का और गीतकार रहे शकील बदायूनी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: लोक सेवा प्रसारक।
1: संदेश के बाद एक बार फिर हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के गीत तुम्हारे कार्यक्रम में, जिसमें मैं आपके साथ हूं मनोज वर्मा, और मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे साथी फैजुर रहमान। और एक बार फिर हम अपने सभी सुधीर श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के इस स्टूडियो से। और सिलसिला वही जारी है कि आपके एसएमएस को पढ़ेंगे, थोड़े से खत भी हम पढ़ेंगे, है ना। हालांकि वक्त हमारे पास में तकरीबन 13 मिनट रह गए हैं, लेकिन कोशिश हमारी पूरी ही रहेगी। तो ये मैसेज मैं ले रहा हूँ ग्राम गधारोना से, मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भारत गिरी, मधु गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी, और इनके साथ इनका पूरा परिवार। इसके अलावा कृष्ण की नगरी मथुरा से, वाह साहब क्या नाम हमारे श्रोताओं ने लिखा है, सभा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत। इसके अलावा आप हमें भई हमारे श्रोता कुछ लिख रहे हैं, बस क्या पढ़ेंगे अब इनको हम, है ना। बहुत धन्यवाद आपका जो बात लिख रहे हैं, मैसेज हमने आप ही का खोल लिया था, पहुंच गई आपके पास आपकी बात हमारे पास। और ये कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि भाई आप बहुत सारी बातें लिखते हैं, है ना, अपने छोटे छोटे दिल की बातों को लिखते हैं, तो आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी तो होता है हमारे केंद्र से, यानी कि आने वाले कल होगा 12:05 पर, तो उसमें भी आप लिखा करें, उससे भी आप जुड़ा करें। ये मैसेज मैं ले रहा हूँ बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा के ये हमारे श्रोता हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे ये श्रोता भी हैं, चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप सब श्रोता भी हैं, और उत्तराखंड के ये हमारे नियमित श्रोता हैं, पौड़ी गढ़वाल के उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए आप भी हैं, रविपाल राजपूत, रक्षु राजपूत, वंशल राजपूत, कुहू राजपूत, गांव बेर, थाना शिवाला कलां, बिजनौर के हमारे श्रोता हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। के अलावा ये मैसेज हमें मिल रहा है हमारे श्रोताओं के द्वारा पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सुफियान, अनस, सरोज, चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खां और हादिया खां भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, शिवाजी मार्केट अफजलगढ़ बिजनौर के श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी 10:48 के लगभग, क्षितिज रस्तोगी, हर्ष रस्तोगी, गौरव रस्तोगी, गगन, सम्यक, चिराग, श्रेया और रीना रस्तोगी। के अलावा अगले फरमाइश को पढ़ने जा रहे हैं हमारे साथ फैजुर रहमान साहब
2: जी। ये मैसेज हमारे पास आया है करूला मुरादाबाद से, भेजने वाले हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और सिंधोली मीरगंज बरेली से जुड़े हैं जीशान वारसी। एक और मैसेज हमारे साथ है सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से, लिखने वाले हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी बेबी और हिमांश। ये मैसेज आया है हमारे पास वाशिम महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं मास्टर विठल, सुषमा और परिधि। आइए श्रोताओं इन सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सिकंदर आजम का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हंसराज बहल का संगीत है और गीतकार है राजेंद्र कृष्ण।

कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं आप सब। और लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये गीत आप सुन रहे थे सिकंदर आजम फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। ये अंतिम गीत रहेगा और इसे पसंद करने वाले हमारे आप सब श्रोता हैं खतों के जरिए से। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर के मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, नरगिस, ये मोहम्मद इरफान इसरार और नरगिस खातून जी, ग्राम लुहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के हैं, जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र और आराधना, सहारनपुर दाऊद सराय के श्रोता हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी, दुल्हापुर मुरादाबाद के महबूब दुकानदार साहिबा महबूब और परिवार के सभी सदस्य, कस्बा चिलकाना के श्रोता हैं मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी, कस्बा मीरगंज बरेली के श्रोता हैं भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली के श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी और उनके पूरे साथी, शाही मार्केट सेहरा जिला बिजनौर के श्रोता हैं आसिफ चौधरी, अरफा चौधरी, आदिफ चौधरी, कादिर चौधरी, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम के तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और राना सिद्दीकी, आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, पसंद करने वाले हैं जसपुर उत्तराखंड के श्रोता रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर और ये अनारकली बाजार जगराओं के श्रोता हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और इनका पूरा परिवार, ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर के श्रोता हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निषाद, आयशा, आलिया, सायना, महविश, मोहम्मद अफवान और अदीना नूर के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं मोहम्मद

0: वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, सादा रानी, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाईयां, शेरकोट बिजनौर के, मोहल्ला बकर कसाबान शेरकोट के श्रोता हैं, रऊफ अहमद निसामुद्दीन और उनका पूरा परिवार, इसके अलावा फैजुर रहमान।
1: श्रोताओं, इन सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का ये गीत। सोनू निगम और मोहम्मद वारिस की आवाज़ों में ए आर रहमान का संगीत है, गीतकार हैं समीर।

इसी गीत को पसंद करने वाले हैं मौला धर्मदास नजीबाबाद के श्रोता गुलाम हसन, निशात बानो साबरा, विलायती शहजादी सलमान और शराफत के अलावा नगीना से अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा और गीत अरोड़ा के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांठ रोड लदावली से, इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। रघुनाथपुरा जिला का श्रीगंगानगर राजस्थान के लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी के अलावा इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे आप भी श्रोता हैं। ये श्रोता हैं हमारे मीरापुर बेगा पोस्ट मंडावली तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के हमारे श्रोता हैं और ये श्रोता हैं कासिम पेंटर, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद उवैश, डॉक्टर विजय, रोहतक सिंह और मोहम्मद अकदस के अलावा इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा।

0: श्रोताओ, फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के इसी गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 11 बज रहे हैं, समय है चित्रपट संगीत का। तो सभी श्रोताओं को आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी यानी मनोज वर्मा की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये दिन हम सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं और देश की रक्षा करने का भी संकल्प लेते हैं। हमारा देश अनेकता में एकता रखने वाला देश है, वही विशेषता यहाँ के निवासियों की है। फिलहाल शुरुआत करेंगे एक ऐसे गीत से जिसमें देश का वर्णन है।

0: यही हमारे देश की विशेषता है। ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था वीर जारा। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की थी मदन मोहन ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। A.R. रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। समीर ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है A.R. रहमान ने।

AR रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में आपने सुना द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म का ये गीत। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज दिन में 12:05 पर जिंदगी लाइव कार्यक्रम में हमारा विषय रहेगा स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ये अहम विषय रहेगा आज के इस कार्यक्रम में, तो अपने आप को तैयार कर लीजिएगा और हमें SMS के जरिए आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 12:05 से। तो मैसेज करने के लिए आप हमारा नंबर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 94-570-78-288, ये हमारा नंबर है। तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। विषय आपको एक बार फिर बता दें, स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी। और श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस है और ये स्वतंत्रता दिवस हमें विरासत में मिली है। हमारे देश के शहीदों ने अपनी जान दे दी है ना, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। तो हमारे देश के युवाओं का क्या कर्तव्य है, इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल सिलसिला आगे रहेगा चित्रपट संगीत का, और पेश है कार्यक्रम का

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
4: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
3: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
5: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
6: संदेश आपने सुन लिया, और आज़ादी का पावन पर्व हम मना रहे हैं, हम सब आज़ाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारी भारत भूमि महान है, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, इस पर रहकर पले बड़े हैं और देश के काम आए हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने देश के काम आएं, किसी ना किसी रूप में काम आएं और देश को विकास की तरफ लेके चले जाएं, जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है। हमारी भारत भूमि महान है, और ये बात महेंद्र कपूर साहब ने भी कही है, भरत व्यास के बोलों के साथ, शिवराम के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम कण कण में भगवान। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ थी, फिल्म का नाम कण कण में भगवान। और भाई यही विशेषता है कि भाई हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और सब मिलजुल कर निवास करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और रहने भी चाहिए, यही इसकी अनेकता में विशेषता है। पेश कार्यक्रम का अगला गीत रूप कुमार राठौर और उत्तम सिंह की आवाज़ में।

ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और उत्तम सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम था पिंजर। गुलजार के बोल थे और उत्तम सिंह का ही संगीत था। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म पूरब और पश्चिम से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की। इंदिवर इस गीत के लिखने वाले हैं और कल्याण जी ने इसकी धुन तैयार की है।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत। इंदीवर के बोल थे और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बॉर्डर। आवाजें हैं शंकर महादेव, देवन, सोनाली राठौर और साथियों की। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते थे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते।

0: बॉर्डर फिल्म का यह गीत आपने सुना। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम दिल जले। आवाजें हैं कुमार सानू के साथ आदित्य नारायण की, जावेद अख्तर के बोल हैं और अनु मलिक की धुन है।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

दिल जले फिल्म का ये गीत था। इससे पहले कि हम आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाएं, हम अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आज दिन में 12:10 पर जिंदगी लाइव कार्यक्रम में

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के संदेश पर आधारित कार्यक्रम, है ना, जो संदेश का कार्यक्रम होता है जिसमें हम एक आपसे विषय पर बात करेंगे, आपके विचार जानना चाहेंगे, यानी आपका फीडबैक लेना चाहेंगे। तो विषय सुन लीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, ये विषय रहेगा। और इसी के साथ में आप जोड़ सकते हैं, हम आपको बता दें कि ये आज़ादी हमें विरासत में मिली है ना, हमारे शहीदों ने खून बहाया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। तो आज हमारे देश के युवाओं का क्या दायित्व बनता है, इस पर भी आप हमें लिख सकते हैं, है ना। और ये हम उम्मीद करेंगे कि आप हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। विषय एक बार फिर बता दें, स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, विरासत में यह आज़ादी हमें मिली है, आज हमारे युवाओं का क्या रोल होना चाहिए हमारे देश के प्रति, इस पर भी बात कर सकते हैं। शामिल करेंगे आपकी सभी बातों को। संदेश के लिए नंबर लिख लीजिएगा, 94-570-78-288, ये हमारा नंबर है। और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत।

कर्मा फिल्म के इस गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, 12 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे आज रात 8 बजे।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय रेडियो रिपोर्ट आज रात 10 बजे ये भी कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आज रात 9:23 पर लघु रूपक सिनेमा में कैद आजादी की गूंज हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज के कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्तिपूर्ण लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम माटी मारे देश की प्रसारित किया जाएगा। आलेख अंकित कुमार, प्रस्तुति सहयोग जितेंद्र कुमार और प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकित सैनी।

आज शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आवाज आजादी की सुनवाया जाएगा। आलेख शुमाइला परवीन का। प्रतिभागी होंगे शुमाइला, श्रेया विश्वास, नंदिनी माहेश्वरी, दिव्यम, मोहित और दीपांशु। प्रस्तुति होगी शोभित शर्मा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही विशेष कवि गोष्ठी सुनिएगा आज दिन में 2:30 पर। प्रतिभागी कवि होंगे श्री विनोद भ्रंग, श्री वीरेंद्र आजम, श्री नरेंद्र मस्ताना। इस कवि गोष्ठी का संचालन करेंगे श्री हरिराम पथिक। आज दिन में 1:45 पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद बिजनौर और नजीबाबाद तहसील में आयोजित कार्यक्रमों की स्थलीय रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। वाचन, स्वर और प्रस्तुति सहयोग नमित राज के साथ जसवंत सिंह का होगा और इस रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जिंदगी लाइव। तो जिंदगी लाइव सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस की आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको याद दिलाया ही है चित्रपट संगीत में और गीत तुम्हारे कार्यक्रम में भी कि जिंदगी लाइव का हमारा जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ये अहम विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। यूं तो स्वतंत्रता श्रोताओं हमें विरासत में मिली है, लेकिन अब हमारा

क्या योगदान रहेगा, हमारे युवाओं का क्या योगदान है देश के प्रति, वो देश के प्रति कैसी सोच रखते हैं, किन कामों से वो जुड़ना चाहते हैं या कौन से काम करना चाहते हैं जो देश के हित में हो, है ना। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश के हित की बातों की, है ना, जिससे हमारा देश 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा कर सके। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, और मनाएं भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, वीरों ने इस दिन को लाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और हम सबको आज़ादी के साथ स्वस्थ वातावरण में रहने के लायक बनाया। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारी सोच स्वतंत्र है, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इन सब बातों का विशेष श्रेय उन शहीदों को जाता है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी और हमें बरसों की गुलामी से आजादी दिला दी। आज उन्हें याद करने का दिन है, उन्हें नमन करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। आइए हम सब मिलकर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस वर्ष हम अपने स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ और 80वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। चारों ओर देशभक्ति के तराने गुंजायमान हैं, हर तरफ खुशी की लहर है, तन मन रोमांचित है। आज का विशेष दिन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत गुमनाम नायकों के अमर बलिदानों को याद करने का दिन है। तो अपने सभी श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि आप हमें अपने संदेश हमारे व्हाट्सएप नंबर 94-570-78-288 यानी 94-570-78-7288 इस नंबर पर आप हमें लिखकर भेज दीजिए, उन्हें हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है। युवाओं की हमारी क्या भागीदारी होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, ये बहुत ही अहम विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपने संदेशों को हम तक भेजिएगा, शामिल करेंगे आपके उन संदेशों को आपके नाम के साथ। फिलहाल जब तक आपके संदेश हमारे पास तक पहुंचे, क्यों ना एक आपको देशभक्ति से ओतप्रोत यह गीत सुनवा दें। मौका भी है, दस्तूर भी है, और शहीदों को याद करने का, नमन करने का, श्रद्धांजलि देने का भी आज का दिन है। हम तो यही कहेंगे, रोज हमारे लिए ये दिन होना चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए।

बिल्कुल साहब, वतन पे जो फिदा होगा वो नौजवान होगा। और भाई, हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है ना, और युवाओं के कंधों पर ही ये सारा भार है, देश को विकसित करने का, देश को एक साथ मिलके आगे लेके जाने का, ताकि हम सबसे आगे कहलाएं, है ना। और भाई, हमने जो बोला था आपसे, हम याद दिला रहे थे, हमारे श्रोता लगातार हमें सुन रहे हैं और लगातार मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं भाई। और ये मैसेज मैं पढ़ूंगा तो हमारे नियमित श्रोता हैं ये, और हमेशा हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर अपने श्रोताओं को याद दिला दूं, गीत तो आपने सुन ही लिया,

कि विषय क्या रहेगा जो बिल्कुल हमारे श्रोता अभी जुड़े हैं। तो जिंदगी लाइव कार्यक्रम आप काश आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुनी रहे हैं ना, मनोज वर्मा इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं। तो विषय जो है बहुत अहम विषय है, स्वतंत्रता दिवस का आज दिन है। तो स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, इस पर हम आपके फीडबैक लेना चाह रहे हैं और लगातार ये फीडबैक मुझे मिल रहे हैं। और श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि ये स्वतंत्रता, ये आजादी जिसमें हम खुली सांस ले रहे हैं, यानी कि जिसके वातावरण में हम ये खुली सांस ले रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हमें विरासत में मिली है। अनगिनत जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है आज तक पहुंचाने के लिए हम सभी को। तो विरासत मिली हुई है हमें, है ना। आज हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये भी इसी के अंदर अंडर स्टूड है ना, इसी से जुड़ा हुआ है ये। तो इसको भी हमने जोड़ दिया और आपको बिल्कुल खोल कर बता दिया कि इस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये मैसेज हमारे नियमित श्रोता का है। ये ग्राम गद्दा रोना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से मदन गिरी हमारे श्रोता हैं, इनका पूरा परिवार नमस्कार बोल रहे हैं। तो भाई आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार, देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, पहुंच रही हैं आपकी। और ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा विषय लिखा है अपना, यानी चुना है जिस पर आप बात कर रहे हैं, और कहना चाहते हैं कि ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, लाखों लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में भाग लिया। 1857 की क्रांति में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ बिल्कुल, 1857 की क्रांति रही है, और एक नाम आपने नहीं लिखा, शायद आप भूल गए, मंगल पांडे का। जी हाँ, जहां से वो ज्वाला उठी थी, चिंगारी उठी थी, वो नाम भी इसमें हम जोड़ना चाहेंगे। उसके अलावा लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी, और मंगल पांडे का भी नाम अहम है इसमें। अब हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, सिर्फ अधिकार ही अधिकार नहीं है, हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए, हमें अधिकार का ही दावा नहीं करना चाहिए। आज लोग सड़कों पर उतर आते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, सार्वजनिक स्थानों को फूंक डालते हैं, बस कहते हैं कि हमारा अधिकार है। आंदोलन कीजिए, लेकिन अहिंसक हो, है ना। आप अपनी बात को रखिए, सुनने के लिए तैयार हैं, आंदोलन कीजिए लेकिन अहिंसक हो। अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हमें सीख लेनी चाहिए, वो अपने आंदोलन को हिंसक नहीं होने देते थे। अगर उनका आंदोलन हिंसक हो जाता तो उनका प्रायश्चित करते थे वो, हमें उनकी ही राह पर चलना चाहिए। उन्होंने अहिंसक आंदोलन करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, और युवाओं से क्या अपील है, बिल्कुल हमने युवाओं को भी जोड़ा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बिल्कुल वही बात हमने करते आ रहे हैं हम भी, कि भाई बड़ी मुश्किल से यहां तक ये कश्ती लेके आई गई है, हमारे जो खेवैया थे शहीदों के रूप में, उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है अपनी जान कुर्बान करके, है ना। तो वही गीत एक मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके इस मैसेज से हम जोड़ रहे हैं, हमारे पास मौजूद है। फिलहाल इस गीत को सुनिएगा और जुड़ते रहिएगा हमसे इस कार्यक्रम में। विषय और बताना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, और इसमें आप जोड़ सकते हैं विरासत में आजादी मिली है हमें, ये क्या रोल है हम सबका, यानी युवाओं का, क्योंकि युवाओं का देश है हमारा भारत देश।

कार्यक्रम जिंदगी लाइव आप आकाशवाणी नजीब आबाद से सुन रहे हैं। मैसेज लगातार हमें मिल रहे हैं और एक श्रोता कह रहे हैं हमारे कि भाई टॉपिक बहुत अच्छा है ना, और टॉपिक बड़ा भी है ना, तो हमारे संदेश भी बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, पूछा ही इसलिए है भाई आपसे, आज़ादी का दिन है, आपसे बात नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बात करने के लिए, ना विशेष रूप से आए हैं ये बातें करने के लिए हम आपसे। और ये श्रोता हैं हमारे नगीना से अनिल विनोचा और उनका पूरा परिवार। तो कहना चाह रहे हैं कि साहब सबसे पहले तो हम भारतीयों के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है बिल्कुल, और कुछ लाइन भी लिखी है, हमारे होठों पे जो खुशी है वो मांगी हुई नहीं है, एक एक मुस्कान पे पीछे लाखों देशभक्तों ने सीने पे गोली और सरेआम फांसी की सजा पाई है। आजादी की लड़ाई 90 साल लड़ी गई, कितने लोग शहीद हुए हैं, जलियांवाला बाग कांड में तो कितने ही लोग मर गए, विभाजन के समय जान माल इज्जत गंवानी पड़ी, सच इससे महसूस किया जा सकता है तो ये कोई इतना आसान नहीं था। बेशक बिल्कुल सही लिखा है आपने, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि फिरंगी की बहुत क्रूर और बेरहम था, बहुत ये बेरहम रहे हैं। इसके बाद लिखते हैं आपके देश के प्रति अगर हम बात करें तो देश के बात में हम अगर करेंगे तो इंसान को जरूरत पड़ने पर अपनी जान अपनी हथेली पर रखनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्यार मोहब्बत भाईचारे को सबसे ऊपर रखना चाहिए। शांति बहुत जरूरी है, अहिंसा पर चलकर हम पूर्ण विकसित और चार गुना विकास कर सकते हैं। आज 24 घंटे में 75,000 बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें रोजगार आवास एजुकेशन हेल्थ की भी व्यवस्था करनी है, जिसके लिए हर समस्या का हल शांति से रखना और देश की संपत्ति की रक्षा करना है जो हमारे खून पसीने से बनती है। विरासत को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल विकास करना है, तो पहले कर्तव्य है इंसानियत के रास्ते पे चलना है, देश को सबसे ऊपर रखना है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने लिखा है, अपनी पूरी बात लिख दी है, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हमने दो मैसेज पढ़े, हमारे श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं। एक मैसेज और हम लेना चाह रहे हैं कि ये मैसेज भाई एक बात और मैं बता दूं कि हमारे कुछ श्रोता व्हाट्सअप कॉल भी कर रहे हैं, ये नज़र आ रही है हमें, तो भाई व्हाट्सअप कॉल ना करें, है ना, इसमें हमें दिक्कत भी महसूस हो रही है और फिलहाल ये व्हाट्सअप मैसेजेस का प्रोग्राम है। तो ये मैसेज मुझे मिला है, हमारे श्रोता हैं ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश के, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। वो भी कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। बिल्कुल, हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिली है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करने की ताकत हम सबके अंदर होनी चाहिए और ऐसा हम सब युवा करने के लिए तैयार हैं। भाई बहुत ही सुंदर मैसेज लिखा है, युवा हैं हमारे बहुत सारे श्रोता, ये हम उनकी डीपी से भी पता लगा सकते हैं। ये जज्बा होना चाहिए देश के प्रति, है ना, क्योंकि देश से प्रेम करना हम सबकी आदत में होना चाहिए भाई, है यहाँ रहते हैं हम, यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ जो है ना अन्न उपजता है, यहाँ हम काम करते हैं, काम से हमें पैसा मिलता है, तो भाई कहाँ की बात करेंगे हम, हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश की ही तो बात करेंगे, देश को ही तो ऊपर लेके जाएंगे, देश का ही तो विकास करेंगे ताकि हम सिद्ध कर सकें कि 2047
47 तक हम विकसित भारत के नागरिक हैं, है ना। और ये पूरी उम्मीद हम आप जैसे युवाओं से करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि ये देश वीर जवानों का है, युवाओं का है। जुड़ेंगे आपसे फिर, सुनते रहिएगा कार्यक्रम को और मैसेज करते रहिएगा। स्वतंत्रता दिवस और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी। फिलहाल ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: मैसेज लगातार मिल रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि भाई हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। हाँ, बस ये कहना चाहेंगे कि अपनी सटीक बात लिखें इसके अंदर, है ना। और 12:38 हो गए हैं इस वक्त और लगभग 1 बजे तक इसको हमें

लाना है कार्यक्रम को, गीत भी सुनवाएंगे, आपकी बातों को भी शामिल करेंगे, चूंकि ये आप ही का कार्यक्रम है। एक मैसेज मैं ले रहा हूं, ये हमारे नियमित श्रोता हैं विलेज और पोस्ट राहु नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान, भव्य चौहान, सीमा रानी और राघव चौहान के साथ इनका पूरा ही चौहान परिवार। सबसे पहले नमस्कार लिखते हैं, जय हिंद भारत माता की जय लिखते हैं, तो बिल्कुल जय हिंद भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आगे लिख रहे हैं कि हम आज 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी आजादी बहुत कीमती है, हमें आपस में मिलकर रहना है, क्योंकि पराधीन सपने हु सुख नहीं, और देश प्रथम अर्थात नेशन फर्स्ट जो भावना से काम करना पड़ने लगने हैं, पानी बचाना है, साफ सफाई रखनी है, जरूरतमंदों की मदद करनी है और महापुरुषों के रास्ते पर चलना है। आज हम सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हैं, वंदे मातरम। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, पर्यावरण की हमें अपने रक्षा करनी है, पेड़ लगाने हैं, है ना, साफ सफाई का बहुत खास हमें ख्याल करना है ना, ये भी तो जिम्मेदारी है हमारे आसपास की, और आसपास की साफ सफाई रहेगी तो भाई हमारे शहर की साफ सफाई रहेगी, और सभी व्यक्ति अगर अपने आसपास की सफाई करना शुरू कर दें तो हम तो ये कहेंगे कि पूरा शहर ही साफ हो जाएगा, है ना, साफ सफाई अलग से दिखाई पड़ेगी जो बहुत जरूरी है, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छा मैसेज आपका रहा है, वंदे मातरम को आपने जोड़ा है, तो गीत हमारे पास है वंदे मातरम का, सुनवाएंगे आपको। एक मैसेज और लेना चाह रहे हैं हम, तो ये मैसेज जसपुर रोड दुल्लापुर जिला मुरादाबाद से है, महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा अंसारी का, और कहना चाह रहे हैं कुछ नशा तिरंगा की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह पे ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बहुत ही खूबसूरत, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और वे जिस देश के लिए लड़े वे देश हमारा है, आज उस देश का हर बच्चा भारत का तारा है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कतरा कतरा भी वतन के नाम हो जाए, ये जिस्म इस पावन मिट्टी के काम आ जाए, मांगे अगर खुदा मुझसे वतन के वास्ते जान, तो हंसते हंसते ये बंदा कुर्बान हो जाए। क्या बात है, आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने देश को और एक सशक्त सुंदर और सुरक्षित बनाएंगे। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, सूरज की किरण चाहिए एक दिया जलाने के लिए, एक अकेला भारतीय काफी है इस देश की शान बढ़ाने के लिए। खुदा जाने दुनिया जलवा गाहे नाज है, किसकी हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की, और बहुत सुंदर आपने ये मैसेज लिखा है, धन्यवाद आपका, और हम सबों की बहुत ज़रूरत है इस भारत देश के लिए। हाँ, हिम्मत तो करनी पड़ेगी हमें अकेले को ही। फिलहाल वंदे मातरम से जुड़ा हुआ ये गीत।

श्रोताओं, आज का यह दिन मुख्य रूप से विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 के लिए युवा शक्ति और राष्ट्रीय अभियान, स्वतंत्रता का सम्मान, भविष्य को प्रोत्साहन की थीम को ध्यान में रखकर मनाया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रगति वंदे मातरम के 150 पूरे वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक उत्सव को भी समर्पित है। आज पहली बार लाल किले से हम सब ने वंदे मातरम की धुन भी सुनी है। मैसेज लगातार मिल रहे हैं और ये मैसेज ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार, तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं, और कह रहे हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों ने अपना खून देके इस देश को आज़ाद कराया, बहुत से क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में पहना, आज हमें उनकी कुर्बानी याद करनी चाहिए। बिल्कुल, कुर्बानी को ही याद करने का ये दिन है और भाई हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती हैं। तो भाई आगे लिखा है आपने कि भाई यातायात के संकेतों का पालन करो, है ना, कूड़ा ना फैलाएं, इससे ये साबित होता है कि हम सब अपने देश में रहने वाले लोगों की परवाह करते हैं, है ना। इसके अलावा भाई एक मैसेज और लेना चाहेंगे हम, ये मैसेज हमारे श्रोता हैं साहब, ये कौन है, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं नियमित हमारे, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सन 47 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे भारत देश के कुछ वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हम अमन चैन से अपने देश में रह सकें। कह रहे हैं मैं नमन करता हूं उन वीरों को जिनकी खातिर हम अपने इस देश में रह रहे हैं। बिल्कुल, नमन करने का ही दिन है। इसके बाद आप कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारियों की बात करें, युवाओं को चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करें, और जो नौकरी पेशा हैं हमारे, करों का भुगतान समय से करें क्योंकि इससे सरकार स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों आदि के लिए धन इकट्ठा करती है जो हम सबके लिए ही जरूरी होता है। एक मैसेज और ले रहे हैं, लगातार मैसेज हमें मिल रहे हैं और ये मैसेज हमें मिल रहा है शाही मार्केट स्योरा जिला बिजनौर के श्रोताएं हमारे, आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी का मुबारकबाद दे रहे हैं, देशवासियों को तो पहुंच रही है, और कह रहे हैं कि साहब स्वतंत्रता सेनानी ने अपना बलिदान देकर हमें आजाद कराया, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, शहीदों को याद करना चाहिए, बहुत नाम है शहीदों के, अगर नाम लेने लगे तो शाम हो जाएगी, और वो तो वो हैं

के आप नाम जानते हैं जनाब, ऐसे भी गुमनाम शहीद हैं जिनके नाम हमने कभी आज तक सुने भी नहीं हैं, उनको तो सोचिएगा ज़रा। तो उन्हीं के वो शहीदों को भी याद करना है, और इतने बलिदान दिए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी बॉर्डर ओपन पर जो हमारी सी हैं, इनको भी दिल से सैल्यूट करते हैं। हम रात भर सोते हैं और हमारे फौजी बॉर्डर पर पहरा देते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे जो युवा फौजी हैं बॉर्डर पर लगे रहते हैं, दिन रात देश की सेवा करते हैं तब हम सोते हैं, है ना। और आगे कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, यो जिम्मेदारी है, ये जो युवा है उसकी सोच क्या होनी चाहिए कि समानता के लिए आप आवाज़ उठाएं कि हम सब जाति धर्म आदि से ऊपर उठेंगे, क्योंकि हम भारत के देशवासी हैं, भारत की तकदीर है।

मैसेज लेना चाह रहे हैं हम, मैसेज मिल रहे हैं हमें, है ना। और बहुत खुशी है कि हमारे श्रोता लगातार हमसे आज जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। इस बात का हमें बहुत खुशी है ना। बहुत आपका हम दिल से आभारी हैं कि आप अपना लगातार ये जज्बा हमें दिखा रहे हैं अपने फीडबैक के रूप में, है ना। बेशक हमने आपको देखा नहीं, लेकिन आपके विचारों से ज़रूर हम आपको देख पा रहे हैं कि वाकई

महसूस करा रहे हैं कि आप हमारे देश भारत के निवासी हैं और उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं। ये मैसेज मुझे मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड के श्रोता हैं हमारे नियमित ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां। हमें आज़ादी दिलाने में हमारे बहुत से वीरों ने अपनी जान पे खेल कर ये आज़ादी हमें दिलाई है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। जब भी तो हम कहते आ रहे हैं कार्यक्रम में कि विरासत में मिली है ये आज़ादी हमें, है ना, क्या हम कर सकते हैं इसको रखने के लिए ताकि कोई आँच हम पर ना आए, है ना। ये मैसेज और पढ़ रहे हैं हम। ये मैसेज है हमारे श्रोता हैं ये भी साबिर अली जिला मुरादाबाद से, है ना, और ये लिख रहे हैं कि साहब स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहना चाहता हूं कि जिसने भी हमारे देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई वो एक का नाम लेना बेमानी होगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक ने काम किया है। आज हम इतना नहीं कर सकते जितना उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, और उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि देश की एक दंत के लिए, एकता के लिए, सुरक्षा के लिए, सभी अच्छे से अच्छा देश के लिए करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैसेज भाई। यही हम इन सब बातों में जोड़ रहे हैं कि भाई देखिए, आजीवन सीखना चाहिए हमारे सभी युवाओं को। जीवन में सीखते रहना हम सबको बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, है ना। कोई भी हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे मोहल्ले के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई आँच आए, विकास हो हमारा, वो काम हमें करना चाहिए। भाई देखिए, आज के दिन हमारा भी रोम रोम बिल्कुल खिल रहा है ना, एक हमें भी एक विशेष जज्बा महसूस हो रहा है ना, हमारी आवाज़ में भी एक ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत जोश है, खुद महसूस कर रहे हैं हम। हमारा विकास हो, ऐसे हमें काम करना चाहिए, हमारा देश विकास की राह पर अग्रसर हो, है ना। और एक बात कहना चाहते हैं कि भाई श्रेष्ठ राजनेताओं का चुनाव ही भारत के भविष्य को आकार देने में अहम रोल निभा सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। देश में चल रहे अनैतिक कामों का विरोध करना चाहिए, इसके साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। चलिए, क्योंकि हमारा देश है, हम सब अपने देश के हैं।

0: और इसी गीत के साथ आज का जिंदगी लाइव कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, और उसके बाद इलाकाई खबरें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के

लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 आप लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनाब आरवी सिंह और सुमोना एस पांडे ने अंजाम दी। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी परचम कुशाई और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल 80वें योम आज़ादी की माकबल शब पर कौम से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें भारत के लोगों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और भारत को बेहतरीन मुल्क बनाने के जज्बे के साथ काम करना चाहिए। आज़ादी का यही मतलब है। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय के जज्बे के साथ हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि तरक्की के फवायद हर शख्स तक पहुँचें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्य स्मृति महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का बदला हुआ अयोध्या धाम हमें त्रेता युग की याद दिलाता है। चढ़ावा मामले पर जनाब योगी ने कहा कि SIT की तहकीकात जारी है और हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर ने 2027 की मर्दमशुमारी के लिए घरेलू शेड्यूल के सवालनामे का नोटिफिकेशन कर दिया है। इसमें वालिदैन की तफसीलात, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट्स की कुल तादाद, काम की जगह तक आने जाने की तफसील, मजहब और ज़ात समेत 40 सवालात शामिल हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और तीज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों आज बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: जरूरी हर पल चंदन का एहसास।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
3: सावन की इस खूबसूरत फुहार के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहीं मेहंदी की खुशबू है, कहीं हरी चूड़ियों की खनक, कहीं झूले की पींगे हैं, तो कहीं तिरंगे की शान, क्योंकि इस बार सावन कुछ खास है। तीज के रंग भी हैं और आजादी की उमंग भी है। बहनों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम तीज के रंग आजादी के संग। मैं आपकी बहन भावना अरोड़ा लेकर आई हूँ एक ऐसा कार्यक्रम जब सावन की हरियाली और आजादी का तिरंगा एक साथ रंग भरते हैं, तो त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं रह जाता, वह बन जाता है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी शक्ति का

बहनों, सावन की तीज हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और स्वतंत्रता दिवस हमें अपने राष्ट्र से। एक तरफ हरी चुनरी और मेहंदी के रंग तो दूसरी तरफ तिरंगे के तीन रंग, जो हमें याद दिलाते हैं कि इन रंगों की हमारे जीवन में अहमियत क्या है। एक तरफ परंपरा तो दूसरी तरफ प्रगति, और इन दोनों के बीच खड़ी है हमारी आज की भारतीय नारी। वे अपनी संस्कृति को भी संभाल रही है और अपने भविष्य को भी गढ़ रही है। यही तो है बदलते भारत की खूबसूरत तस्वीर। बहनों, कितना सुंदर संयोग है कि आज हम अपना राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक पर्व एक साथ मना रहे हैं। यही तो खूबसूरती है हमारे इस राष्ट्र की, जो विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। आज जब हमें आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं और हम आजाद भारत के नागरिक हैं, तो ये आवश्यक है कि हम अपनी इस आजादी को समझें कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि जाने कितनी ही माओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया, कितनी ही बहनों ने अपने भाइयों को खोया, और ना जाने कितनी ही स्त्रियों के सुहाग उजड़ गए। आज जब हम इस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं और अपने त्योहारों को मना रहे हैं, तो वह सिर्फ इसीलिए कि हमें यह आजादी दिलाने के लिए लाखों वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो या बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान। उन्होंने अपनी जवानी इस देश के नाम कर दी और कुर्बान हो गए भारत माता की आन बान और शान के लिए।

बहनों, आज जब हम अपना आजादी का पर्व और तीज का त्योहार एक साथ मना रहे हैं, लेकिन उसी अवसर पर आज हम आपको आजादी की उसी कहानी का एक ऐसा अध्याय सुनाते हैं जिसके पन्नों पर तलवारों की चमक कम और ममता, त्याग और साहस की चमक कहीं ज्यादा है। बहनों, यह कहानी है भारतीय महिलाओं की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ अपने बेटों, पतियों और भाइयों का साथ ही नहीं दिया, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने घर की जमा पूंजी, अपने गहने और अपने जीवन भर की सबसे अनमोल निशानियां तक देश के नाम कर दी। आज जब ये तीज का त्योहार महिलाओं के लिए सजने, सवरने और श्रृंगार करने का एक अवसर लेकर आया है, परंतु एक दिन ऐसा भी था जब घर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन की चर्चा हो रही थी। बाहर देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष चल रहा था। उसी समय घर की महिलाएं चुपचाप संदूकची खोलती थीं, उसमें रखी हुई उनकी चूड़ियां, उनकी नत, उनकी बालियां और उनका हार, और शायद उनका मंगलसूत्र भी। उन्होंने एक पल भी न लगाया। वह शायद उनके लिए सोने के आभूषण ही नहीं थे, बल्कि उनकी शादी की यादें भी थी, परिवार की भावनाएं भी थी।

0: जीवन के सपने भी थे, लेकिन उन महिलाओं के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था, जब हमारा देश गुलाम है तो इन गहनों की कीमत ही क्या। और वह अपने आभूषण देश की लड़ाई के लिए समर्पित कर देती हैं। बहनों, ऐसे त्याग की असंख्य कहानियां हमारे स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों में बिखरी हुई हैं। महिलाओं ने आंदोलनकारियों को आर्थिक सहायता दी, अपने घरों में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया, गुप्त संदेश पहुंचाए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में हिस्सा लिया, चरखा चलाया और स्वदेशी का संदेश घर घर पहुंचाया। और जब स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हुई, तब अनेक महिलाओं ने अपने सोने चांदी के आभूषण तक राष्ट्र के लिए दान कर दिए। उनके लिए वह हार सिर्फ हार नहीं था, वह भारत माता के गले का हार बन गया। वह चूड़ी सिर्फ चूड़ी नहीं थी, वह संघर्ष की आवाज बन गई। और मंगलसूत्र वह केवल वैवाहिक जीवन का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उस समय एक महिला के राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। बहनों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने महिलाओं को आंदोलन से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके आह्वान पर अनेक महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाया और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। कई महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए धन आभूषण भी दिए। यह त्याग केवल संपत्ति का त्याग नहीं था, यह था अपने सुख सुविधाओं से ऊपर राष्ट्र को रखने का संकल्प। जिस मंगलसूत्र को एक भारतीय नारी अपने जीवन का सबसे पवित्र आभूषण मानती है, अगर वही मंगलसूत्र वह देश की स्वतंत्रता के लिए दे दे, तो उस क्षण उसके मन में क्या चल रहा होगा? शायद वह यह सोच रही होगी कि मेरे सुहाग की रक्षा केवल इस मंगलसूत्र से नहीं होगी, बल्कि उस देश की आजादी से होगी जिसमें मेरा परिवार और मेरी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र सांस लेंगी। बहनों, आज जब हम स्वतंत्रता दिवस और तीज का त्योहार मना रहे हैं, तो भला उन वीरांगनाओं को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजनी नायडू तक, अरुणा आसफ अली से लेकर उषा मेहता तक, इन महिलाओं ने हमें सिर्फ आजादी की कहानी नहीं दी, बल्कि यह संदेश भी दिया कि नारी जब अपने अधिकार, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है, तो इतिहास की दिशा बदल सकती है। आज की आजादी का अर्थ केवल गुलामी से मुक्ति नहीं है, आजादी का अर्थ है हर लड़की को शिक्षा मिले, हर महिला को सम्मान मिले, उसे अपने फैसले लेने का अधिकार मिले और उसे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। बहनों, इसी क्रम में चलिए बात करते हैं अपने एक श्रोता से। हमारे साथ जुड़ रही है रमा जैन कन्या महाविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता डॉक्टर सविता वर्मा जी। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए आजादी का असली अर्थ क्या है?
1: धन्यवाद मैडम, पहले तो मुझे मौका देने के लिए। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, रीसेंट भी है इस समय में, क्योंकि आज 15 अगस्त है, हर जगह तिरंगे लहरा रहे हैं, हर जगह आज़ादी का माहौल है, तो धन्यवाद इसके लिए फिर से। और मैडम, आज़ादी का जहाँ तक मतलब मैं समझती हूँ कि आज़ादी कोई विदेशी दास्ता से मुक्ति का नाम, उस परतंत्रता से मुक्ति का नाम ही आज़ादी नहीं है, बल्कि आज़ादी क्या है? आज़ादी का जो अर्थ है वो है कि हमें अपने बोलने चालने की स्वतंत्रता हो, बोलने चालने में आज़ादी हो, उसका हमें अधिकार हो, हमें जो अवसर मिले अवसरों में समानता हो, हम सम्मान के साथ जीवन जिए, आज़ादी का असली अर्थ यही होता है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जब देश को आज़ाद कराया था, तो उन्होंने भी ये सपना देखा था कि हर व्यक्ति समर्थ होगा, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, सबको अपनी बात कहने की, अपने अवसरों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिलेगी, और देश में हर वो व्यक्ति जो देश के आखिरी कोने में किसी छोर पर बैठा है, वो भी एक अच्छा जीवन यापन करेगा और देश के साथ जुड़ा रहेगा।
0: लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति मिल गई, लेकिन आजकल जैसा कि देखने को मिलता है कि लोग बाग कि महिलाएं, अगर खास तौर से महिलाओं की हम बात करें, तो अपनी आज़ादी को शायद वो ये समझती हैं कि हमें कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। इस विषय पर आप क्या कहेंगी?
1: देखिए मैम, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं। स्वतंत्रता तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, अपने देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कहीं रोजगार पाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो स्वच्छंदता है वो बिल्कुल अलग मैटर है। स्वच्छंदता मीन्स कि जब हम समाज की हर मर्यादा, हर सीमा रेखा को भूल जाते हैं।

0: हैं तो स्वच्छंदता और सब ये स्वतंत्रता दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। जब देश आजाद हुआ था तो देखिए कोई ऐसा बंटवारा नहीं था कि हिंदू इसमें शामिल होगा आजादी की लड़ाई में, मुस्लिम शामिल होगा, कोई मजहब नहीं था, बल्कि क्या था, संपर्क था, डायलॉग था, एक दूसरे से वार्तालाप था, बातचीत होती थी। आज जो बहुत बड़ी समस्या जो मैं देखती हूँ वो मैं पाती हूँ कि जो आज हमारी जेन जी पीढ़ी है इसके साथ हमारा डायलॉग बहुत कम है, परिवारों में डायलॉग बहुत कम हुआ है, वार्तालाप बहुत कम हो गया है, शिक्षण संस्थाएं जैसे हम हैं हमारी भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, परिवार भी जिम्मेदारी है कि हम इस जेन जी पीढ़ी को कम से कम स्वतंत्रता के सही मायने क्या है, मर्यादा क्या है, सीमा रेखा क्या है, इसके विषय में बताएं तो सही। हमारे बच्चे को यही नहीं पता कि सीमा रेखा क्या होती है, हमें कौन सी किस मर्यादा का पालन करना है, हमें भाषा में किस किन शब्दों का प्रयोग करना है, कौन से शब्द हमें नहीं बोलने, और हमें किस तरह से उठना बैठना है, बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। जब हम घर से ये सब सीखते हैं तो फिर वही एक समाज का हिस्सा बनता है, वही फिर एक देश का हिस्सा बनता है।
1: बहुत सुंदर अभिव्यक्ति डॉक्टर सविता वर्मा ने हमें दी, और वास्तव में आज़ादी का असली अर्थ यही है कि हम स्वतंत्र हों, स्वच्छंद नहीं।
2: मैनू आज सावन की फुहारों के बीच याद करते हैं अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी संस्कृति के रंग और नारी शक्ति की पहचान। तो बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हमारी बहनों का प्रिय त्यौहार तीज का त्यौहार भी है, और इसी क्रम में जुड़ रही है हमारे साथ हमारी एक और सखी जिनकी आवाज से आप भली भांति परिचित होंगे।

0: श्रोता बहनों नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका त्यागी और कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी बहनों को स्वतंत्रता दिवस और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: तो प्रियंका भाई, तुमने बहुत सुंदर हमारी श्रोता बहनों को इतना सुंदर झूले का गाना सुनाया। और
0: भावना, जब बात तीज की है तो सावन गीत तो बनता ही है।
1: बिल्कुल। और प्रियंका, तीज का नाम लेते ही आंखों के सामने आ जाती है,
0: आंखों के सामने आ जाती है हरी चुनरी, मेहंदी से सजे हाथ, चूड़ियों की खनक और सखियों के साथ झूले पर बिताए वो खूबसूरत पल जो हम महिलाएं शायद विवाह के बाद भी नहीं भूल पाती।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका। और आज तो मौका भी कुछ खास है भाई, आज हम अपने स्वतंत्रता के रंग में और तीज के रंग में दोनों तरह से रंगे हुए हैं। और देखो ना, कितनी सुंदर मेहंदी तुमने भी अपने हाथों में सजाई है।
0: हाँ बिल्कुल। और भावना, मेहंदी तो तुम्हारी भी बहुत सुंदर लग रही है, और हरी हरी चूड़ियां, माथे पर हरी बिंदी, और इस और भावना एक चीज और, आप क्या आपको नहीं लग रहा कि आज फिजाओं में हरियाली के साथ साथ तिरंगे का रंग भी मिला हुआ है?
1: बिल्कुल, ऐसा लग रहा है आज जैसे पूरी प्रकृति ने श्रृंगार किया हो।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आज संगम ही ऐसा है।
1: लेकिन प्रियंका, क्या तीज सिर्फ एक श्रृंगार का ही त्योहार है? शायद नहीं।
0: सही कह रही हो भावना, तीज एक ऐसा त्योहार है जब महिलाएं अपने मन की बातें करती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, अपनी खुशियां बांटती हैं और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं। कभी दादी से सुना सावन का गीत, कभी माँ के हाथों से लगवाई हुई वो मेहंदी, और कभी अपनी बहनों के साथ, सखियों के साथ हंसी मजाक, यही तो वो यादें हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं।
1: बिल्कुल। और जब मौका तीज का है तो भला मायके की याद तो जरूर आती है, क्योंकि तीज का त्योहार खास तौर से मायके से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि तीज के मौके पर सभी जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके घर से सिंधारा आता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हो आप भावना। और वो सिंधारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर से सामान आ गया, उसमें मायके का एक प्यार छुपा होता है जो विवाह के बाद भी अपनी बेटियों के साथ जुड़ा रहता है।
1: बिल्कुल। और यही सब चीजें हैं जो हमें अपने संस्कारों से, हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती हैं।
0: इसीलिए तो हमारा हर त्योहार खास।
1: लेकिन प्रियंका, आज जो महिलाएं हैं वो सिर्फ झूले की पींग ही नहीं भर रही हैं, वो अपने कैरियर को भी नई ऊंचाइयां दे रही हैं।
0: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही भावना, वह घर भी संभालती है, काम भी संभालती है और अपने सपनों को भी।
1: तो चलो प्रियंका, सावन के इस खूबसूरत माहौल को थोड़ा और सुरीला बनाते हैं और सुनवाते हैं अपनी बहनों को सावन का यह मधुर गीत।

0: वाह भावना, गीत सुनकर तो आनंद ही आ गया।
1: तो चलो बात करते हैं आपकी तीज की यादों की। मैंने हर महिला की तीज की कहानी कुछ अलग होती है, क्यों प्रियंका, तुम क्या कहोगी?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा भावना आपने। तीज की यादों में होता है किसी की कहानी में मायके का आंगन, किसी की कहानी में सखियों के साथ झूला है, तो किसी की कहानी में शादी के बाद पहली तीज की याद जो हमें हमेशा याद

0: बिल्कुल, और मुझे लगता है हर स्त्री की पहली तीज जो विवाह के बाद की पहली तीज है वो बहुत यादगार रहती है।
1: ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विवाह के बाद के जितने भी त्योहार होते हैं भावना, वो बहुत खास होते हैं।
0: और चलिए इसी विषय पर, जब आज हम तीज का त्योहार और स्वतंत्रता दिवस एक साथ मना रहे हैं, तो बात करते हैं अपनी एक श्रोता बहन से।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार मैम।
2: और कैसे हैं आप?
3: हम बढ़िया हैं मैम, आप बताएं।
2: हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपको स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आकाशवाणी परिवार को भी मेरी तरफ से तीज और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम, मेरा नाम दीपा शर्मा है।
2: देखिए दीपा जी, आज स्वतंत्रता दिवस भी है और हरियाली तीज भी है, तो आज तो हम सभी देशवासियों के लिए दुगना आनंद है। एक तरफ हरियाली तीज के रंग, दूसरी तरफ तिरंगे के रंग। तो आज आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी स्वतंत्रता दिवस को तीज के साथ?
3: पहली बात तो मैम, जैसे हमारे सभी के लिए हर्षोल्लास का विषय है कि एक तरफ तीज का त्योहार है और दूसरी तरफ हमारा आजादी का पर्व है। जैसे हमारा आजादी का पर्व है तो इसमें देखो सरकार के द्वारा भी चल रहा है हर घर तिरंगा वाला। ऐसे अगर हम तीज के पर्व की बात करें तो इसमें आप देखिए कि सभी के अलग तरीके होते हैं तीज के त्योहार मनाने के। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे को जैसे मेहंदी लगाना, और जैसे हम कॉलेज जाते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो उस दिन हमारा ध्वजारोहण, सारी चीजें होती हैं। तो एक तरह से देखा जाए ना तो दुगना हर्षोल्लास का विषय हो गया कि एक त्योहार के साथ साथ दूसरा त्योहार भी हमारा है जिसमें दोनों का महत्व तो अपनी जगह अलग अलग है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो अगर हमें स्वतंत्रता ही नहीं मिलती तो सोचिए कि आज क्या हम ये पर्व मनाते?
2: जी बिल्कुल।
3: क्या हम ये कार्य जो आज कर रहे हैं हर्षोल्लास के साथ चीजें करते हैं, पूरे वर्ष अन्य त्योहार भी मनाते हैं, तो सबका कारण मुख्य जो रहा हमारा वो स्वतंत्रता ही तो रही। तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई स्वतंत्रता दिवस ही वो माध्यम बना आपका और हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए कि हम अन्य त्योहार भी सब चीजें हर्षोल्लास के साथ मना पाए।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज आप तीज कैसे मना रही हैं?
3: अगर बात मैम तीज की करें तो जैसे मैंने अपने लिए स्वयं खुद भी नए कपड़े जैसे बनाते हैं तो कपड़े आदि बनवाए हैं, साथ ही मेहंदी वगैरह लगवाई है, और हमारे घर में सभी जैसे मिठाई वगैरह है सब चीजें बनाते हैं, और साथ ही ये रहता है कि झूला डालकर, जैसे झूला डालकर उस पे झूलते हैं, और परिवार में हमारे महिलाएं बच्चे सभी एक साथ एकत्रित होकर तीज के पर्व को बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं।
2: आपकी बातों से और आवाज से लग रहा है कि आज आप बहुत खुश हैं।
3: जी जी मैम, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो सारे ही पर्व खुशी के होते हैं, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो दो दो पर्व एक साथ हैं कि हम आजादी की भी खुशी मना रहे हैं साथ ही तीज की भी, तो खुशी का विषय है हमारे लिए तो ये।
2: जी बिल्कुल, दुगना आनंद है आज हम सभी देशवासियों के लिए और हमारी सभी बहनों के लिए भी जो तीज का पर्व मना रही है।
3: जी जी
2: दीपा जी, हमें आपके विचार बहुत अच्छे लगे, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी जी मैम।
4: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
5: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
4: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
4: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
5: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
4: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
4: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
5: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
4: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
4: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
0: तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम तीज के रंग आजादी के संग, जिसमें मेरे साथ थी मेरी बहन प्रियंका त्यागी जी। और बहनों, आशा करते हैं कि ये त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी के साथ हम यही आशा करते हैं कि आपको इस स्वतंत्रता दिवस और तीज के पावन अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ अपनी बहन भावना अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद बिजनौर और तहसील नजीबाबाद में आयोजित कार्यक्रमों की स्थलीय रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग नमित राज और जसवंत सिंह का है और इस रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता हैं शोभित शर्मा। तो लीजिए सुनिएगा ये रेडियो रिपोर्ट।
1: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, अपने राष्ट्रीय पर्वों को हम सब सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और किबिथू से गुहार मोती तक सारे देश में ध्वजारोहण हुआ। देश का कोना कोना आज देशभक्ति के गीतों और नारों से गूंज रहा है। इस पावन अवसर पर बिजनौर जिले की तहसील नजीबाबाद मुख्यालय में भी सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और नगर के सैकड़ों आम व खास व्यक्ति मौजूद रहे। सवेरे 8 बजे ही माननीय उप जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बादलों से भरे आसमान में लहराता हुआ तिरंगा सबके दिलों में देशभक्ति का भाव बढ़ा रहा था। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी को स्वतंत्रता का महत्व बताया।
2: प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र उन वीरों को, महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है जिनके बलिदान के और त्याग के बल पर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज तहसील नजीबाबाद में, जैसा कि शासन द्वारा निर्देश था, पहले वंदे मातरम पाठ किया गया, उसके बाद ध्वजारोहण के राष्ट्रगान पाठ किया गया। स्कूल से कुछ बच्चे आए थे, इनको मिठाइयाँ और पुस्तकें वितरित की गई और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, नगरवासियों को, तहसीलवासियों को और संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण देश के और संपूर्ण विश्व में भारतवंशी जहाँ भी फैले हैं सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे और हम पूरे विश्व का चिरमोर बन सकें, यही मंगल कामना। युवा हमारे देश का भविष्य होते हैं, अगले राष्ट्र का भविष्य उन्हीं पर निर्भर है और मैं चाहूँगा कि उनके मन में राष्ट्र प्रेम की और राष्ट्रभक्ति की भावना निरंतर प्रवाहित रहे और हमारे जो महापुरुष थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे संविधान निर्माता थे, उनके आदर्शों को अपने मन में सदैव सजोए रहें और प्रत्येक काम उनके राष्ट्र के हित के लिए हो, यही कामना है। अपनी ऊर्जा का उपयोग वो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को सजाने संवारने में लगाए।
1: राष्ट्रीय पर्वों का महत्व और उनकी गरिमा को बढ़ाने का आह्वान करते हुए आप हैं तहसीलदार नजीबाबाद डॉक्टर संतोष कुमार यादव।
3: स्वतंत्रता दिवस को प्राप्त करने में अनेक वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे में कुछ जिनका नाम हम जानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन उनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था जिनकी आज शहीद दिवस के रूप में पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उद्देश्य तो यही था कि भारत जो है गुलामी की पीढ़ियों से निकल करके अपने कदमों से जो है अपनी प्रगति को नापेगा और एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन हम जिस परिदृश्य में आज क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, यदि आप गौर से देखिएगा तो लगेगा कि नहीं। सभी के मनाने का उद्देश्य ये होता है कि सभी के अंदर जो है अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान जागृत हो और उनको यह पता चले कि यह स्वतंत्रता किस प्रकार से प्राप्त हुई, किन बलिदानों से प्राप्त हुई। उन बलिदानियों के लिए उनके मन में भाव जागृत हो और उनसे प्रेरणा लेते हुए कुछ ऐसा करने की अपने समाज और अपने देश के लिए, जिससे देश प्रगति के पथ पर बढ़ सके, इसका उद्देश्य तो यही है। तो जो उद्देश्य था हमारा इस पर्व को मनाने का, हम लोग सभी लोग उस उद्देश्य को स्वीकार करें और अपने कर्मों से देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

0: स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए और देश के युवाओं को राष्ट्र के प्रति उनका दायित्व बोध कराते हुए खंड विकास अधिकारी श्रीमान दीपक कुमार तेवतिया जी ने अपने विचार साझा किए।
1: जो हमें आजादी मिली है उस आजादी के लिए जो बलिदान दिए हैं उनको याद करने का एक पर्व होता है और आजादी की क्या कीमत हम लोगों ने चुकाई है और उसको बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या हमारा दायित्व होना चाहिए, वो हमको याद दिलाता है। आजादी केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं है, आजादी है गरीबी से आजादी, आजादी है उस सोच से जो हमें गुलाम बनाती है उससे आजादी, आजादी है हमारे अंदर जो अपोजिट भावनाएं हैं उन भावनाओं से आजादी। और इसमें युवाओं की जो सहभागिता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है किसी राष्ट्र को बनाने के लिए। वो जो है नींव होती है जो युवा होते हैं उनको केवल एक दिवस या एक पर्व के दिन ही अपनी जो उनकी भावनाएं उनको व्यक्त नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन व्यक्त करना चाहिए। और हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो देश का गरीबतम जो व्यक्ति है उसके चेहरे पे कैसे मुस्कान आ सके, तभी एक विकसित राष्ट्र की जो परिभाषा होती है उसके अंतर्गत हम जो अपने आप को पाएंगे एक महाशक्ति के रूप में पाएंगे। तो मेरा सभी युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने राष्ट्रीय धर्म को दिन प्रतिदिन प्रति सेकंड जो है निर्वहन करें और देश की भलाई के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर काम करें।
0: इस यादगार अवसर पर अपने भाव व्यक्त करते हुए आप हैं ब्लॉक प्रमुख श्री तपराज सिंह देशवाल।
2: इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 को मेरी ओर से सभी देशवासियों को बधाई, साथ साथ मेरा आग्रह है कि जिन शहीदों ने अपने खून से हमें आजादी दिलवाई है, अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, सबसे बड़ा बलिदान लोगों ने दिया है, हमें भी उनके भावना के अनुसार जैसा देश होना चाहिए वैसा देश बनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त, सुरक्षा युक्त और हर तरह से गरीब आदमी की मदद करें। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे अपनी ली हुई शपथ के अनुसार कार्य करें, आगंतुकों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उन्हें लगे कि वास्तव में सुशासन है।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला बिजनौर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुआ।

0: वंदे मातरम गीत के बाद माननीय जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया।
1: राजा द्रविड़।

इस पावन अवसर पर छात्राओं द्वारा झंडा गीत प्रस्तुत किया गया।

0: इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिलाधिकारी जसजीत कौर और अपर जिलाधिकारी FR श्री देवेंद्र पाल के द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस भव्य समारोह में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंशिका दीक्षित ने एक प्रेरणा गीत के माध्यम से अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में ADM श्री देवेंद्र पाल जी ने भी सभी को संबोधित किया।
1: जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो देश की आजादी के लिए मनाया जा रहा है, जो देश 1947 में आजाद हुआ। लेकिन अगर हम इसको बैकग्राउंड में जाए तो 1857 से लेकर 47 यानी 90 साल पहली चिंगारी पड़ने पे और आजादी प्राप्त होने में 90 साल लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि ये आजादी कितनी विशेष है। कारण ये कि आजादी को प्राप्त करने के लिए 90 वर्ष हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति की बलिदान दिया। उसके पश्चात जो है अंग्रेजों के माध्यम अंग्रेज जब यहाँ से छोड़ दिए गए तो हमें आजादी प्राप्त हुई और हमने जो है स्वतंत्र देश में जो है सांसें ली। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम जो है सभी लोग वर्तमान में स्वतंत्र देश के वासी हैं। तो आजादी अपने साथ एक मायने लेकर नहीं आती, वो अपने साथ कई सारे जो है आयाम अपने साथ लेकर आती है, जिसमें मानव को गरिमा में तरीके से जीने का एक पूरा माहौल जो है प्राप्त होता है। मेरा सभी से और आप लोगों से कहना रहेगा कि आप लोग स्वतंत्रता के आयाम को बना के रखें, स्वतंत्रता के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं उसको जो है लोग लगातार करते हैं। धन्यवाद।
0: इस यादगार कार्यक्रम में जिलाधिकारी बिजनौर श्रीमती जसजीत कौर ने सभी को शुभकामनाएं दी और आजादी के अमर शहीदों के बलिदान को याद किया।
2: 80th इंडिपेंडेंस डे है आज और इतने लंबे समय से 79 इयर्स हो गए हमारी आजादी को, जिसमें हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। हमारे बच्चे हम लोग हर बात पे कहते हैं हम ऐसा करेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ओपनली अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो ये बहुत आसानी से ये जो हमें चॉइस का अधिकार मिला है तो बहुत मुश्किल से मिला है। बहुत लंबे समय तक आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चला है, बहुत लोग इसमें जुड़े, बहुत हर वर्ग के लोग जुड़े, देश में एक एक व्यक्ति जुड़ा, महिला ने घर से उसमें बाहर नहीं निकलती थी, वो भी हमारी आजादी की लड़ाई में उन्होंने भागीदारी करी। हर वर्ग चाहे वाइट वर्ग हो चाहे बिल्कुल पिछड़ा वर्ग हो, सब लोग जुड़े। तब जब एक साथ एकजुट हुए सबने अपने मन में ठाना कि नहीं अब हमें आजादी चाहिए, तब हमें आजादी की ये मिली है। उस आजादी की कीमत जो है वो हम बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ी, कई लोगों की जान गई, कई लोगों ने कारावास में जेल में समय काटा, कई लोग वहां पर अंडमान में भी जो जेल है कोर्ट कहने काला पानी की सजा होगी, बहुत सारे अत्याचार सहे, उनके परिवारों ने भी बहुत सारे अत्याचार सहे। तो आज हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं तो हमें ये रियलाइजेशन हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि उनके बलिदान की वजह से आज हम लोग आजाद हैं और बिल्कुल अपनी सभी राइट्स के बारे में जानते हैं, अधिकारों के बारे में जानते हैं, तो सब उन्हीं के लिए।
0: श्रोताओं, इसी के साथ जनपद

0: बिजनौर और बिजनौर की तहसील नजीबाबाद में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। वाचन और संकलन था जसवंत सिंह और नमित राज का, और प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद बिजनौर और नजीबाबाद तहसील में आयोजित कार्यक्रमों की स्थलीय रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। वाचन स्वर नमित राज और जसवंत सिंह का था। रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में।

0: to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions 100 times.
1: Har saal ausatan 15 guna jyada tezi se humne nal se jal connection diye. Har saal ausatan 6 guni jyada raftaar se logon ko gas connection diye. Har saal 4 guni raftaar se गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया. हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया. देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया. हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए. सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए.
0: Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास. उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
0: The Prime Minister said, government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said, the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं. हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य. मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है.
0: द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, सेइंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिपेंड्स एंटायरली ऑन क्रिटिकल मिनरल्स. And India is actively working to secure its position in this sector. He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Mr. Modi added that agreements are being signed with several countries and nations around the world are increasingly placing their trust in India. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation around the world has turned towards managing and safeguarding its own interests. But unfortunately, during this period of crisis, some nations have played the game of weaponizing resources to flaunt their dominance, be it petrol, diesel and fertilizers.
1: उसको वेपनाइज करने में लगी है. रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप. इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है. और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर. और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है.
0: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in the Parliament and state assemblies without making it a political fight.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले. ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे. समय की मांग है. और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए.
0: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज. फॉर क्विक न्यूज अपडेट्स अराउंड द क्लॉक, फॉलो अस ऑन एक्स हैंडल एट AIR न्यूज अलर्ट्स. एंड फॉर डिटेल्स ऑफ दीज स्टोरीज एंड मोर, लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Reports of Independence Day celebrations are pouring in from states and union territories. In Jammu and Kashmir,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्र तट पे समुद्र के अंदर

0: करके एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा होगी। इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2,500 कैडेट और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें PM सूई घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधर।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह

0: श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
1: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
2: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आज़ादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
3: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लू रुट्ठी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने

आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी

भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

0: और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कवि गोष्ठी। इस कवि गोष्ठी में प्रतिभागी कवि हैं श्री विनोद भ्रंग, श्री वीरेंद्र आजम, श्री नरेंद्र मस्ताना। कवि गोष्ठी का संचालन किया है श्री हरिराम पथिक ने।
2: देशभक्ति की रचनाओं से ओतप्रोत करने वाले आज के कवि गोष्ठी में सभी कविगणों का मैं व्यक्तिगत रूप से और आकाशवाणी नजीबाबाद की ओर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक दोहे के माध्यम से माँ शारदे को सबकी ओर से नमन किया जाए और इस नमन के लिए मैं एक दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्तों का माँ शारदे नमन करो स्वीकार, भक्तों का माँ शारदे नमन करो स्वीकार, नाव भंवर में है फंसी उसे लगा दो पार। नाव भंवर में जो फंसी उसे लगा दो पार। हमने माँ शारदे को नमन किया। मैं सर्वप्रथम जिन्हें सुरों का वरदान प्राप्त है, मधुर कंठ का वरदान प्राप्त है, श्री नरेंद्र वर्मा मस्ताना, मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि अपने मधुर कंठ का से इस गोष्ठी का आगाज करते हुए अपना रचना पाठ करें श्री नरेंद्र वर्मा मस्ताना।
3: 15 अगस्त का दिन आया, चहूं और तिरंगा लहराना,

0: मिलना हमको यह फल है कड़ी तपस्या का, आजादी का मिलना हमको यह फल है कड़ी तपस्या का। लाखों ने जब बलिदान दिया हल निकला कठिन समस्या का।
1: वाह वाह।

0: बिना चमन। धन्यवाद।
1: धन्यवाद नरेंद्र मस्ताना जी। कुछ कवि ऐसे होते हैं रस के अलावा उनके भावों का रस जादू बनकर रोगों में दौड़ता है, और ऐसे ही कवि श्री वीरेंद्र आजम जी, जो स्वयं में एक पत्रकार भी हैं, बड़े अच्छे समीक्षक हैं और अपनी रचनाओं से सबके हृदय को झकझोरने की ताकत रखते हैं, उनसे उनकी कुछ भावात्मक और विश्लेषणात्मक रचनाएं सुने।
2: धन्यवाद पथिक जी। मैं एक मुक्तक के साथ शुरुआत करूंगा। सीमा का मान बचाने को

ओ पाकिस्तान संभल जा तू, ओ पाकिस्तान संभल जा तू, माटी में तुझे मिला देंगे, सीमा का मान बचाने को प्राण भी हम लड़ा देंगे, ओ पाकिस्तान।

0: प्राण से सींचा मुझको वीरों ने, सदा रक्त की धारा से इस भारत की आन बान की, मैं तो अमर पताका हूँ, मैं हूँ तिरंगा आजादी का। हरित रंग अपनाया है खेतों की हरियाली का, हरित रंग अपनाया है खेतों की हरियाली का, श्रम वीरों के सपनों वाली धरती की खुशहाली का।
1: क्या बात
0: है? हरित रंग अपनाया है खेतों की हरियाली का, श्रम वीरों के सपनों वाली धरती की खुशहाली का। श्वेत रंग है सत्य प्रेम का, निर्मल निर्झर नाता हूँ। श्वेत रंग है सत्य प्रेम का, निर्मल निर्झर नाता हूँ। जन जन के विश्वासों का मैं उज्जवल भाग्य विधाता हूँ। श्वेत रंग है सत्य प्रेम का, निर्मल निर्झर नाता हूँ। जन जन के विश्वासों का मैं उज्जवल भाग्य विधाता हूँ। मैं हूँ तिरंगा आजादी का, भारत की यश गाथा हूँ। केसरिया रंग मेरा कहता, केसरिया रंग मेरा कहता, मैं बुद्ध भगत की भाषा हूँ। केसरिया रंग मेरा कहता, मैं बुद्ध भगत की भाषा हूँ। जो फांसी फंदा चूम गए उनकी अंतिम अभिलाषा हूँ। जो फांसी फंदा चूम गए उनकी अंतिम अभिलाषा हूँ। प्रेम दया और सद्भावों का, प्रेम दया और सद्भावों का, मैं पावन दीप जलाता हूँ। प्रेम दया और सद्भावों का मैं पावन दीप जलाता हूँ। लाल किले से भैया मैं वीरों के गीत सुनाता हूँ। केसरिया रंग मेरा कहता, मैं बुद्ध भगत की भाषा हूँ। जो फांसी फंदा चूम गए उनकी अंतिम अभिलाषा हूँ। मैं हूँ तिरंगा आजादी का, भारत की यश गाथा हूँ। मैंने झुकना कब सीखा है, मैंने झुकना कब सीखा है, मैं तो विश्व विजेता हूँ। मैंने झुकना कब सीखा है, मैं तो विश्व विजेता हूँ। इतिहास उठाकर गर देखो, मैं सतयुग द्वापर त्रेता हूँ। मैंने झुकना कब सीखा है, मैं तो विश्व विजेता हूँ। इतिहास उठाकर गर देखो, मैं सतयुग द्वापर त्रेता हूँ। भारत भू पर सदा सदा, भारत भू पर सदा सदा आजादी का गान रहेगा। भारत भू पर सदा सदा आजादी का गान रहेगा।

0: महान रहेगा।
1: धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण जी अपनी सामयिक और राष्ट्रपति से ये उद्भुत रचना के लिए, आपको सबकी ओर से आभार और धन्यवाद। पुनः मैं ले चलता हूँ आपको रस के सागर की ओर और श्री विनोद भ्रंग जी को आवाज दे रहा हूँ फिर से वातावरण में एक रस घोल दें और अपनी रचना प्रस्तुत करें। श्री विनोद भ्रंग।
2: धन्यवाद पथिक जी। अपने शूरवीरों को नमन स्वरूप यह मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ जो

0: नमन देश के लिए सदा जिए, देश के लिए सदा मरे, देश के लिए सदा जिए, देश के लिए सदा मरे, जो ये सोच कर अधीर है, जो ये सोच कर अधीर है, बार बार है उन्हें नमन, जो ये सोच कर अधीर है, बार बार है उन्हें नमन।
1: बहुत अच्छे।
0: और एक मुक्तक और देखिए,
2: स्वागत है।
0: 1857 के उन बलिदानों को याद करो, 1857 के उन

जीवन की गाथा लिख गए लहू की शाही से जो हंसकर जीवन की गाथा और फांसी के फंदे कहते हैं उन अफसानों को याद करो फांसी के फंदे कहते हैं उन अफसानों को याद करो। और अब एक गीत प्रस्तुत है।

के इस पावन धरती का हमको कण कण प्यारा है, इस पावन धरती का हमको कण कण

और देखें कि सूर कबीर जाय सी मीरा औगड़ कवि निराला, सूर कबीर जाय सी मीरा औगड़ कवि निराला, और पंत प्रसाद सभी से शोभित है हिंदी की माला, ऊंची सदा रहेगी इनसे, ऊंची सदा रहेगी इनसे भारत में।

0: मैं उनसे सादर निवेदन कर रहा हूँ कि वो काव्य पाठ प्रस्तुत करें।
1: धन्यवाद। बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं सभी की सुनी गई। आजादी के आंदोलन में दो प्रतीक मुख्यतः उभरे थे, एक प्रतीक था तिरंगा और दूसरा प्रतीक जो अभी भी अपने गौरव से मोहताज सा है वो है हिंदी। तो मैं आज की रचना में हिंदी को छूना चाहता हूँ और हिंदी को समर्पित कर रहा हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान। हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान।
2: वाह।
1: हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान। हिंदी में संभावना, हिंदी में संभावना, हिंदी में उम्मीद।
2: वाह।
1: हिंदी में संभावना, हिंदी में उम्मीद, हिंदी में हर पर्व है रक्षाबंधन ईद।
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: हिंदी में संभावना, हिंदी में उम्मीद, हिंदी में हर पर्व है रक्षाबंधन ईद। हिंदी है संजीवनी, हिंदी है संजीवनी, बांटे मासा ने। हिंदी में संजीवनी, बांटे मासा ने। हिंदी जनमन में बसी, जैसे तन में प्राण।
0: बहुत।
1: हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान। हिंदी के इतिहास में मीरा और कबीर, हिंदी के इतिहास में मीरा और कबीर, हिंदी ने अनगिन दिए आजादी के वीर। हिंदी के इतिहास में मीरा और कबीर, हिंदी ने अनगिन दिए आजादी के वीर। सजा हुआ प्रतिभाओं से हिंदी का इतिहास, सजा हुआ प्रतिभाओं से हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास है मणि रत्नों की खान।
0: बहुत अच्छी।
1: हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान।
2: वाह।
1: हिंदी में स्वाधीनता, हिंदी में स्वाधीनता, हिंदी में उल्लास। हिंदी में स्वाधीनता, हिंदी में उल्लास, हिंदी में जीवित रही हर सपने की आस।
2: वाह।
1: और हिंदी समता की कड़ी, हिंदी समता की कड़ी, सेवा भाव असीम, और रुके ना हिंदी के कदम। हिंदी है अभियान, हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान। संकट के हर दौर में बनती हिंदी ढाल, संकट के हर दौर में बनती हिंदी ढाल। कीर्तिमान रचता रहा हिंदी का हर काल, कीर्तिमान रचता रहा हिंदी का हर काल। हिंदी गौरव देश का, हिंदी शक्ति स्वरूप, नतमस्तक नवरस हुए सचे अतुल उपमान। हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान।
2: बहुत बढ़िया।
1: और इसका अंतिम छंद देखते हैं।
2: स्वागत है।
1: हिंदी गौरव यात्रा, हिंदी गौरव यात्रा चली अथक अविराम। हिंदी गौरव यात्रा चली अथक अविराम, हिंदी मकसद में नहीं रही कभी नाकाम। हिंदी गौरव यात्रा चली अथक अविराम, हिंदी मकसद में नहीं रही कभी नाकाम। सारे हिंदुस्तान में अब गूंजे आवाज, सारे हिंदुस्तान में अब गूंजे आवाज। हिंदी ही अब राष्ट्र की भाषा बने महान।
2: क्या बात है।
1: हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान। और दो दोहों के माध्यम से इस रचना का अभिप्राय प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2: स्वागत।
0: स्वागत।
1: हिंदी हिंदुस्तान की गरिमा में पहचान, हिंदी हिंदुस्तान की गरिमा में पहचान। हिंदी के हर वर्ण में बसता हिंदुस्तान।
2: वाह।
1: हिंदी हिंदुस्तान की गरिमा में पहचान, हिंदी के हर वर्ण में बसता हिंदुस्तान। और दूसरा दोहा इसी अभिप्राय से जुड़ा है। सखी बहन जननी सुता, सखी बहन जननी

0: आ हिंदी के स्वरूप। सखी बहन हिंदी सुता हिंदी के स्वरूप, धुरी समन्वय की बनी हिंदी सुलभ अनूप, धुरी समन्वय की बनी हिंदी सुलभ अनूप, हिंदी सुलभ अनूप, हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान, हिंदी में संभावना हिंदी में उम्मीद, हिंदी में हर पर्व है रक्षा बंधन ईद, हिंदी है संजीवनी बाटे मासानेह, हिंदी जनमन में बसी जैसे तन में प्राण, हिंदी हिंदुस्तान की है अटूट पहचान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान, हिंदी ने तुलसी दिए सूर और रसखान, हिंदी के इतिहास में मीरा और कबीर, हिंदी के इतिहास में मीरा और कबीर, हिंदी ने अनगिन दिए आजादी के वीर, सजा हुआ प्रतिभाओं से हिंदी का इतिहास, सजा हुआ प्रतिभाओं से हिंदी का इतिहास, हिंदी का इतिहास है मणि रत्नों की खान, हिंदी का इतिहास है मणि रत्नों की खान।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्री विनोद भ्रंग, श्री वीरेंद्र आजम, श्री नरेंद्र मस्ताना। कवि गोष्ठी का संचालन किया था श्री हरिराम पथिक ने। आइए सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देश गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर 3 बज रहे हैं। अब हमारी सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

शुभ संध्या श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सुनेगा कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत, जिसमें आज जानकारी लाए हैं प्रधानमंत्री आवास

योजना ग्रामीण और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। श्रोता, उन्नत भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे गांव खुशहाल होंगे, हर ज़रूरतमंद परिवार के पास सुरक्षित घर होगा और गांव की महिलाएं तथा गरीब परिवारों के पास अपनी आमदनी बढ़ाने के साधन होंगे। और श्रोताओं, इन्हीं ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री आवास योजना। श्रोताओं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे पात्र परिवारों के लिए है जिनके पास पक्का घर नहीं है या जो बहुत कमजोर कच्चे मकान में रह रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर बनाने में आर्थिक सहायता मिल सके। योजना में घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर रखा गया है। सामान्य मैदानी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं पूर्वोत्तर यानी पहाड़ी, दुर्गम और कुछ विशेष क्षेत्रों में ये सहायता 1,30,000 रुपये है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा या अन्य निर्धारित स्रोतों के माध्यम से मिल सकती है। घर बनाने में मनरेगा के तहत मैदानी क्षेत्रों में 90 व्यक्ति प्रतिदिन और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 95 व्यक्ति प्रतिदिन के अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान भी है। और श्रोताओं, साल 2024 से 2029 के चरण में योजना के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मुख्य रूप से ऐसे परिवार जो बेघर या कच्चे जर्जर मकान में रहते हैं। निर्धारित सरकारी पात्रता और बहिष्करण नियमों के अनुसार पात्र हों उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। लाभार्थियों की पहचान सरकारी आंकड़ों, आवास प्लस सर्वे आदि के आधार पर होती है और सूची का सत्यापन ग्राम सभा करती है। और श्रोताओं, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही पता करें कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्र सूची में है या नहीं। अगर पात्र परिवार सर्वे में छूट गया है तो वर्तमान चरण में आवास प्लस 2024 के सेल्फ सर्वे या असिस्टेड सर्वे की व्यवस्था है। सेल्फ सर्वे के लिए आधिकारिक आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप उपलब्ध है। इसमें आधार आधारित eKYC परिवार की जानकारी और घर की स्थिति की फोटो आदि दर्ज की जाती है, लेकिन सर्वे कर देने से घर मंजूर होना तय नहीं होता। पात्रता की जांच ग्राम सभा के सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए ग्राम पंचायत में जानकारी लें, अपना नाम जांचें और यदि सर्वे की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रक्रिया से सर्वे कराएं। और ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया के लिए किसी ब्रोकर को पैसे ना दें। और आई श्रोताओं, अब बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। श्रोताओं, DAY NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाएं अपनी रुचि और स्थानीय जरूरत के अनुसार खेती किसानी, पशुपालन, दूध उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे छोटे कारोबार जैसे कामों से जुड़कर स्वयं सहायता समूह यानी SHG ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस मिशन के तहत ऐसे समूहों को प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाओं से जोड़ने, बैंक से ऋण दिलाने और आजीविका के अलग अलग साधन विकसित करने में सहायता दी जाती है। इस मिशन में महिलाओं को बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों की बिक्री के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। यानी उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं बल्कि महिलाओं को संगठित करना, उन्हें हुनर देना, बैंक बाजार और उनकी कमाई को मजबूत बनाना भी है, जिससे सबसे बड़ा फायदा है आत्मनिर्भरता का।
इसी दिशा

ये लखपति दीदी जैसी पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के परिवारों की सालाना आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख तक पहुंचाने के लक्ष्य पर भी काम किया जा रहा है। श्रोतम, DAYNRLM का मुख्य फोकस ग्रामीण, गरीब और कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है। इस योजना से जुड़ने और लाभ लेने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है अपने गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़ना, जिसमें ग्राम पंचायत, गांव की आजीविका समूह, ग्राम संगठन या संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार मिलता है, इसीलिए सही जानकारी लें, दस्तावेजों की जानकारी संबंधित कार्यालय से लें और किसी भी बिचौलियों के झांसे में ना आए। तो श्रोताओं, आज की जानकारी से यही संदेश है कि जब हर गांव आगे बढ़ेगा तभी भारत भी आगे बढ़ सकेगा और विकसित कहलाएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप बने रहें आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना नगीना जनपद बिजनौर से गुमशुदा महिला एवं बच्चे की तलाश के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नेजोवाली गांवड़ी थाना नगीना जनपद बिजनौर निवासी श्रीमती तनु पत्नी दिनेश उर्फ

जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। एक हरा शरीर, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट, हल्का पीले रंग का सूट पहने अपने 6 माह के बेटे आरव के साथ सैनी ढाबा, ग्राम अलीगढ़, थाना नगीना, जनपद बिजनौर से दिनांक 1 अगस्त 2026 करीब 3 बजे से लापता हैं। इनके संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9675679590। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9675679590। एक अन्य सूचना इस प्रकार है, ग्राम इस्लामपुर दास, थाना कोतवाली, जनपद बिजनौर से प्राप्त सूचना के अनुसार इस्लामपुर दास रोड जीडी हॉस्पिटल के पास लक्ष्मी नगर, थाना कोतवाली, शहर बिजनौर निवासी भावना वर्मा, पुत्री श्री राजेंद्र कुमार वर्मा, दिनांक 26 जुलाई 2026 को सुबह करीब 7 बजे से लापता हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनकी उम्र करीब 31 वर्ष है। रंग साफ, नाक कान औसत, लंबाई करीब 4 फुट 10 इंच है। यदि किसी व्यक्ति के उनके संबंध में कोई सूचना मिले तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 7409042298, 9740904278। एक अन्य नंबर है 9454403132। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय 5:12 और श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय रिपोर्ट आकाशवाणी लखनऊ से सुनिएगा आज रात्रि 10 बजे। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अंतर्गत सुनिएगा लघु रूपक सिनेमा में कैद आजादी की गूंज आकाशवाणी दिल्ली से आज रात्रि 9:30 पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ से आज संध्या 8 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं आज शाम 6:50 पर आकाशवाणी लखनऊ से, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे चंदन दास की गाई चंद गजलें। और अब से कुछ ही देर यानी शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें क्रम रहेगा कुछ खास है आज, गीत आपके नाम, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्क्रैप बुक, बूस्टर्स और स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आवाज आजादी की। आलेख शुमाइला, प्रतिभागी कलाकार शुमाइला, श्रेया, नंदनी, दिव्यम, मोहित, दीपांशु, प्रस्तुति शोभित शर्मा की। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आज किसान भाई सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति पूर्ण लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम माटी मारे देश की। साथ ही योगी चर्चा पारंपरिक खेती के से आधुनिक खेती की ओर और स्वतंत्रता दिवस पर। और आइए अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर, अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा कल रात्रि 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सवेरे 6:05 पर, रामचरित मानस गान का प्रसारण समय कल प्रातः 6:30 पर, चिंतन सुनिएगा कल सवेरे 6:40 पर। काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 6:45 पर सुनिएगा श्री सुनील कुमार टॉक से काव्य पाठ, तंबाकू के सेवन से बचें, ये जानकारी रहेगी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 7:05 पर। इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें, खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा कल प्रातः 7:10 पर। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम रोज की ही तरह सुबह 7:31 पर। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

0: ये हवा सिर्फ हवा नहीं, इसमें आज़ादी की वो खुशबू है जिसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया।
1: विश यू आर वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। और आज की शाम आपके साथ प्रोग्राम में रहूंगी मैं, आपकी अपनी दोस्त एंड होस्ट शुमायला।
0: और दोस्तों, शुमायला के साथ प्रोग्राम में रहूंगा मैं, आपका दोस्त और आज का वन ऑफ द होस्ट दीपांशु सिसोदिया।
1: दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है 15 अगस्त और आज भारत की हर एक गली हर एक कूचे में आज़ादी की आवाज़ जोर शोर से गूंज रही है। और जैसे 15 अगस्त है तो भारत के इतिहास में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक एहसास है
0: जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी के पीछे केवल कुछ जाने पहचाने ही नहीं बल्कि लाखों जाने पहचाने अनजाने चेहरों का संघर्ष छुपा है।
1: दोस्तों, आज हम मना रहे हैं अपने देश का स्वतंत्रता दिवस, 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो दिन जब हमारा भारत लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ।
0: 15 अगस्त को सिर्फ आजादी का जश्न मनाने नहीं सिखाता बल्कि उन वीरों को याद करने का मौका भी देता है
1: जिनमें से किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने अपने परिवार से दूर रहकर देश की लड़ाई लड़ी।
0: और सभी के दिलों में बस एक ही सपना था, एक आजाद भारत।
1: तो इसी इमोशन, इसी भावना के साथ आपको सुनवाते हैं आज के युवानी प्रोग्राम का पहला ये गीत।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
7: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
8: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
9: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
10: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
11: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
10: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
12: और डोज में क्या है?
11: डोज में है मजा।
10: जी हाँ, मजा आ गया।
13: बेटा पिंकी, ले बेटा कुछ खा ले, मैं तेरे लिए चने लाया।
14: अरे पापा, कितनी बार आपसे मैंने कहा है, जब मैं ऑनलाइन क्लास लिया करूँ तो आप मेरे पास नहीं आया करो।
13: अरे क्यों बेटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो खाने के लिए ही पूछा।
14: अरे मैं मना कर रही हूँ ना, आप कमरे में इधर से उधर मत घूमा करो।
13: वो तो ठीक है, पर क्यों?
14: क्योंकि आपको देख के मेरी मैडम का ध्यान भटक जाता है।
10: जी हाँ, मजा आ गया।
15: वेलकम बैक दोस्तों, अब वक्त हो गया हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम का। आवाज आजादी की, आलेख शुमाइला, प्रतिभागी हैं शुमाइला, श्रेया, नंदिनी, दिव्यम, मोहित, दीपांशु, और प्रस्तुति शोभित शर्मा। तो चलिए सुनते हैं।

0: आवाज ही तो है, क्या ही होगा, कहकर जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। कभी वही आवाज इतिहास लिख जाती है तो कभी वही आवाज बदलाव की शुरुआत बन जाती है।
1: पीढ़ियां बदलती हैं तो आवाजें भी बदलती हैं, कभी खतों में, कभी रेडियो में, और आवाज हमारी बातों और तकनीकों में ढलती है। मगर सवाल ये नहीं कि आवाज किसकी है, सवाल ये है कि हौसला कितना है, हिम्मत कितनी है।
0: क्योंकि शायद लोग आवाज भूल जाएं, आपका और हमारा नाम भूल जाएं, लेकिन हौसले और हिम्मत की दास्तान कभी भुलाई नहीं जाती, कभी दबाई नहीं जाती। भारत आज ऐसी ही अनगिनत आवाजों के साथ अपना 80वां आजादी दिवस मना रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
1: शायद आजादी के साथ जीना इतना मुश्किल नहीं जितना आजादी के लिए लड़ना है, और शायद ना तो आप ना ही हम उस एहसास को महसूस कर सकते हैं जो गुलामी में बंधे मुल्क में खड़ी एक एक रूह ने किया,
0: जो हुकूमत की

0: सख्त जंजीरों में बंधी आवाज ने किया, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि आवाज को बांधा नहीं जा सकता। फिर चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना हो या फिर भगत सिंह का इनकलाब।
1: लेकिन हिंदुस्तान की आजादी की आवाज सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, इस आवाज को जन जन तक पहुँचाया उषा मेहता ने।
0: लेकिन ये आवाज अकेली नहीं थी, इसमें शामिल था विट्ठल भाई जावेदी और बाबू भाई खाखर का हौसला। इसमें शामिल थी नरीमन प्रिंटर साहब की तकनीक। इसमें शामिल था राम मनोहर लोहिया का जज्बा। ये सभी मिलकर उस आवाज का हिस्सा बने जिसे अंग्रेजी हुकूमत दबाना चाहती थी, मगर हिंदुस्तानियों का हौसला उसे फिर बुलंद कर देता था। साल था 1942।
1: भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज से हिंदुस्तान की फिजाएं गूंज रही थी। हर तरफ आजादी की पुकार थी, हर दिल में एक ही ख्वाब था, आजाद हिंदुस्तान।
0: लेकिन इस पुकार को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
1: अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, खबरों का प्रसारण रोक दिया गया, रेडियो की आवाज पर पहरा बैठा दिया गया।
0: और देखते ही देखते जिस देश में आजादी की गूंज थी वहाँ एक खामोशी छा गई। मगर सवाल ये था कि
1: जब अखबार खामोश कर दिए हो, जब रेडियो के दरवाजे बंद कर दिए गए हो, तो हिंदुस्तान की आवाज पहुँचेगी कैसे?
2: आवाज को रास्ता चाहिए, और अगर रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो रास्ता बनाया जा सकता है।
0: और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें हथियार नहीं था, सिर्फ एक आवाज थी,
1: और उस आवाज का नाम था उषा मेहता।
0: एक ख्याल जन्म ले चुका था, अब जरूरत थी उस ख्याल को हकीकत में बदलने की।
2: अगर हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो क्यों ना अपनी आवाज को लोगों तक खुद पहुंचाया जाए।
3: लेकिन उषा, अंग्रेजों ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं?
2: हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने रेडियो पर बंदिश लगाई है, लेकिन हमारी आवाजों को कैसे गुलाम बनाएंगे? खबर तो पहुंचेगी हर हिंदुस्तानी तक, और रेडियो के जरिए ही पहुंचेगी।
3: रेडियो से? लेकिन ये कैसे मुमकिन है?
2: हम एक अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो स्टेशन बनाएंगे।
0: इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन ने सभी की आंखों में उम्मीद की नई किरण ला दी। आंखों ने ख्वाब तो देख लिए, लेकिन अब वक्त था इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का।
1: और ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं था,
0: जरूरत थी साधनों की, जरूरत थी धन की, और सबसे बढ़कर जरूरत थी तकनीक की। क्योंकि आवाज बुलंद थी, मगर उसे आसमान की तरंगों तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसमीटर की जरूरत थी।
1: अब सवाल था पैसा कहां से आएगा, और वो तकनीक कौन देगा जो इस खामोश मुल्क को फिर से बोलना सिखा दे।
3: पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ, ये आवाज साधनों की कमी से नहीं रुकेगी, और तकनीक की तलाश भी हम जल्द ही कर लेंगे। हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस खामोश आवाज को तरंगों तक पहुंचा सके। उषा, हमें एक ऐसे इंसान की खबर मिली है जो रेडियो तकनीक से वाकिफ है।
2: कौन है वो?
3: नरीमन अबरबाद प्रिंटर।
2: लेकिन वो हमारे कैसे काम आएंगे?
3: नरीमन के पास अमेच्योर रेडियो ऑपरेटर का लाइसेंस है, और उन्हें रेडियो ट्रांसमीटर बनाने और चलाने की जानकारी भी है।
0: सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अमेच्योर रेडियो गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, और रेडियो उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
1: इसीलिए कांग्रेस रेडियो के लिए ट्रांसमीटर तैयार करना केवल तकनीकी समस्या नहीं थी, ये कानूनी और राजनीति जोखिम भी था।
3: कोई है अंदर?
4: जी कौन?
3: जी हमें नरीमन प्रिंटर साहब से मिलना है।
4: आप कौन हैं?
2: घबराइए नहीं प्रिंटर साहब, हम हिंदुस्तानी ही हैं। आपसे एक जरूरी काम है।
4: मैं किस तरह से आपके काम आ सकता हूं?
3: नरीमन साहब, सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। दरअसल हम हिंदुस्तानियों तक खबरें पहुंचाने के लिए रेडियो का प्रसारण करना चाहते हैं।
4: रेडियो प्रसारण? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप नहीं जानते कि सरकार ने रेडियो प्रसारण पर रोक लगा रखी है?
2: जानते हैं प्रिंटर साहब, तभी तो आपके पास आए हैं, जिससे आप हमें कांग्रेस रेडियो

0: लिए ट्रांसमीटर बना कर दें।
1: लेकिन ये काम बहुत जोखिम भरा है। ये रास्ता आसान नहीं है।
0: हमें आसान रास्ता चाहिए भी नहीं, हमें बस एक रास्ता चाहिए जिस तक आप ही हमें पहुंचा सकते हैं।
2: नरीमन प्रिंटर मान गए अपनी तकनीकी जानकारी उषा और विठल भाई के साथ साझा करने के लिए।
3: नरीमन ने अपनी तकनीकी समझ और हुनर को काम में लगाया और तैयार हुआ वो उपकरण, वो ट्रांसमीटर जो आगे चलकर हिंदुस्तान की आवाज को तरंगों पर सवार करने वाला था।
2: दिन था 27 अगस्त 1942, जगह बॉम्बे का चौपाटी इलाका, शाम के लगभग 7:30 बजे।
3: एक छोटे से गुप्त ठिकाने में कुछ लोग अपनी सांसें थामे बैठे थे। सामने था एक ट्रांसमीटर और उसके सामने बैठी थी एक 22 साल की नौजवान लड़की उषा मेहता।
1: उषा जी, सब तैयार है।
4: अब ये आवाज हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचने के लिए तैयार है।
0: तो फिर शुरू करते हैं। ये कांग्रेस रेडियो है जो 42.34 मीटर तरंग दैर्ध्य पर हिंदुस्तान में कहीं से प्रसारित हो रहा है।
2: प्रसारण में कहीं भी जगह का नाम या किसी भी साथी का नाम नहीं बताया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत की निगरानी के बीच जन्मी एक गुप्त आवाज थी।
3: इस प्रसारण का मकसद मनोरंजन नहीं था, ये उन खबरों और संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का जरिया था जिन्हें सेंसरशिप की दीवारों के पीछे कैद कर दिया गया था।
0: देशवासियों, आज हम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आई वो खबरें पढ़ेंगे जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। बलिया में जनता ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी है, वहां कुछ समय के लिए समानांतर शासन स्थापित हो चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों शोरों से जारी है। आष्टी और चिंबूर में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी हुकूमत ने कठोर कार्रवाई की है। गिरफ्तारियां हुई हैं, गोलियां चली हैं और जनता को दबाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानियों, ये सिर्फ अलग अलग शहरों की खबरें नहीं, ये इस बात की गवाही है कि हिंदुस्तान का कोई कोना आज़ादी की पुकार से अछूता नहीं है। हम आपको वही बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता।
2: आवाज के जरिए आजादी की ये लड़ाई कुछ महीनों तक जारी रही।
3: अंग्रेजी हुकूमत की निगाहें लगातार इस गुप्त रेडियो की तलाश में थी, जिस वजह से हर कुछ दिनों में ठिकाना बदलना पड़ता था।
4: उषा, हमें आज रात ही ये जगह छोड़नी होगी। हुकूमत को शायद हमारे ठिकाने का अंदाजा हो गया है। नरीमन साहब, क्या सारा सामान तैयार है?
1: सामान तैयार है। हम जहां भी जाएंगे ट्रांसमीटर हमारे साथ जाएगा। आवाज रुकनी नहीं चाहिए।
0: ठिकाने बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, मगर हमारा मकसद नहीं बदल सकता। नमस्कार साथियों, ये कांग्रेस रेडियो है जो 42.34 मीटर तरंग दैर्ध्य पर हिंदुस्तान में कहीं से प्रसारित हो रहा है। हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहा है। ये वक्त है जब हम सब एक साथ जुड़कर अपने लिए आज़ादी छीन सकते हैं। विद्यार्थियों, ये समय अपनी जिम्मेदारी समझने का है। मजदूर भाइयों, आपकी मेहनत इस देश की शक्ति है। किसानों, आप सभी हिंदुस्तान की मिट्टी की पहचान है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है।
5: You bloody people, open the doors!
0: देशवासियों, अगर ये आखिरी आवाज है तो याद रखिएगा, आजादी की आवाज को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जय हिंद।
5: दरवाजा खोलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे।
4: उषा, हमें लगता है अंग्रेज हमें पकड़ लेंगे। उन्हें हमारे ठिकाने का पता चल चुका है, अब क्या होगा?
1: अब कुछ नहीं हो सकता, हम पकड़े जा चुके हैं।
0: पकड़े जाएं तो पकड़े जाएं, हम घुटने नहीं टेकेंगे। इन अंग्रेजों को धूल चटा कर रहेंगे और रेडियो तो चलेगा।
5: ये क्या कर रहे हो तुम? स्टॉप इट नाउ।

0: ये हिंदुस्तान का गीत है, इसे बीच में रोकना अपने देश का अपमान करना है। इसे बचने दीजिए, ये नहीं रुकेगा।
1: I told you people, stop it right now. Otherwise, I will kill you bastards.
0: चाहे जो कर लो, ये गीत नहीं रुकेगा।
2: और वो गीत नहीं रुका, ना ही वो आवाज रुकी। भले ही रेडियो प्रसारण को ब्रिटिश हुकूमत ने बंद कर दिया, लेकिन उस आवाज का संदेश इतिहास में दर्ज हो चुका था।
3: 12 नवंबर 1942 को कांग्रेस रेडियो का अंतिम प्रसारण हुआ। उषा मेहता और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। यरवदा जेल में बिताए वर्षों के बाद मार्च 1946 में उषा मेहता रिहा हुई।
2: आजादी जो हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत लोगों के संघर्ष, त्याग और साहस की कहानी है। कुछ नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हुए और कुछ गुमनामी में रह गए, लेकिन क्या किसी का नाम इतिहास में ना होना उसके योगदान को छोटा कर देता है? नहीं, क्योंकि देश की आजादी में हर एक कदम की अपनी कीमत थी। आज हम उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया।
3: अब हमारी बारी है इस आजादी की कीमत समझने की, देश की एकता बनाए रखने की और अपने भारत को बेहतर बनाने की।
2: हम अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
5: हेलो हेलो पापा।
6: हाँ बेटा बोलो।
5: पापा कहाँ हो आप?
6: ऑफिस में हूँ बेटा। क्या हुआ, इतने जल्दी जल्दी क्यों पूछ रही हो?
5: अरे पापा, एक बड़ी अजीब बात हो गई है।
6: हाँ क्या क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी ठीक है?
5: हाँ हाँ पापा, मम्मी तो बिल्कुल ठीक है, बस वो पड़ोस वाली आंटी है ना, घर से चली गई है।
6: अरे बेटा, तो इसमें बड़ी बात क्या है?
5: मम्मी ने कहा है कि आपसे पूछ लूँ, कहीं आंटी आपके साथ तो नहीं है।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
5: तो दोस्तों, एक बार फिर हम पहुंचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो से बाहर, और आज आज़ादी के इस दिन को मनाते हुए हम मिले हैं अपने कुछ युवा साथियों से। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका नाम।
7: पलक।
5: पलक, तो पलक कैसी हैं आप?
7: मैं बढ़िया, आप बताइए।
5: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है।
7: थैंक यू।
5: सो पलक, एक्चुअली हम आकाशवाणी से हैं और हमारे युवानी प्रोग्राम में एक सीरीज चल रही है मेकर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करते हैं हमारी आज़ादी के अनसंग हीरोज के, जिनका कंट्रीब्यूशन शायद हम भूल गए हैं या हमें याद नहीं है। तो वैसे जब आज़ादी की बात चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके लिए आज़ादी क्या है?
7: मेरे लिए आज़ादी अपने हक के लिए लड़ना है और अपने लिए बोलना है, कोई रोक टोक नहीं होना, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है कि अगर हमें ये करना है तो करना ही है। वो पल अलग बात है कि हाँ, हम जॉब में रहते हैं, तो जॉब को छोड़ के अगर रखा जाए तो हम आज़ाद हैं।
5: चले ठीक है। अच्छा, आज आप जैसे जॉब कर रही हैं, तो आपके लिए आज़ादी का दिन खास कैसे रहा?
7: आज मैं एक टीचर हूँ होली फैमिली स्कूल में, एंड वहाँ पर हमने सेलिब्रेशन किया, बच्चों ने डांस किया, सॉन्ग गाए, एंड सिस्टर ने फ्लैग होस्टिंग की।
5: और मतलब स्कूल्स में तो आज़ादी का जश्न अलग ही होता है ना, हर बार की तरह?
7: हाँ, क्योंकि सिर्फ स्कूल में ही आपको इंडिपेंडेंस डे की वाइब आ सकती है, उसके बाद जब आप निकल जाते हो स्कूल लाइफ से, तो आपको पता ही नहीं चलता कि इंडिपेंडेंस डे कब निकला, रिपब्लिक डे कब निकला। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस होती है बच्चों से, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो पूरा माहौल रहता है कि हाँ आज इंडिपेंडेंस डे है।
5: बिल्कुल। तो ऐसे ही जो आज़ादी है, इसके कुछ अनसंग हीरोज रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन शायद हम भूल गए हैं, तो मैं आज आपको एक नाम बताती हूँ, आप मुझे बताइए आप उनके बारे में कितना जानती हैं। तो उनका नाम है रघुवर दयाल श्रीवास्तव। आपने सुना है इनका नाम?
7: हाँ मैंने सुना है, पर मैं इनके बारे में इतना जानती नहीं हूँ।
5: अच्छा, आपने पढ़ा है इनके बारे में बुक्स वगैरह में या फिर कैसे?
7: पढ़ा नहीं है, लेकिन एक जैसे इंस्टाग्राम में रील चलती रहती है, तो वहाँ देखा है।
5: ओके चलिए, कोई बात नहीं।
8: हम मिलने आ चुके हैं अपने एक और युवा से, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम उनका नाम।
9: मैं नाम हर्ष कुमार है।
8: हर्ष, क्या करते हैं आप?
9: मैं प्रोफेशनली एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं
8: ओके। सो हर्ष, मैं आपसे एक हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछूंगा, मे बी आपको पता हो और मे बी नहीं, है ना। सो उनका नाम है रघुवर दयाल श्रीवास्तव, क्या आप उनके बारे में जानते हैं?
9: हाँ, मैंने उनके बारे में इंटरनेट से जो भी रिसोर्सेस से पता चला है कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे। 11th अगस्त 1911 की

0: बात है, तो मेरे को अपना ज़्यादा इसके रिगार्डिंग कोई इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितनी नॉलेज है मेरे को इतना पता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे।
1: अच्छा,
0: इसी ड्यूरेशंस में।
1: ठीक है ठीक है, तो इसके अलावा आपको नहीं पता है, लाइक पहले कभी आपने उनको देखा?
0: नहीं, मैंने वैसे ऐसे तो नहीं सुना, बट ऐसे रैंडमली रील स्क्रॉल करने के जब ड्यूरेशन मैंने देखा था, तभी थोड़ी सी मेरे को उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदर हुई थी, बस इतने ही मैं जानता हूँ।
2: मिलता है हमारे दूसरे एक फ्रेंड से, इनका नाम है
3: अंशिका।
2: अंशिका, तो अंशिका हम यहाँ पर आकाशवाणी से है और हमारी एक सीरीज चल रही है मेकर्स ऑफ इंडिया, जिसके तहत हम आपको एक फोटो दिखाएंगे एक अनसंग हीरो की, एक आजादी के हीरो की, जिसे आपको पहचानना है। ओके, आर यू रेडी?
3: यस आई एम रेडी।
2: ओके, तो ये फोटो है, आप ये देखिए।
3: मैंने इन्हें देखा तो है पर मैं इनका नाम नहीं जानती।
2: अच्छा, आपने देखा है, कहाँ देखा है आपने?
3: मैंने इनको हिस्ट्री बुक्स में देखा है।
2: हिस्ट्री बुक्स में, अच्छा ठीक है। तो मैं अगर आपको दो ऑप्शन दूं तो आप चूज कर पाएंगी?
3: यस।
2: ओके, तो योर ऑप्शंस आर प्रफुल्ल चाकी या फिर रघुवर दयाल श्रीवास्तव।
3: रघुवर दयाल श्रीवास्तव,
2: बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है इन्हें अंशिका।
3: मुझे देख के नेम याद नहीं आ रहा था, लेकिन आपने ऑप्शंस दिए तो मुझे याद आ गया।
2: बिल्कुल, चले अंशिका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी, आपको कैसा लगा?
3: मुझे बहुत अच्छा लगा,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देती हूँ कि रघुवर श्रीवास्तव दयाल कौन। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिनका नाम है रघुवर दयाल श्रीवास्तव, जिन्हें शायद आप या हम भुला चुके हैं। जी हाँ, इनका नाम इतिहास में भारत को आजाद कराने में लिखा गया है, और ये कहानी है आजमगढ़ की धरती पर जन्मे एक साहसी स्वतंत्र सेनानी की। इनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के एक साधारण सी फैमिली में हुआ था, और साधारण सी फैमिली में जन्म लेने के बाद इस साधारण से व्यक्ति ने बहुत असाधारण एहसास के साथ भारत की आजादी में अपना योगदान दिया।
1: दोस्तों, ये बात है तब की जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान किया, तब रघुवर दयाल जी ने उनके साथ जी जोर लगाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया।
2: और दोस्तों, जब अंग्रेज सरकार को इनका ये विरोध पसंद नहीं आया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देश की आवाज उठाने की कीमत रघुवर दयाल श्रीवास्तव को जेल की सजा के रूप में चुकानी पड़ी। शायद आपने इनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत बार ना पढ़ा हो, लेकिन आजादी की लड़ाई में इनके जैसे अनगिनत गुमनाम सेनानियों का भी बड़ा योगदान है।
1: दोस्तों, आपको बता दें कि रघुवर दो बार गिरफ्तार हुए थे, जिसमें पहली बार उन पर सेक्शन 447 IPC के तहत 3 महीने की जेल और दूसरी बार एक्ट 1922 के तहत 4 महीने की जेल मिली थी। दोस्तों, जेल में उन्हें काफी टॉर्चर किया गया, उनको मानसिक तौर से प्रताड़ित किया गया, पर उसके बाद भी उन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा, उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, देशभक्ति पर अड़े रहे।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: दोस्तों,

0: 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अभी आपने सुना इन संदेशों से पहले एक विशेष कार्यक्रम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमने बात की रघुवर दयाल श्रीवास्तव जी के बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और लेके चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो है स्क्रैप बुक। तो आज स्क्रैप बुक में आप सुनेंगे अक्षी की हमारे स्टूडियो में आमंत्रित युवा से उनकी पसंद और व्यक्ति के विषय में बातचीत, प्रज्ञापाल जी, हाँ, उनके उनसे बातचीत। और चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेगमेंट स्क्रैप बुक में, जिसमें हमारे साथ रूबरू होते हैं हमारे कुछ युवा साथी। और ऐसे ही एक युवा साथी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
2: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञापाल है।
1: तो प्रज्ञा, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके।
1: तो प्रज्ञा, अभी आप स्टडी में क्या कर रही हैं?
2: जी, मेरा बीएससी फाइनल हो गया है, अभी मुझे डी फार्मा में एडमिशन लेना है।
1: ओके, तो जैसे कि हमारा सेगमेंट है स्क्रैप बुक, और इसमें हम लोग जानते हैं बहुत अलग अलग चीजें। इसमें 3 राउंड होंगे और जिसमें आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। क्या आप रेडी हैं?
2: जी।
1: तो सबसे पहला हमारा राउंड है पहेलियों का, ठीक है? तो आप तैयार है ना पहेलियों के जवाब देने के लिए?
2: बिल्कुल।
1: ठीक है, तो हमारी सबसे पहली पहेली है आपके लिए, ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसका इस्तेमाल आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? सोचो सोचो क्या हो सकती है। इवन अभी मैंने भी उस चीज का यूज किया था।
2: तो इसका आंसर है आपका नाम।
1: या बिल्कुल, यानी कि आपका जो नाम है वो आपसे ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमारा दूसरा सवाल है आपसे, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर आवाज नहीं होती लेकिन वो टूट जाता है?
2: तो इसका आंसर है वादा।
1: हाँ जी बिल्कुल, तो वादा जो है वो टूट ही जाता है, आप कितना भी प्रॉमिस कर लीजिए लेकिन वो प्रॉमिस टूटता ही टूटता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, वो कौन है जो बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है और बिना पंखों के उड़ता है?
2: इसका आंसर है हवा।
1: हाँ जी हवा। ओके, आपसे एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है, उसका जवाब देना। मैं जितना भरता हूं उतना ही हल्का होता जाता हूं, बताओ मैं कौन हूं?
2: गुब्बारा।
1: या बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। तो चलिए ये राउंड आपका हुआ और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। अब हम आपसे पूछेंगे दिस और दैट, यानी कि आपको एक जवाब देना है, ये रैपिड फायर में होगा। ओके, तो सन या मून?
2: मून।
1: एयर या फायर?
2: एयर।
1: लाइट लैम्प?
2: लाइट।
1: स्काई अर्थ?
2: स्काई।
1: टाउन सिटी?
2: सिटी।
1: लेफ्ट राइट?
2: लेफ्ट।
1: नाम बेनाम?
2: नाम।
1: पानी दूध?
2: पानी।
1: मोमोज या स्प्रिंग रोल?
2: मोमोज।
1: इसका मतलब आप मोमोज खाती हैं। ओके, बर्गर या चाउमीन?
2: बर्गर।
1: ओके, डॉग या काउ?
2: डॉग।
1: क्यों, काउ नहीं चाहिए? ओके ठीक है, और चलिए ये तो बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने बहुत जल्दी जल्दी जवाब हमें दिए हैं। तो प्रज्ञा, चलिए चलते हैं आगे, अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ है जिसे सोचकर आपको लगता है कि काश मैं फिर से वहां चली जाऊं और उस चीज को दोबारा से जी पाऊं?
2: वैसे तो बचपन है जो मैं दोबारा से जीना चाहती हूँ, पर एक और चीज है जो मैं दोबारा से जीना चाहती हूँ, वो है नानी का घर।
1: वाओ, यानी आप नानी के बहुत क्लोज हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: नानी के घर वाला जो जीवन है वो क्यों जीना चाहते हैं, ऐसा क्या है वहां पर?
2: नानी के हाथ की रोटी और घी।
1: वाओ, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप घी खा के मोटी हुई होंगी?
2: हाँ, क्योंकि मैं मोटी तो नहीं हुई, क्योंकि नानी का प्यार ही इतना है।
1: वाओ, तो इसके अलावा आपको क्या गाना पसंद है?
2: जी बिल्कुल, गाना पसंद है।
1: क्या आप गाती हैं?
2: नहीं, गाती नहीं हूँ।
1: मतलब सुनना ज्यादा पसंद?
2: हाँ,
1: है
2: सुनना पसंद है।
1: तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी और हमारे लिसनर्स को भी सुनवाना चाहेंगी?
2: कभी ना जाओ छोड़कर।
1: ओके, तो हम भी नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, टेंशन ना लीजिए। तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्रज्ञा की पसंद का ये गीत।

0: दोस्तों ये तो है हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए भेज सकते हैं, खत के जरिए बता सकते हैं। और खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467663 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: हाँ, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कीजिए।
0: इसी के साथ मुझे यानी शुमायला और
1: मुझे दीपांशु को
0: दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है अब समाचार हो।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन

0: 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक 8 होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय संध्या के 6:05 और अब किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार
1: और आपके भैया अंकित कुमार की
0: राम
1: राम राम।
0: राम। और भैया अंकित, कैसे हाल चाल है भाई थारे?
1: देखो भैया, हाल चाल तो हमारे बढ़िया ही है। और भैया, आज दिल में थोड़ी सी उमंग भी है।
0: हाँ भैया, बिल्कुल, उमंग होने का भाई दिन भी है, क्योंकि भाई ऐसा वैसे तो

0: अरे हर दिन विशेष ही होता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन भाई कुछ दिन ऐसे होते हैं विशेष जो कि भैया इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं,
1: बिल्कुल भैया,
0: जैसा कि आज का दिन है भाई 15 अगस्त।
1: बिल्कुल भैया। तो हमारी तरफ से सभी किसान बहन भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल भैया, देखो हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी किसान बहन भाइयों को, हमारे देश के नौजवान साथियों को, हमारे जवानों को जो हमारे देश की निरंतर सेवा करते रहते हैं,
1: बिल्कुल
0: और भाई जो हमारे किसान भाई देश के लिए अन्न उत्पादन करते हैं और भाई देश का पेट भरते हैं, भाई सभी को हार्दिक बधाई
1: बिल्कुल
0: एवं
1: भैया।
0: शुभकामनाएं। भाई देखो जैसा कि बात स्वतंत्रता दिवस की चल रही है ना भैया, देखो स्वतंत्रता दिवस आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी भैया 80 साल हम हो गए अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए,
1: बिल्कुल
0: है
1: भैया
0: ना भैया। और देखो जहां तक हमारे देश की बात है, हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद से यानी कि आजादी के बाद से इतनी तरक्की की है कि भैया खूब तरक्की की, जहां भैया एक तरफ देश के जो जवान हैं हमारे भैया उन्होंने सीमा पर खड़े होकर भैया देश की सेवा की है, वहीं भैया जो हमारा किसान है भाई उसने अपने खेत में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भैया और AI के माध्यम से, आजकल तो भैया देखो एक और नया वो चल लिया भैया प्रोसीजर,
1: क्या भैया।
0: भैया नया विधि चल रही है कि हम जो अपनी फसलें हैं ना भाई जब हम खेतों में बढ़ना छोड़ दिए हैं, तो
1: हाँ
0: भैया ड्रोन सिस्टम चल गया स्प्रे का।
1: बिल्कुल भैया, देखो आज का जो युग है बदलता युग है। पहले जो खेती थी वो पारंपरिक थी,
0: बिल्कुल
1: और भैया आज की जो खेती है वो आधुनिक है। भैया आज का समय यंत्रों का जमाना है, और भैया समय की हमें बचत करनी है, लागत हमें कम करनी है, तो भैया हमें यांत्रिक चीजों पर आना पड़ेगा।
0: बिल्कुल भाई यांत्रिक चीजों पर आना पड़ेगा, और साथ ही साथ देखो आजकल तो AI से जो है हमारी खेती किसानी के लिए पूरी जानकारी मिल रही है।
1: बिल्कुल भैया, देखो चाहे वो मिट्टी परीक्षण हो, चाहे भैया उन्नत और प्रमाणित बीज हो, तो और भैया चाहे वो आधुनिक सिंचाई हो, तो भैया इनसे क्या होता है कि हमारी लागत भी कम होती है और हमारे किसान भाई भैया अपने जो देश की तरक्की में योगदान भी देते हैं।
0: बिल्कुल भाई, देखो देश की तरक्की में जहां तक किसानों के योगदान की बात है, तो भाई हमारा किसान इसी तरह से लगा हुआ है जैसे देश का जवान लगा हुआ
1: बिल्कुल
0: है ना
1: भैया
0: भैया। हमारा जवान रात दिन सीमा पर खड़ा है, और भैया हमारा किसान रात दिन अपने खेत पर खड़ा होकर अपनी फसल की पैदा करता है, और भाई हमारे देश का भरण पोषण करता
1: बिल्कुल
0: है ना
1: भैया
0: भैया। और इसी तरह से भाई जब स्वतंत्रता दिवस की बात है, तो भाई 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने सभी किसान भाइयों को, माताओं बहनों को हरियाली तीज के अवसर पर भी एक बार फिर आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।
1: बिल्कुल भैया, हमारी जो माताएं बहनें हैं भैया, उनका आज दिन भी है भैया, हरियाली तीज का त्योहार भी है, तो भैया उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल भैया, और देखो जैसा आप बात कर रहे हो अभी कि भैया आधुनिक खेती और पारंपरिक खेती के बारे में, है ना भैया। देखो पारंपरिक खेती क्या थी भाई, जब साधन नहीं थे हमारे किसान भाइयों के पास तो क्या काम करा भैया, अपने खेत में खेत हमारा पट पड़ा, बारिश हो गई तो भैया हमने जो है धान बखेर दिया और खेत में हमने भैया जाकर देखा नहीं।
1: बिल्कुल भैया
0: और आज भैया आधुनिक युग है, हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे कृषि अनुसंधान कर दिए जिससे भैया ऐसे ऐसे कृषि यंत्र बन गए जिससे भाई हम बेमौसम की फसलें भी उगा सकें, और भैया मौसम की फसलें उगा कर तो हमारे किसान भाई लाभान्वित हो ही रहे।
1: बिल्कुल भैया, देखो आज का जो समय है बदलता युग का समय है। आज के समय में हम पहले हमें जो हमारे जो किसान भाई थे उन्हें मौसम की जानकारी नहीं मिलती थी। अब हमारे किसान भाइयों को भैया AI के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अब जो आने वाला मौसम है उसकी जानकारी मिल जाती है, और उसी के आधार पर हमारे किसान भाई अपने खेतों में कृषि कार्य करते हैं।
0: बिल्कुल भाई थारी बात एकदम सही है भाई, देखो समय के अनुसार हर आदमी बदलता चला जा रहा
1: बिल्कुल
0: है ना भैया, इसी तरह से समय के अनुसार हमारे किसान भाई बदल गए, हमारा देश बदल गया, हमारा देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो गया
1: बिल्कुल भैया
0: भाई। हम जो है पहले अपने देश के लिए गेहूं चावल मंगाए कर रहे थे भाई, दूसरे देश हमसे जो है यूं कह देते भाई चावल तुम्हें ये वाला मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: लेना हो तो ले लो, ना लेना हो तो मत लो। लेकिन भाई आज हम अपने देश से बासमती चावल दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं जिससे भैया विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया, और भैया हमारा जो किसान है वो आत्मनिर्भर बन रहा।
0: बिल्कुल देखो आत्मनिर्भर बनना है, साथ ही साथ हमारे देश की तरक्की हो रही है, आर्थिक
1: बिल्कुल
0: स्थिति हमारे देश की सुधर रही
1: बिल्कुल
0: है
1: भैया
0: ना भैया। तो ये तो देखो हमने कुछ बातचीत करी स्वतंत्रता दिवस की और पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती की ओर जो हमारे किसान भाई आज मुड़े हैं, और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा फसलों का हो रहा है।
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया
0: भाई अब देखो बात तो हम और भी करेंगे, लेकिन भाई किसान भाइयों को थोड़ी सी जानकारी और बता दें भाई,
1: बिल्कुल
0: जानकारी यो है कि भाई आज है माह का दूसरा शनिवार।
1: बिल्कुल। और भैया देखो आज हमारा विशेष कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर,
0: बिल्कुल
1: तो भैया आज का जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्तिपूर्ण लोकगीत पर

0: विशेष कार्यक्रम माटी मारे देश की।
1: बिल्कुल भैया, और देखो जैसा हम बता रहे हैं ना, आज हमारा जो है तीसरा शनिवार है भाई अगस्त माह का, तो तीसरे शनिवार को हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुनते थे हेलो लोक मंजरी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन भाई आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाई हम किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्तिपूर्ण लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम माटी मारे देश की सुनवाएंगे। लेकिन भाई उससे पहले कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
0: बिल्कुल भैया,
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
1: तो भाई देखो, संदेश तो हमने सुन लिया कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल भैया,
1: है ना भैया। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और भाई देखो, हमने अपने किसान भाइयों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया हम आज किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुनवाएंगे एक देशभक्तिपूर्ण लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम
4: माटी मारे देश की।
1: भैया देखो, माटी मारे देश की शुरू करने से पहले ये थोड़ी सी

0: तो स्वागत है हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्तिपूर्ण लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम
1: माटी हमारे देश की।
0: और इस कार्यक्रम के साथ में मैं हूं आपका भैया जितेंद्र कुमार
2: और मैं हूं आपका भैया अंकित कुमार।
0: तो भाई सभी का स्वागत है। और भाई देखो आज अंकित भैया स्वतंत्रता दिवस है और भाई आज हमारा देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे देश के वीर शहीदों को, क्योंकि हमारे देश को आजाद करवाने में न जाने कितने वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है
2: और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
0: बिल्कुल,
2: तब कहीं जाकर 15 अगस्त 1947 को आजादी का यह शुभ दिन आया। तो उन वीरों को याद करते हुए सुनते हैं उनकी ये वाणी।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: प्राणों प्यारे तने सुनाऊं मैं उन वीरों के नाम। अगर उन वीरों की बात करें तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन्हें कौन भूल सकता है।
3: बिल्कुल भाई, और इस आजादी में न जाने ऐसे कितने वीरों के नाम हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
2: तो उनमें से एक क्रांतिकारी हैं उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन तक अंग्रेजों का पीछा नहीं छोड़ा।
3: आज शहीद वीर उधम सिंह को आजादी के इस पावन पर्व पर शत शत नमन करते हुए आइए सुनते हैं ये

0: देश को आजाद करवाने में नौजवान बच्चे बूढ़े और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल हो, सभी पर बस एक धुन सवार थी, भारत माता को प्रतंत्रता की जंजीरों से आजाद कराना।
0: चाहे मजदूर हो, किसान हो, सभी ने देशभक्ति का चोला ओढ़ रखा था।
1: और सभी के जबान पर एक ही नाम था, आजादी।
0: आजादी। और आज देश को आजाद हुए पूरे 80 वर्ष हो गए।
1: और हमारे किसानों ने जी तोड़ मेहनत करके देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया।
0: और आज हम विभिन्न खाद्यान्न, चाहे चावल हो, अनाज हो, फल हो या सब्जी हो, और देशों को निर्यात कर रहे हैं।
1: जिससे विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है और हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
0: और विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: देश की अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। देश का बच्चा बच्चा हर समय अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब देश पर संकट आया है तो देश के वीर किसानों और जवानों ने अपनी मेहनत और ताकत का लोहा मनवाया है और देशभक्ति की मिसाल पेश की है।

0: जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान देश के विकास का आधार है।
1: सुबह शाम गांव के किसी भी रास्ते पर या सड़क पर निकल जाइए, आपको पसीने से तरबतर दौड़ लगाते हुए युवाओं की टोलियां मिलेंगी।
0: जिनका बस एक ही सपना होता है, देश सेवा। देश सेवा चाहे वो किसी भी तरह से हो, हर युवा यही सोचता है कि मैं भारतीय सेना।
1: या किसी अन्य सुरक्षा बल में भर्ती होकर देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकूं। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक युवा के मन की बात।
0: ठीक है।

0: देश की रक्षा करने वाला सैनिक सीमा पर खड़ा रहता है, लेकिन उसके पीछे भी एक परिवार खड़ा रहता है
1: जिसमें उसके माता पिता पत्नी और बच्चे होते हैं, फिर भी उन सब की परवाह न करते हुए अपने देश को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है।
0: और जब हाथ में लहराता हुआ तिरंगा देखता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
1: तो आज हम भी स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मिलकर संकल्प लेते हैं
0: कि हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे,
1: हम संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेंगे,
0: हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे,
1: हम प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे,
0: हम सब बेटियों का सम्मान करेंगे, हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे,
1: हम किसानों और श्रमिकों के योगदान का सम्मान देंगे
0: और आगे बढ़कर हम भारत को मजबूत, समृद्ध, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे।
1: आज़ादी के अमृत से सिंचित इस महान राष्ट्र को नमन, उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन जिनके बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत मिला।
0: तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं,
1: भारत
0: जिसमें आलेख अंकित कुमार, प्रस्तुति सहयोग जितेंद्र कुमार, सुवेंद्र सिंह और प्रस्तुतकर्ता अंकित सैनी।
1: भारत माता की जय।

0: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्तिपूर्ण लोकगीतों व रागनियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम माटी म्हारे
1: म्हारे
0: देश
1: देश की।
0: की ये सुना। और भाई अब हम लौट चलते हैं कृषि जगत की ओर। और भाई देखो हमारे किसान भाइयों को अब कुछ बातचीत खेती किसानी की और मौसम संबंधी देते हैं।
1: बिल्कुल भैया
0: तो भैया कुछ मौसम की चिट्ठी हो तो कोई बता दो भैया।
1: भैया, ये चिट्ठी हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ से। और भैया इस चिट्ठी के अनुसार अब आने वाले एक दो दिन भैया हल्की से मध्यम वर्षा होने के अनुमान है।
0: बिल्कुल भैया, तो आप अपने मोबाइल पर मौसम से अपडेटेड रहिए। और भैया जो भी आपको किसी फसल में या किसी अन्य किसी कार्य में अपनी खेती किसानी में काम करना है तो भैया मौसम को देख कर आप काम करें। यदि आपको किसी खरपतवार नाशिका स्प्रे करना है फसलों में तो भैया आप मौसम से अपडेटेड रहिए, क्योंकि भैया आजकल देखो सभी के पास एंड्रॉयड फोन है और सभी भैया मौसम से अपडेटेड रहते भी हैं।
1: बिल्कुल भैया, देखो आज का जो जमाना है टेक्निकल युग है भैया, मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के टाइम में उपलब्ध हैं, तो भैया हमारे किसान भाई मोबाइल ऐप्स के थ्रू भैया मौसम की जानकारी ले सकते हैं और भैया उसी के अनुसार अपनी खेती बाड़ी के काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल भाई, इसमें एक थोड़ी सूचना ये भी है चिट्ठी में कि भैया जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें खरपतवारों की आप निकाई गुड़ाई खुरपी के माध्यम से समय से के अनुसार कर दें। और भैया अपनी दलहनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपनी फसलों में निगरानी बनाए रखें।
1: बिल्कुल भैया, और जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं भैया उसमें जल भराव ना होने दें, अगर हो सके तो भैया उसमें जल निकासी जरूर कर दें।
0: बिल्कुल भैया, और देखो अब हमें घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाइयों से बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो भाई आप हमें चिट्ठी पत्री लिखते रहें, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता।
1: हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारा पिन कोड है 2466-63।
0: क्योंकि भाई आपके चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। क्योंकि भाई और आप हमारे कार्यक्रम में क्या सुनना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य लिखें। और भाई आजकल हमारे किसान भाई चिट्ठी कम लिखते हैं क्योंकि उनके पास एंड्रॉयड फोन है उंगली से चलने वाले, तो वो हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप SMS लिख सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है
1: 94-57-07-82-88।
0: भाई, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 94-57-07-82-88। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार,
1: और अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति।
0: किसान भाइयों
1: राम राम।
0: राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय संध्या की 6:45 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको एक बार फिर से जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम की राज्य स्तरीय रिपोर्ट आकाशवाणी लखनऊ से सुनिएगा आज रात्रि 10 बजे। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अंतर्गत सुनिएगा लघु रूपक सिनेमा में कैद आजादी की गूंज आकाशवाणी दिल्ली से आज रात्रि 9:30 पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण आकाशवाणी लखनऊ से किया जाएगा आज संध्या 8 बजे। चंदन दास की गाई चंद गजलें पेश की जाएंगी सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर। और प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं आज शाम 6:50 पर आकाशवाणी लखनऊ से, जिस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश। और आइए अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा कल

रात्रि 10 बजे ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना कल सवेरे 6:05 पर, रामचरित मानस गान का प्रसारण समय कल प्रातः 6:30 पर, चिंतन सुनिएगा कल सवेरे 6:40 पर, काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 6:45 पर सुनिएगा श्री सुशील कुमार टॉक से काव्य पाठ।

तंबाकू के सेवन से कैसे बचें, ये जानकारी रहेगी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 7:05 पर। इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें, खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा कल प्रातः 7:10 पर। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम रोज ही की तरह सुबह 7:31 पर।

0: अखिलेश कुमार की गाई रागनिया आप सुन सकते हैं कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सुबह 9:25 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला श्रोता सुनेंगे कल दिन में 12:05 पर। फिल्मी संडे प्रोग्राम का समय रहेगा कल दिन में 12:30 पर। और साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका बच्चे सुनेंगे कल दिन में 1:15 पर। प्रताप सिंह चौहान के गाए जौन सारे लोकगीत सुनेगा लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा में कल दोपहर 1:45 पर। जल क्रांति अभियान और कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन ये दोनों ही जानकारियां रहेंगी कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में कल शाम 5:00। युवाणी का समय रोज ही की तरह कल शाम 5:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे चर्चा विषय होगा मूंगफली में सामयिक कार्य और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। साथ ही सुनेगा भेंटवार्ता जिसका विषय होगा खरीफ में लगने वाले रोग कीट और उनकी रोकथाम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जिनसे बातचीत करेंगे नरेश पाल सिंह। श्री कुमुद कुमारी की कहानी दो शर्ट श्रोता सुनेंगे विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर। हेमंत पाठक के गाए गीत हमारे श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में कल शाम 7:32 पर। अदबी दुनिया कार्यक्रम में कलामे शायर पेश करेंगे काजी वकाउ उल हक समय रहेगा कल शाम 7:50 पर। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या की 6:50 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी जिसके प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: पुनीता बहनी।
0: हाँ कृष्णा भैया,
1: देखो अपनी खेती पाती में खर्च हरदम लगा रहा करा था। कबो कबो तो इस खर्च लागा था कि हम पंचन के देखा ही पड़ा था कि वो खर्च की व्यवस्था हम पंच कहाँ से करी।
0: बिल्कुल भैया, जब हमारे सबके सामने इतनी की परेशानी आवत है ना कि भैया जो बीज कहाँ से लाई, खाद कहाँ से लाई, पानी अपने खेतवन में कितना लगाई, यह खातिर देखो समय समय पर साल में यहाँ 3 बाजी अपन सरकार जो उन्हें हमका सबका 2,000 रुपया दे थे, जिसे हम अपनी खेती पाती के यहाँ सारे काम जो है वो कर सके थे।
1: बिल्कुल, किसान सम्मान निधि के रूप में हम पंचन के मिला करत हो पैसा, और वह समय मिला था जब अपन जोताई होत रहा था, कटाई होत रहा था, मड़ाई होत रहा था,
0: जब खेती पाती में सबसे ज्यादा जरूरत हो।

0: सकते हैं।
1: बिल्कुल बहनी, तो सही बात है।
0: और इसके अलावा भैया देखो, हम सब पंच भाई के यहाँ ये जानकारी जो नहीं होती है अपने आसपास अपने खेती पाती से संबंधित, उन्होंने बहुत जरूरी होते हैं। तो भैया यह क्रम सुन ली जाए आज की खबरें।
2: गन्ना किसानों के लिए अहम खबर। लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी ICAR, IISR और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के बीच गुणवत्तापूर्ण गन्ने के बीज के उत्पादन और उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। समझौते के तहत क्वालिटी शुगर केन के सीड प्रोडक्शन के लिए एडवांस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रोग मुक्त, शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ने का बीज उपलब्ध कराना है। इस पहल से किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों का गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, साथ ही लाल सड़न जैसी गन्ने की प्रमुख बीमारियों से फसल को बचाने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर और रोग मुक्त बीज मिलने से गन्ने की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। इससे चीनी की रिकवरी बेहतर होने और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यह समझौता गन्ना किसानों तक अच्छे बीज की पहुंच बढ़ाने, फसल की उत्पादकता सुधारने और गन्ने की खेती को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
1: अपुनीता बहनी,
0: हाँ,
1: देखो अपने बीच में अपने घरे दुआरे जोन बा जोन हरहा गोरु है ना, गैया है, भैंसी है, दूध दे वाले हैं, गाभिन है, तो उनकी हरा चारा साल भर कैसे मिले, हम पंच कौन प्रबंध करी, ऐसी कुछ पत कही आज अपने बीच में है।
0: बिल्कुल भैया, तो सुन लीन जाए आज की बातें, वर्ष भर हरा चारा उत्पादन। और भैया वार्ताकार है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह,
1: आओ सुना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं, वहाँ वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड मझरा लखीमपुर खीरी से डॉक्टर आर के सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। जहाँ पशुपालन से जुड़े हैं किसान भाई बहन, पूरे साल हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें?
4: नमस्कार, ये समसामयिक विषय है और मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर है। पहला, उत्तम नस्ल के दुधारू पशु एवं पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिकांश किसान हमारे देसी नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। इन पशुओं का जीवन निर्वाह सूखे चारे पर निर्भर रहता है। इन सूखे चारे से कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पशुओं को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, आवश्यक पोषक तत्व खनिज मिश्रण वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। प्रचुर मात्रा में हरा चारा एवं पौष्टिक चारे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पशुओं में उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए एवं विकारों को नियंत्रित रखने के लिए हरा चारा प्रतिदिन आहार में देना अति आवश्यक है। और हरे चारे से कैरोटीन की पूर्ति होती है। दुधारू पशुओं में विटामिन ए हरे चारे से ही पहुंचता है और हरे चारे में पहुंचने के साथ साथ वो पशुओं के माध्यम से फिर मनुष्य के शरीर में भी विटामिन ए जो मिलता है वो दूध से, वो इसी तरीके से आता है। मुख्य रूप से दलहनी चारों पशुओं की आवश्यकता प्रोटीन की करते हैं और दलहनी और अदहलिनी चारों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसलिए जब भी किसान भाइयों को प्राथमिक बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हरे चारे का जब भी समावेश करें आहार में तो दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार के हरे चारे का समावेश पशु के आहार में करना चाहिए।
3: जहां हरे चारे की बुआई नहीं कर पाए हैं किसान भाई बहन, तो क्या अभी भी गुंजाइश है?
4: अभी 15 दिन तक किसान भाई हमारे खरीफ चारे की बुआई कर सकते हैं और खरीफ में उगाई जाने वाली जो चारा फसलें हैं उसमें मुख्य फसल है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मकचरी है और दलहनी फसलों में लोबिया, ग्वार, ये मुख्य फसलें हैं।
3: तो इनकी कुछ खास प्रजातियां होंगी?
4: हाँ, खरीफ की मुख्य चारा की फसलें उनकी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, लेकिन मुख्य प्रजातियों की हम बात करें तो जैसे एक कटाई वाली किस्में होती हैं उसमें पूसा चरी 6 है, पूसा चरी 9 है, हरियाणा चरी है, हरियाणा चरी 117 नंबर, हरियाणा चरी 260 नंबर, यूपी चरी, पंत चरी 23 नंबर, ये चरी हैं जो कि एक कटाई वाली है और इनकी अगर हम बुआई करें तो इसमें 35 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमको को हरा चारा मिलता है,
3: यानी 2.5 एकड़ में।
4: जी,
3: और एकड़ की बात करें तो लगभग 16 से 20 क्विंटल,
4: 16 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ में।
3: और बहु कटाई वाली किस्म,
4: किसान भाइयों अगर हम बहु कटाई वाली किस्मों की बात करें उसमें SSG 988, SSG 989

0: SSG 855, PC 23, PC 29 ये मुख्य रूप से हैं। और जो बहु कटाई वाली किस्में, इनमें भी लगभग इसको हम 3 बार खरीफ के सीजन में कटाई कर लेते हैं। इससे हमको लगभग 110 से 130 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जहां हरे चारे के लिए मक्का लगाना चाहते हैं या बाजरा लगाना चाहते हैं या लोबिया लगाना चाहते हैं, तो इनकी प्रजातियां?
0: मक्का की अफ्रीकन टाल प्रजाति, विजय कंपोजिट प्रजाति, मोती कंपोजिट मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं। और मक्का तो लगभग साल में 2 से 3 बार की बुआई हो जाती है और उपज जो है इससे 35 से 60 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में जो मुख्य प्रजातियां हैं उसमें जॉइंट बाजरा UUJ4M, TNSC1, FMH3, और इनकी उपज लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति टन प्राप्त हो जाती है प्रति हेक्टेयर। और अगर लोबिया की बात करें तो लोबिया में 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक लोबिया होती है कि सब्जी वाली लोबिया होती है और एक दूसरी लोबिया होती है जो कि चारे वाली। तो हमारे पशुपालक बंधुओं को चारे वाली की प्रजाति ही बोना चाहिए।
1: जैसे
0: एशियन जायंट है, EC4216 है, बुंदेला लोबिया बहुत फेमस है, 2 बुंदेला लोबिया 2, बुंदेला लोबिया 1, और EC4216 और UPC287 ये मुख्य प्रजातियां हैं। और लोबिया की उपज में 2 चीजें होती हैं इसमें, तो फली भी कुछ किसान भाई हमारे चारे के साथ खिला देते हैं और उपज इसमें 30 से 45 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा खरीफ के चारे की बात। जहां रबी में चारा उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहां कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी कौन सी प्रजातियां?
0: किसान भाई, सीजन के हिसाब से और जगह के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से रबी की चारा फसलें जो मुख्य हैं उसमें जई है। जई की जो प्रजाति है कैंट है, OS6, OS7, UPO94212, बुंदेला जई 822, 851 ये मुख्य रूप से जई की प्रजातियां हैं।
1: और बरसीम की
0: मुख्य रूप से मेस्कावी हो गई, बरदान हो गई, BL1 हो गई, BL10 हो गई, बुंदेला बरसीम 2 हो गई और बुंदेला BL22, JB1, JB2, JB3 ये बरसीम की उन्नत नस्ल की अधिक उपज देने वाली हमारी चारा की फसलें हैं।
1: रबी हरे चारे में लूसर्न भी है?
0: रबी हरे चारे में लूसर्न बहुत क्षेत्रों में बोया जाता है, खासतौर से बुंदेलखंड रीजन में, और लूसर्न बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको कुछ क्षेत्रों में लूसर्न या रिजका या कहीं कहीं अल्फा अल्फा भी कहते हैं। अगर लूसर्न की बात करें तो लूसर्न की जो मुख्य प्रजाति है लूसर्न RL88, चेतक 244, सिरसा टाइप 98, NDRI सेलकान 1, आनंद 3, NDRI सेलेक्शन 1 और आनंद 3, RL88 ये मुख्य रूप से हैं।
1: जहां जायद में सिंचाई के सुनिश्चित साधन है वहां किसान भाई बहन हरा चारा उत्पादन करना चाहेंगे?
0: हाँ, किसान भाई जहाँ पे, क्योंकि रवि खरीफ के साथ साथ जायद भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय अक्सर चारे की कमी हो जाती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे जापानी ज्वार, मक्का या लोबिया हम पर्याप्त मात्रा में लेके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: कुछ ऐसे बहुवर्षीय चारे जो पूरे साल किसान भाइयों बहनों के पशुओं के लिए आहार बने?
0: हाँ, पशुपालक भाइयों, देखिए सफल पशुधन व्यवसाय के लिए वर्ष भर हरा चारा अत्यंत आवश्यक है। वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। ओवरलैपिंग का मतलब किसान भाइयों, एक फसल के ऊपर दूसरी फसल की बुआई कर देना, और अधिक चारे के लिए मिश्रित खेती करना, और तीसरा है खाद्यान्न फसलों के बीच स्थित जो रिक्त स्थान है, जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें अतिरिक्त चारा प्राप्त कर सकते हैं, और खाद्यान्न फसलों के बीच के खाली समय में, जैसे कि रवि की कटाई के बाद मई जून के महीने में हमारा, और खरीफ की बुआई से पूर्व 60-70 दिन का समय मिलता है, इसमें भी अगर हम मक्का प्लस लोबिया या चरी प्लस लोबिया या बाजरा प्लस लोबिया की मिलवा खेती कर लेते हैं तो लगभग 250 से 300 कुंतल हरा चारा प्राप्त हो सकता है।
1: अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे वर्ष भर हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 94155 77915, 9415577715, 94155 77915।
1: डॉक्टर राकेश कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ कृष्णा भैया।
3: देखो बतकही तापन बहुत होगी, जानकारी भी होगी अपन, लेकिन आज है 15 अगस्त।
4: हाँ? वैसे जो देश प्रेम होते ना, हर आदमी के अंदर पूरा कूट कूट के भरा रहा थे, लेकिन जो आज के दिन आवत है यू दिन कुछ विशेष होते और ई अवसर पर अपने देश के प्रेम के रंग जो होते वो कुछ अलगे होते।
3: तो बहनी यह अवसर पे सुना जाए एक देशभक्ति गीत विवेकानंद व्यास के स्वर में।

0: कृष्णा भैया।
1: हाँ पुनीता बानी।
0: भैया देखो, जैसे हम सब जने अनाज उत्पादन करे थे, कुछ पंच भाई हमारे फूल उत्पादन करे थे, बागवानी करे थे, ये इतना कुछ पंच भैया लोग जो हैं वो सब्जी उत्पादन करे थे और
1: बिल्कुल।
0: सब्जी उत्पादन कर करके अपन जो है जीवन यापन करे थे।
1: तो बहनी, आज के किसान हैं रुद्रपाल सिंह भैया, जो सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक के पाल्हापुर गांव के रुद्रपाल सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, हमारे पास 12 एकड़ जमीन है।
2: सब्जियों का रकबा कितना है इस समय?
3: सब्जियों का रकबा 4 एकड़।
2: तो 4 एकड़ में आप मचान पर सब्जी की खेती के लिए भी जाने जाते हैं?
3: जी हाँ, हमने 2 एकड़ पे मचान की खेती की है।
2: इसकी बुआई कब की आपने?
3: हमने इसकी बुआई दिसंबर के मध्य में कर दी थी और उसको प्लास्टिक से ढक के,
2: यानी
3: लो टनल बना के किया है।
2: तो कौन कौन सी सब्जियां आपने उगाई?
3: इसमें करेला और तोरई दोनों मचान पे।
2: जमाव कब तक हुआ?
3: जमाव इसका 15 दिन में हो गया था।
2: हाँ, और लो टनल कब तक लगाते हैं?
3: लो टनल हम जनवरी 15 जनवरी तक लगाए, जैसे मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है फिर उसको हम हटा देते हैं। जब तापमान अच्छा हो जाता है तो हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं और फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है।
2: तो कोई खास वैरायटी की तरोई और करेला लगाए?
3: हाँ, हमने करेला 2 वैरायटी थी, एक अमनश्री और दूसरा रुसान।
2: मचान पर तरोई और करेला उत्पादन में आप ध्यान में रखते हैं?
3: देखिए, इसको हर हाल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लगा देना चाहिए। बीज लगाने से पहले उसको भिगो के और जर्मिनेट करने की कोशिश करना चाहिए जिसमें अंकुरण हो जाए।
2: जी।
3: दूसरा ये कि उसको तुरंत लो टनल बना के उसको ढक देना चाहिए जिससे गर्मी रहे और पौधा तैयार हो जाए।
2: तो पहली फलत कब से चालू हुई?
3: पहली फलत मार्च में स्टार्ट हो गई थी, 4 मार्च को हमने तरोई निकाल दी थी।
2: और करेला?
3: करेला हमारा 14-15 मार्च को निकला है, तब से लगातार उत्पादन मिल रहा है।
2: इस समय क्या स्थिति है गर्मी में उत्पादन लेने के बाद करेला और तरोई में?
3: नहीं, इस समय उत्पादन तो हो रहा है लेकिन रेट्स बहुत अच्छे नहीं है। विगत वर्ष में हमने इसको समाप्त कर दिया था।
2: अच्छा,
3: लेकिन इस बार हमने ट्रायल किया है कि इसको रखा जाए।
2: अच्छा, तो पहले आप गर्मी खत्म होने के साथ ही बरसात के पहले ही इसको खत्म कर दें, लेकिन इस बार बरसात भी चलाएंगे?
3: इसको हम बरसात भर चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये सितंबर तक चलेगा।
2: लगातार आपको उत्पादन मिल रहा है? तुड़ाई हो रही है?
3: तुड़ाई हो रही है।
2: तो गर्मी में कैसा अनुभव रहा आपका तरोई और करेला का?
3: देखिये, इधर मई से इसके रेट्स काफी डाउन हुए। शुरू में अगर आप देखें तो रेट्स हमारे 8,000 रुपए कुंटल तक के रेट शुरुआत हुए थे, फिर मैं ये 600 रुपए कुंटल पे आ गया। जब इसका अभी तक का हमने एवरेजिंग किया है तो हमारे तरोई का एवरेज 20 रुपए कुछ पैसे है
2: किलो।
3: किलो
2: तो ठीक ही है
3: जी।
2: और करेला में?
3: करेला का उत्पादन तरोई से कुछ कम है और इसका रेट 27 रुपए प्रति किलो। टोटल हमने निकाला कि कितना हमारा उत्पादन अब तक हुआ है और उसमें कितने रुपए आए, उसको हमने डिवाइड करके निकाला है, तो उससे रेट निकला है।
2: मचान पर जब करेला और तरोई का उत्पादन आप कर रहे हैं तो उसका अंतरण क्या रखते हैं,

0: क्या रिज पर बुआई करते हैं?
1: जी हाँ, इसकी बेड बनाते हैं, ड्रिप पे करते हैं।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद मल्चिंग करते हैं, बनाते हैं, उसमें बीज की बुआई करते हैं।
0: तो लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी?
1: पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट।
0: और फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
1: ये सब बड़ा आसान है, हमारे पास ड्रिप सिस्टम है।
0: हाँ।
1: और हम सारे साल्वुल फर्टिलाइजर देते हैं,
0: यानी जल विलेय उर्वरक।
1: जी,
0: फर्टिगेशन के माध्यम से।
1: जी, फर्टिगेशन माध्यम,
0: पानी और खुराक साथ साथ
1: साथ साथ देते हैं।
0: तो इसका अंतरण क्या होता रहता है?
1: ये हम लगातार हर तीसरे दिन में एनपीके, फिर एनपीके के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका एक शेड्यूल बना रखे हैं। तो हमारा 2 दिन के गैप में हम लगातार इसको देते हैं
0: और उसका असर फलत पर दिखता है,
1: बहुत अच्छा आता है।
0: कुछ रोग दोक और कीड़े मकोड़ों की भी समस्या आती होगी?
1: हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस समय ब्लाइट आती है
0: जी,
1: तो उस समय हमको अच्छे फंगीसाइड की जरूरत होती है और अच्छा फंगीसाइड हमको स्प्रे करना पड़ता है। फल मक्खियां लगती हैं, इसमें फल मक्खियों का प्रबंधन करना पड़ता है।
0: तो क्या कुछ आईपीएम के उपाय भी अपना रहे हैं?
1: जी हाँ,
0: फल मक्खी ट्रैप लगाते हैं?
1: ट्रैप लगाते हैं, ट्रैप से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन हमको स्प्रे भी करना पड़ता है।
0: अगर नुकसान का स्तर अधिक होता होगा तब?
1: जी,
0: ऐसी उम्मीद है। इस समय भी निकासी चालू है?
1: जी हाँ, इस समय निकासी चालू है। देखिए, जितना उत्पादन हो चुका है अब उतना उत्पादन तो नहीं होगा,
0: लेकिन अगर अभी तक के उत्पादन का आंकड़ा निकालें
1: जी,
0: तो अब तक कितनी लागत गिरी, कितना तक उत्पादन लिए और आपका मुनाफा अब तक कितना हुआ?
1: देखिए, अब तक का हमारा जो तरोई का है वो 150 क्विंटल क्रॉस किया है 1 एकड़ में
0: जी,
1: और उसका रेट 20 रुपए के करीब में है।
0: हाँ।
1: और वही 125 क्विंटल करेला किया है जिसका रेट 27 रुपए है।
0: तो लगभग करीब है,
1: करीब करीब है दोनों का,
0: तो लगभग 3 लाख तक पहुंचे,
1: 3 लाख पर एकड़ इसमें आया। और लागत हमारी
0: हाँ।
1: तरोई में थोड़ी कम है, करेले में ज्यादा है।
0: लेकिन कुल लागत की बात करें तो कितनी लागत गिरती है साल में?
1: लागत 2 लाख रुपए दोनों में मिला के।
0: तो आपकी बचत हुई कितनी?
1: बचत हमारी दोनों फसल में 4 लाख रुपए की।
0: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हमारी यही सलाह है कि यदि सब्जी की खेती करनी है तो हमको बहुत ही अर्ली तैयारी करनी चाहिए।
0: या विलम्ब से?
1: विलम्ब से भी की जा सकती है, लेकिन अर्ली के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या तो फिर लेट किया जाए, क्योंकि अब जो आएगी सब्जियां उनका रेट ठीक रहेगा।
0: और कौन कौन सी बारीकी रखें?
1: बीज का चयन ठीक करें, बीज का शोधन करें, कीड़े लग जाते हैं कभी कभी जड़ों में, उसका प्रबंधन करें, देखते रहें कि उसमें क्या बीमारी है और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
0: और रकबे में क्या कर रहे हैं आप 10 एकड़ में?
1: और हम धान 2 एकड़ में, गन्ना और सरसों, गेहूं, ये सब हमने किया है। और हमारा 2.5 एकड़ का एक मछली का तालाब भी है।
0: अच्छा, और तो कुछ औषधि खेती भी कर रहे हैं?
1: हाँ, 2 एकड़ में हमने औषधि की खेती की है, जल ब्रह्मी।
0: तो कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
1: जी ठीक है।
0: साल में कितनी बचत हो जाती है?
1: साल में 10 लाख रुपए के ऊपर ही बचत हो जाती है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 77-55-85-76-99।
0: और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
1: जब मैं खेती में आया तो उद्यान विभाग के संपर्क में आया और उनसे काफी जानकारी की, सरकारी योजनाओं का हमने लाभ लिया। खास तौर पर जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है वो बहुत ही खेती को आसान बनाती है, जिसमें सिंचाई हम जितनी चाहते उतनी दे सकते हैं, फर्टिगेशन जितना हम चाहते उतना कर सकते हैं। और अगर किसान भाई इसका लाभ लें तो उन्हें भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है।
0: रुद्रपाल सिंह भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।

0: कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
1: अब कुछ पंच भैया ईमेल के माध्यम से अगर सुझाव दे चाहते हैं या सुझाव कुछ मांगा चाहते हैं तो वो पता है फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
0: यही के साथ भैया अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार एकांश लखनऊ की तरफ से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
0: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: पराक्रम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अगले 7-8 वर्षों में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, निरक्षरता और असमानता से पूर्ण मुक्ति भी है, जिसके कारण देश लगातार कमजोर हुआ है।
2: आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को यूथ पॉलिसी का तोहफा दिया। उन्होंने यूथ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे भविष्य में युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ अधिकारी सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जवान इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
1: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए किसी एक समूह, जाति, संप्रदाय का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जनभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। कार्यक्रम में जनभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि अन्य मंत्रियों ने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लिया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों

0: में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक अश्मिता डे को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के डीजीपी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को आज अपने सरकारी आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों से संवाद भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 75 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वे मेरठ में कुख्यात अनिल दुजाना से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। हरियाली तीज का त्यौहार आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अयोध्या में सावन झूला मेला की शुरुआत आज से हो गई है। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
1: श्रावण शुक्ल तृतीया पर ऐतिहासिक मणि पर्वत स्थल से पखवारे पर चलने वाला सावन झूला मेला शुरू हुआ तो श्री राम जन्म भूमि मंदिर परिसर में रामलला के विग्रह को परिसर का भ्रमण कराया गया। इसी के साथ प्रमुख मंदिरों में सिया राम के चल विग्रह और स्वरूप रथों पर सुशोभित होकर मणि पर्वत स्थल पहुँचे। वैदिक रीति से पूजन के बाद विग्रहों को विशालकाय वृक्षों पर पड़े झूलों पर सुशोभित किया गया और फिर श्रद्धालुओं ने भगवान के विग्रहों को झूला झुलाकर और मधुर उपासना के गीत से भक्तिमय वातावरण सृजित कर दिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय संध्या के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की काई चंद गजलें।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज के कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई चंद गजलें।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: मुलाकात मुमकिन नहीं, गर मुलाकात।
0: सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई चंद गजलें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 8 बज रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ से अब आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।
3: नमस्कार उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित, नमस्कार बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित देश के बहनों और भाइयों, 80वें देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज का यह दिन उन लाखों वीरों के संकल्प को स्मरण कराने का दिन है जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी अमर वीर सपूतों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जब भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश भी डबल इंजन सरकार के माध्यम से विरासत और विकास के साथ ही उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग तक, युवा शक्ति से स्टार्टअप तक, डिफेंस से डीप टेक तक, प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज केवल बदला नहीं,

बल्कि भारत के बदलाव की गति भी तय कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रदेश को नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कानून व्यवस्था में व्यापक बदलाव के साथ आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश बीमारों से देश के ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्ष में अपने बजट को 3 गुना, जीएसडीपी 3 गुना और प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। वीमेन वर्कफोर्स की सहभागिता 3 गुना से अधिक हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय, वन डिवीजन वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में प्रदेश ने मजबूती के साथ कदम बढ़ाया है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश के पास 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्रस्ताव के माध्यम से 65 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। 4 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में 2.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयां, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक जैसे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण करने के लक्ष्य की ओर यूपी बढ़ा है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट पिछले 9 वर्ष में 19% से घटकर 3% रह गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हुई है। अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। प्रदेश में आयुष्मान योजना से 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी आच्छादित है। विगत 9 वर्षों में 65 लाख से अधिक गरीबों को एक पक्का आवास उपलब्ध कराया गया। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया हो या मुसर, थारू, चेरू, बुक्सा, सहरिया, कोल, इन सभी वंचित समुदायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक अब तक संपन्न किया है। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एपीओस आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृवंदना योजना,

0: सुकन्या समृद्धि एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को गति मिली है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिला शक्ति की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस की भर्ती में अनिवार्य रूप से 20% महिला शक्ति का प्रवेश हुआ है। हमारा लक्ष्य आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने का है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% से अधिक हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक अन्नदाता किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को उनके परिवार के सदस्यों और बटाईदारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 16 लाख किसानों को उनके निजी ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का सृजन किया गया है। हम ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां विरासत का संरक्षण भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता को गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान कराने के लिए युवाओं को नई यूथ पॉलिसी के साथ जोड़ने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपनों को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो, डबल इंजन सरकार की ये संकल्प दृष्टि है। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने हमें आजादी दी, अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्धि, सामर्थ्य और स्वाभिमान की नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यही स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और राष्ट्र के प्रति हमारा संकल्प है। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
0: बुक्सा, सहरिया, कोल, इन सभी वंचित समुदायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 8:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत गीत संध्या। स्वाधीनता दिवस की संध्या पर स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत संध्या में।

गीत संध्या कार्यक्रम का ये पहला गीत श्रोता हूँ। आपने सुना दिव्या कुमार और सचिन जिगर की आवाज़ों में। फिल्म थी गोल्ड, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत था सचिन जिगर का। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। आवाज़ें हैं पद्मिनी कोल्हापुरी, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

द बर्निंग ट्रेन, इस फिल्म में आप सुन रहे थे पद्मनी कोल्हापुरी, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों को। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म हैदर से। गीत लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने और संगीत है विशाल भारद्वाज और मेहंदी हसन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या, और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं के और किश्तिज तरे की आवाज़ों में। फिल्म है द ट्रेन, गीत लिखा है सैयद कादरी ने और संगीत है मिथुन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत एक ही फिल्म से, और श्रोताओं कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म है फिल्म परदेस। ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 अगस्त 1997 को, और इस फिल्म का निर्देशन किया था सुभाष घई ने। मुख्य कलाकार इस फिल्म में थे शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री और अमरीश पुरी। और श्रोताओं, महिमा चौधरी ने इस फिल्म से अभिनय की शुरुआत की थी। इस फिल्म के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। वहीं इस फिल्म के गीतों को आवाजें दी थी कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और एस के चित्रा ने। आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1441। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम

0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान

0: जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण हैं। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत

0: 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country with their determination and dedication made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rash tab mahan banta hai jab apne sapno, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का

0: सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
0: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai parmanu urja, nuclear energy. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य पर जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं.
1: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
0: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं. हम प्रयास कर रहे हैं. हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है.
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं. हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
1: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On Naxalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from Naxalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूँ. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा.
1: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं.
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent takes a glimpse at independence celebrations at the Red Fort today.
2: Independence Day celebrations today commemorated 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram. For the first time, Vande Mataram was rendered during the celebrations at Red Fort. Upon his arrival at the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi was received by Defence Minister Rajnath Singh, Minister of State for Defence Sanjay Seth and Defence Secretary Rajesh Singh. The Guard of Honour contingent for the Prime Minister consisted of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and

0: was on 27 when stumps were drawn this evening. KL Rahul retired hurt at 77. Today's game was cut short to 73 overs due to two rain breaks. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia today interacted with My Bharat NSS volunteers during the Independence Day celebrations in New Delhi. Addressing the volunteers, Dr. Mandavia appreciated their contribution towards social service and encouraged them to actively participate in initiatives aimed at building a Vikasit Bharat. He emphasized that the energy, commitment and innovative ideas of young people are essential for achieving the vision of a developed and self-reliant India. Amrit Udyan will be open to the general public from tomorrow till the 15th of next month. Our correspondent reports that the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम-ए-आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम-ए-आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौम-ए-आज़ादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौम-ए-आज़ादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत की। वहां उनके पहुंचने के बाद लाल किले पर पहली मर्तबा कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया। इस साल की तकरीबात में 2047 तक विकसित भारत की तामीर में नौजवानों के रोल को तस्लीम करते हुए युवा शक्ति की अहमियत उजागर की गई। लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत 25 करोड़ लोग गुरबत से बाहर आ गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्याफ्ता मुल्क बनने का बड़ा निशाना तय किया है। जना मोदी ने कहा कि भारत जो कभी 5 कमजोर मईशतों वाले मुल्कों में शामिल था अब दुनिया में एक बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की

0: शक्ति निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा दौर की बड़ी जरूरियात में से एक है और सरकार ने इस सिलसिले में कई अहम इकदामात किए हैं। उन्होंने कहा कि एटमी तवानाई मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी का एक अहम वसीला है।
0: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 GW न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने साहिल समंदर के 99% इलाके खोल दिए हैं और सरकार अब समंदर की गहराइयों में तलाश का काम सरगर्मी के साथ अंजाम दे रही है और नए ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
0: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
1: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर देते हुए जना मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तिहानात के लिए गरीब और मुतवस्सित तबके के कुनबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान भी किया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI की हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। जना मोदी ने कहा कि इस तरह ये नौजवान आलमी सतह पर AI के शोबों में सरकर्दा रोल अदा कर सकेंगे।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो कुव्वत की 7 धाराओं सप्त धारा को बरूए कार लाएं। जना मोदी ने कहा कि अगले 5-7 साल में मुल्क वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो गुज़श्ता 5-7 दहाइयों में भी हासिल नहीं किया जा सका था।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगले 7-8 साल में मजीद 5 से लेकर 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। जना मोदी ने कहा कि 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
1: पेश है लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे नामा निगार की यह रिपोर्ट।
2: आज यौम आजादी की तकरीबात के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मर्तबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के मकाम पर भारतीय फजाइया के MI-17 तर्ज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए गए। फौज के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने कौमी गीत गाया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस साल लाल किले पर यौम आजादी की तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खसूसी मेहमानों को मदु किया गया था। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: मेजबान श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आजादी का जश्न मनाने में मुल्क की क्यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वह एक मजबूत और खुद कफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वजीर आजम ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और खवातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की कुव्वत को बरूए कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म प्रेम पुजारी 1970 में प्रदर्शित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया, नीरज की कलम से निकला, ST बर्मन द्वारा संगीतबद्ध एक देशभक्ति गीत भी है। आइए सुनते हैं।

0: विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत एफएम कोल्ड पर, जहां पर आज गीतों के संग है देशभक्ति का रंग। फिल्म भाई बहन से गीत आप तक पहुंचा, आशा भोसले जी का गाया गीत, लिरिसिस्ट राजा मेहंदी अली खां, म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता। साफ जाहिर है कि गीत बता रहे हैं देश से प्यार करना बहुत जरूरी है, और ये जो प्यार है सिर्फ शब्दों से हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी हम प्यार देश के प्रति दिखा सकते हैं। जैसे कि सड़क पर चलें तो नियमों का पालन करें, पर्यावरण को बचाएं, ईमानदारी से अपना काम करें, दूसरों को सम्मान दें और जरूरतमंदों की मदद करें। ये सब भी कहीं ना कहीं देशभक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से फिल्म का ये टाइटल ट्रैक है, मुकेश जी की आवाज में, म्यूजिक कंपोजर शंकर जयकिशन, और गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

फिल्म गंगा जमुना से हेमंत दा के स्वर में देशभक्ति गीत आप तक पहुंच रहा है और बस फिल्म संगीत आज यहीं तक, ठीक 10 बजे सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले,

0: स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को मनाया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालयों द्वारा देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गईं। इसी क्रम में मानक नगर विद्यालय की छात्राओं ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। इसी तरह विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इन बच्चों ने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। केंद्र पर इस पुनीत दिवस को कैसे मनाया गया, इसका ब्यौरा देने वाले हमारे सहयोगियों डॉक्टर सुशील कुमार राय और मनीष कुमार की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं वैशाली जौहरी।
2: आकाशवाणी लखनऊ के परिसर में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर केंद्राध्यक्ष श्री आरबी सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिरजू महाराज कथक संस्थान के कलाकारों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की गई। तत्पश्चात राष्ट्रगान का गायन हुआ। इस अवसर पर केंद्राध्यक्ष श्री आरबी सिंह द्वारा कहा गया,
3: इस तिरंगे राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए मेरी ओर से आप सभी को 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये राष्ट्रीय पर्व ही तो है जो हमारे जीवन में उल्लास लेकर आते हैं, जोश लेकर आते हैं और हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। आज हम उन सभी वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। हमारे आज़ादी के मतवालों ने जो सपने देखे थे उनके सपनों को हम साकार करें।
2: तत्पश्चात कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती सुमोना एस पांडे द्वारा स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई।
4: राष्ट्र ध्वज को नमन के साथ मैं सभी हमारे अधिकारियों, हमारे सभी साथियों का स्वागत करती हूं इस पावन अवसर पर और आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश का आज है हम मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो देश के शहीदों, वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया वो सिर्फ एक दिन का याद करने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज के दिन को इसी रूप में मनाते हैं, हम उनको नमन करते हैं। हमें सिर्फ उनकी बलिदानी को याद नहीं करना है, हमें इस आज़ादी को बनाए रखने में भी अपना योगदान देना है।
2: इसी क्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत गीत स्नेहिल श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: कार्यक्रम में अपने देशभक्ति लोक गीतों द्वारा अवधेश बालेश्वर और उनके साथियों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को पूरी प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ मनाया गया। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगियों प्रवीण कुमार और कुंवर बहादुर सिंह द्वारा दिया गया ये विवरण।
1: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा,
2: मेरे प्रिय साथियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, वीर शहीदों के परिजनों

0: और भारत माता की सेवा में समर्पित प्रत्येक नागरिक को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब संपूर्ण राष्ट्र तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक है, तब हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम उन असंख्य ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने हमें केवल स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई।
1: जन भवन में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी ममता उपाध्याय।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन भवन का ऐतिहासिक प्रांगण भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। प्रातः ठीक 9 बजे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का समारोह स्थल पर आगमन हुआ। स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के समूह गान से हुआ और पूरा प्रांगण वंदे मातरम गान से गुंजायमान हो उठा। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया और देश के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहरा उठा। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विकसित भारत 2047 हेतु भारत को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। समारोह के समापन चरण में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सुसज्जित परेड का निरीक्षण कर अभिवादन स्वीकार किया और समारोह का समापन हुआ पुलिस बैंड द्वारा बजाई गई धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ।

0: विधानसभा में मनाए गए 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए आयोजन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी देवाशीष और आसिफ इकबाल।
1: 15 अगस्त के इस पावन और प्रमुख दिवस पर स्वतंत्रता दिवस का त्योहार विधानसभा में भी मनाया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एवं आम जनता ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम के शुभारंभ पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम के गायन के साथ इसके 150 वर्ष पूर्ण होने को और भी गरिमामयी बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
2: पूरे प्रदेश वासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत माता के उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों के स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का यह दिन है, जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल दे करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
3: भारत तेरे चरणों में इतिहास बड़ा मुस्काता है, तेरे गौरव का हर पन्ना वीरों की गाथा गाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी वीर बलिदानियों को नमन किया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगे के सम्मान में समारोह आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के विवरण के साथ ये है आकाशवाणी आगरा का डिस्पैच।
4: 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मोहब्बत के शहर आगरा नगर में भी सुबह से ही देशभक्ति के तराने फिजाओं में गूंज रही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त कार्यालय आगरा में ध्वजारोहण किया। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने झंडारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
5: स्वतंत्रता दिवस पर मेरा इतना ही अनुरोध और इतनी ही प्रार्थना कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर उन भावों को जो कि हमें प्राप्त हुए, विरासत में प्राप्त हुए हैं, उनको जरूर जिए और अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हमेशा देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने कार्य के प्रति ये भाव रखें कि हमको अपनी संकीर्णता से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है।
4: पुलिस लाइन में झंडारोहण किया आगरा नगर के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने। तत्पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा,
6: हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज भारत गणराज्य अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पूरे देश में धूमधाम से मना रहा है। विगत एक सप्ताह से देश की गली गली, प्रत्येक नुक्कड़, प्रत्येक चौराहे पर तिरंगा यात्रा की धूम मची हुई है। यह अवसर हम सभी को उत्साहित करने वाला है ही, साथ ही साथ गौरवान्वित करने वाला है।
4: जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण किया आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने। इसके पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा,
7: आज हमारा देश एक बहुत ही सशक्त देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस पूरी सफर में, इस जर्नी में बहुत सारे हमारे देश के वीर सपूतों ने, चाहे वो हमारे सेना के जवान हो, चाहे वो हमारे सुरक्षा बलों के जवान हो और अन्य हमारे कई ऐसे वीरों ने इस देश के प्रिंसिपल्स को, इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए, इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर किया है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर सपूतों को भी बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
4: मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आगरा छावनी में ध्वजारोहण किया मंडलीय रेल प्रबंधक गगन गोयल ने। इसके पश्चात उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
8: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों एवं महापुरुषों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली एवं एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
3: आकाशवाणी आगरा के डिस्पैच के बाद अब सुनिए आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच।
9: आजादी के 80 साल, संघर्षों का एक लंबा सफर, अनगिनत कुर्बानियां और उन सपनों का भारत जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आंखों में देखा था, उन्हीं स्मृतियों और नए संकल्पों के साथ देश का ये राष्ट्रीय पर्व पूरे देश के भांति जनपद सोनभद्र में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर घर तिरंगा का संदेश यहाँ जन जन के गौरव और अखंडता के पहचान बनकर उभरा, विशेषकर युवाओं के मध्य। वंदे मातरम के गौरव गान और देशभक्ति के नारों के मध्य जनपद का मुख्य समारोह विशिष्ट तेरा स्टेडियम सोनभद्र में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश श्री संजीव कुमार गौड़ ने ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित गणमान्य को शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
10: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर युवा को रोजगार का अवसर मिल सके, किसान को सम्मान के साथ जीने के, हर नागरिक को सम्मान अधिकार प्राप्त हो सके। हमारा देश तभी मजबूत बनेगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निर्वहन करने का काम करेंगे।
9: स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र श्री चर्चित गौड़ ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
11: मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को और यहाँ पे जितने भी हमारे नागरिक हैं, सोनभद्र के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब जनपद सोनभद्र के वासी एकजुट होकर इस स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्र हित में, लोक हित में, प्रदेश हित में और जनपद के हित में सब लोग हम लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे।

0: हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोगों ने राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस तरह उर्जांचल नगरी सोनभद्र में आजादी का जश्न भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ संपन्न हुआ।
1: ये था आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी मथुरा का डिस्पैच।
2: संपूर्ण देश के साथ जनपद मथुरा में भी 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रातः काल से ही विद्यालय के बच्चों के साथ उनके शिक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हाथों में तिरंगा लिए उत्साहपूर्वक भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष के साथ प्रभात फेरियां निकाली। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराकर उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई।
3: हर कार्य में तन मन से सहयोग करूंगा।
2: अपने उद्बोधन में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा,
3: जब भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को सूत्र वाक्य दिया था कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मातरेषु कदाचन, उस मिट्टी पर सेवा करना जहाँ के मिट्टी में जन्म लिए हुए ऐसे हम लोगों के आराध्य ने जब ये संदेश दिया था, तो हम कोई कारण नहीं है कि हम अपने जो पूर्वज हैं, हम लोगों के जो मार्गदर्शक रहे हैं, हम लोग जो संवाहक रहे हैं, उनकी बात हम भूले। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी पदेन जिम्मेदारी है कि अपने साथियों से मोटिवेट करते हुए और उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकालूं। इस दिशा में कई बार सुनाना भी पड़ता है और कई बार सुनना भी पड़ता है। मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी की बिना बताए अगर कोई पीड़ा है तो वो समझ ले।
2: जनपद मथुरा के प्रतिष्ठित संस्थान मथुरा रिफाइनरी में भी 80वां स्वाधीनता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सहस्त्राब्दी स्टेडियम में आयोजित समारोह में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक श्री मुकुल अग्रवाल ने कहा,
4: आज का दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह दिन है कृतज्ञता का, स्मरण का, आत्ममंथन का। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, यह हमें सहज रूप से नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों देशवासियों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान था। आजादी का मूल्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाया, जिन्हें यह पता भी नहीं था कि वे स्वतंत्र भारत के लिए, जिसके लिए वो अपना जीवन दे रहे हैं।

0: नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, वंदे मातरम और देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण के पश्चात मंडलायुक्त श्री राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा,
1: मेरे हिसाब से हमारे पूरे इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है, जिसमें कि सारी पीढ़ियों को तोड़ के हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत लोगों ने उसमें बलिदान दिया था और एक कल्पना की थी कि हम अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और एक विकसित देश के लिए डेवलप करेंगे। और हम देखेंगे कि सभी लोगों ने किसी ना किसी क्षमता में, देश के नागरिकों ने कहीं ना कहीं योगदान दिया और हम आज इस स्थान पे खड़े हैं कि आर्थिक स्थिति में हमारा देश 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया है।
0: रिजर्व पुलिस लाइंस अयोध्या में तिरंगे को सलामी देने के पश्चात एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस बल के जवानों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई और बहादुर जवानों को सम्मानित किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा
2: कि स्मृति का स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का भारत सामाजिक क्षेत्र में नए प्रयासों से समग्र आर्थिक विकास के बल पर वर्ष 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझता हूं कि अमृतकाल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे।
0: स्थानीय जीआईसी प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती रजनी तिवारी ने युवाओं को नशे से बचने की शपथ दिलाई और अपने संबोधन में कहा,
3: यहाँ पे न जाने कितनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, यहाँ पे आज हमारे पूरे प्रदेश, हमारे देश में मजबूती के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए, हर चीज पे ध्यान देते हुए, तकनीकी के कारण हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हम सब लोग निश्चित तौर पे अगर संकल्प ले लें कि देश को विकसित बनाना है तो हम अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं।
4: ये था आकाशवाणी अयोध्या का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच।
5: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से बरेली का आसमान गूंज उठा। शहर के मुख्य चौकी चौराहे पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण किया, महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और साथ ही नगरवासियों का आह्वान किया।
6: सर्वप्रथम आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतवर्ष जिन संस्कारों के लिए जाना गया, जिन संस्कृति के लिए जाना गया, आज अभेद भारत जिसको मुगल भी नहीं झुका पाए, जिसको अंग्रेज भी नहीं झुका पाए, हमारे संस्कारों और संस्कृति को वो चाहकर भी खत्म नहीं कर पाए, आज उस भरे हुए संस्कारों से ओतप्रोत ये भारतवर्ष है। दोस्तों आपको याद रखना है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारतवर्ष के युवाओं पर टिकी है कि भारतवर्ष का युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लगातार पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं, हम लगातार आर्थिक अर्थव्यवस्था में चौथे और पांचवें नंबर पर टिके रहते हैं, अब कोशिश हमारी हो रही है कि हम तीसरे नंबर पर आएं।
5: आजादी का ये जश्न कलेक्ट्रेट परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया। ध्वज फहराने के बाद जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा,
7: आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव और उल्लास का दिन है। हम उन तमाम संत संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सभी लोग मिलकर उनकी यादों को सलाम करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज उन्हीं लोगों की वजह से हम सभी लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। हमें आज के दिन इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
4: ये था आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच। बादलों की ओट में मुस्कुराता सूरज, सुबह की पहली किरण के साथ सड़कों पर गूंजते बच्चों के जोशीले नारे,
8: भारत माता की जय।
4: मानो प्रकृति भी आज तिरंगे के रंग में रंगकर स्वतंत्रता के इस पावन पर्व का स्वागत कर रही हो। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया रामपुर के जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी ने।
9: सर्वप्रथम

0: सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और बधाई। 79 साल हमारी आजादी को हो गए हैं और उसके बाद आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा प्रदेश सरकार के और सरकार के निर्देश हैं, जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आप सभी से अपेक्षित है कि आप न सिर्फ आप स्वयं बल्कि अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, उन सभी को प्रेरित करें कि आज अपने घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे का महत्व यह है कि हम इसके माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं।
1: आज की सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, ये उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाने वाली सुबह थी जिसकी बदौलत हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। गांधी समाधि रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्प्रेरक उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख।
2: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय लिए गौरव की बात है। राष्ट्रधर्म सभी धर्मों में सर्वप्रिय है क्योंकि इसमें जन कल्याण की भावना नियत है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की भांति राष्ट्रहित को प्रमुखता दें एवं राष्ट्र की गरिमा, सम्मान, गौरव और संयोग रखने के हेतु सदा तत्पर रहें। राज्य सरकार प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए साफ नियत, सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है।
1: आज का दिन गर्व का दिन है, संकल्प का दिन है और मातृभूमि के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। भारत के विकास की नव ऊर्जा का संकल्प अपने मन में समेटे आइए मनाएं स्वतंत्रता का ये महापर्व।
3: ये था आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच।
4: स्वतंत्रता की अलख जगाने के साथ साथ आजाद भारत के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों की जन्म और कर्मस्थली रही वाराणसी ने स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ देशभक्ति, श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाई। भगवान भोलेनाथ को प्रिय पवित्र श्रावण मास में आजादी के पावन पर्व के अवसर पर आज हर ओर संस्कृति के चटक और भाव भरे रंगों का अप्रतिम समावेश देखते ही बनता था। मुख्य समारोह ऐतिहासिक वाराणसी कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जहां वाराणसी के जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा,
5: देखिए आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सबसे पहले सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, बनारस के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी युवा पीढ़ी के जो हमारे युवा साथी हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि इस आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोगों ने बहुत बलिदानियां दी हैं। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों को अपना अपना योगदान देना है।
4: वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने विशेष उपलब्धियों के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और देश की एकता और संविधान रक्षा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने कहा,
6: इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी बात की चिंता करे अपने जीवन को, हमारे देश को आजाद कराने के लिए निछावर कर दिया। जिस तरह का सपना उन्होंने एक स्वतंत्र भारत का देखा था, हमको उन सपनों को साकार करना है।
4: सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशाल एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित भव्य स्वाधीनता दिवस समारोह में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा,
7: स्वाधीनता संग्राम केवल एक संग्राम नहीं था। स्वाधीनता संग्राम ने हमको बहुत सारी अक्षुण्ण चीजें प्रदान की है। सबसे पहली चीज जो हमको मिली है, एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान। आज के दिन हमको ये याद रखना चाहिए, कई बार हम अपनी भारतीयता को भूल जाते हैं और अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस भारतीयता को पीछे छोड़ देते हैं। आज का दिन है जब हम इसको पुनः स्मरण करते हैं कि नहीं, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं।
4: राष्ट्रीय उत्सव के उल्लास की अलौकिक छवि बाबा विश्वनाथ धाम में भी दिखी। इस अवसर पर बाबा का विशेष तिरंगा श्रृंगार किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूल और पत्तियों से की गई भगवान श्री विश्वनाथ और पवित्र धाम की साज सज्जा लोग अपलक निहारते रहे। शैक्षणिक

0: स्थानों में इस मौके पर खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच।
2: जनपद प्रयागराज में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर का मुख्य आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज पीयूष मोडिया ने परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
3: जब 1947 में आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी स्वतंत्रता के पीछे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां थी। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से जो स्वतंत्रता हमने पाई, उस स्वतंत्रता के पाने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य उसी दिन से प्रारंभ हुआ।
2: इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
4: इस देश का तिरंगा आज अपनी आन बान और शान से नीले आसमान पर लहरा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये सदैव लहराता रहे। इसी तरह हमारी ऐसी मनोकामना है। इस झंडे का लहराना महज लहराना नहीं है, अपितु इस बात का संकेत है कि हम एक स्वाभिमानी देश हैं और स्वतंत्र देश हैं, और हमारी स्वतंत्रता वो है कि हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया।
2: उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सूबेदारगंज स्थित मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा,
5: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त रेल कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
2: इफको फूलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। परिसर में आयोजित समारोह में इफको के चेयरमैन दिलीप सिंघानी ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
6: इस दिन को मेरी ओर से और पूरे इफको यूनिट के सभी कर्मचारी बंधु बहने और अधिकारी की ओर से पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज सिर्फ स्वतंत्र दिन पे इफको फूलपुर यूनिट और देश के अन्य भाग में आए हुए इफको के यूनिट के द्वारा देश की समृद्धि, सलामती, स्वास्थ्यता, सुरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध।
1: ये था आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच।
7: आज 15 अगस्त है, आजादी का पावन पर्व, गौरव का प्रतीक और हमारे सपनों का दिन। आज झांसी कलेक्ट्रेट सभागार से लेकर विभिन्न स्थानों पर तिरंगे की छाओं में खड़ा पूरा झांसी शहर और गांव एवं झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से गूंजते आजादी के तराने, आज पूरा देश उत्सव में डूबा है। आइए महसूस करें इस ऐतिहासिक सुबह की जीवंत ऊर्जा को। सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं झांसी महानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर जिलाधिकारी महोदय श्री गौरांग राठी जी ने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सूरज प्रसाद वालका इंटर कॉलेज झांसी की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया एवं सभागार में देशभक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। अब जिला कलेक्ट्रेट सभागार से जिलाधिकारी महोदय अपने उद्बोधन के साथ।
8: आज हम पूरे देश में धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की थीम है। इनफैक्ट इस बार इस थीम के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है वंदे मातरम के 150वां वर्ष, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और दूसरा है विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति की महत्ता।
7: श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं झांसी के उस ऐतिहासिक किले पर, जहाँ से 1857 में उद्घोष हुआ था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया और साथ ही शांति के प्रतीक सफेद कबूतर खुले आसमान में छोड़े गए। झांसी दुर्ग की प्राचीर से जिलाधिकारी महोदय अपने विचारों के साथ।
8: सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की इस शौर्य भूमि, कर्म भूमि से, झांसी के इस ऐतिहासिक दुर्ग से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह किला केवल पत्थरों और प्राचीरों से बना स्मारक नहीं है, बल्कि भारत के साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संकल्प का प्रतीक है।
1: ये था आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच।

0: लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी कानपुर का डिस्पैच।
1: दिवस पर्यंत आज अनेक आयोजन हुए। मुख्य समारोह प्रातः 8 बजे ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ, जहां कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। आज के महत्वपूर्ण अवसर की शुभकामनाएं देते हुए कहा,
2: विगत 79 वर्षों में देश ने अपना एक तंत्र तैयार किया है जो डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और इसी के लिए हमारे बहुत सारे वीर सपूतों ने 1857 में भी और 1947 तक अपनी जान दी, तकलीफें झेली, जेल में रहे। इसका भारत में भारतीयों का शासन हो, जो अकाउंटेबिलिटी हो, जो जवाबदेही हो, हम अपने प्रतिनिधि चुन सकें, अपने देश को ऐसा संचालित कर सकें कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो भारत के मूल्य हैं, भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, उस सबको हम उस तरह से पोषित कर सकें, संचालित कर सकें जैसा कि भारतीय चाहते हैं।
1: अगले पड़ाव में हम पहुंचे कानपुर पुलिस लाइन। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने अपने उद्बोधन में कहा,
3: आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये स्वतंत्रता दिवस हमें हमारे अनगिनत जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, अपने तप के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से ये आजादी हमें दी है, ये आज हमारा जिम्मेदारी बन जाता है कि इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, अक्षुण्य बना के रखें।
0: ये था आकाशवाणी कानपुर का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद का डिस्पैच।
4: श्रोताओं, अपने राष्ट्रीय पर्वों को हम सब सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला बिजनौर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम गीत के बाद माननीय जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस पावन अवसर पर जिलाधिकारी जसजीत कौर और अपर जिलाधिकारी FR श्री देवेंद्र पाल के द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस यादगार कार्यक्रम में जिलाधिकारी बिजनौर श्रीमती जसजीत कौर ने आजादी के अमर शहीदों के बलिदान को याद किया।
5: और इतने लंबे समय से 79 ईयर्स हो गए हमारी आजादी को, जिसमें हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, हमारे बच्चे, हम लोग हर बार पे कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ओपनली अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो ये बहुत आसानी से ये जो हमें च्वाइस का अधिकार मिला है, वो बहुत खुशियों से मिला है। बहुत लंबे समय तक आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चला है, बहुत लोग इसमें जुड़े, बहुत हर वर्ग के लोग जुड़े।
4: इस पावन अवसर पर बिजनौर जिले की तहसील नजीबाबाद मुख्यालय में भी सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और नगर के सैकड़ों आम व खास व्यक्ति मौजूद रहे। सवेरे 8 बजे ही माननीय उप जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आप हैं उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह।
6: मैं नगर वासियों को, तहसील वासियों को और संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण देश के और संपूर्ण विश्व में भारतवंशी जहाँ भी फैले हैं, सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे।
0: ये था आकाशवाणी नजीबाबाद का डिस्पैच। आकाशवाणी नजीबाबाद के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी गोरखपुर का डिस्पैच।
7: आज 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर गोरखपुर भी पूरी तरह देशभक्ति, उल्लास और राष्ट्रीय गौरव के रंग में रंगा नजर आया। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और श्री मीणा ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। ध्वजारोहण और शपथ के बाद जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
8: सबसे पहले तो आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये एक दिन है जिस दिन हम जितने भी हमारे जो लोग थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए या जो हम खुली हवा में सांस ले पाए उसके लिए अपनी जो आहुति दी है, अपना जो परिश्रम दिया है, उन सबको एक याद करने का दिन है।
7: अब रुख करते हैं सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम का। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री उदय बोरवड़कर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने

0: संबोधन में महाप्रबंधक ने पूर्वोत्तर रेलवे की उपलब्धियों, रेल परिचालन और यात्री सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।
1: स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इंगित करूंगा। बहराइच नेपालगंज रोड खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे पूर्ण रूप से बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गई है।
0: अब चलते हैं उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
2: आज जब हम इस प्रांगण में एकत्र होकर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं तो यह केवल एक स्थापित परंपरा का निर्वाहन या औपचारिक उत्सव मात्र नहीं है। ये सूर्योदय उन अनाम, अमर, निष्काम क्रांतिवीरों के प्रति हमारी आत्मा की असीम कृतज्ञता प्रकट करने का क्षण है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने यौवन और अपनी अंतिम श्वासों की आहुति देकर हमें इस आजाद फिजा में सांस लेने का अवसर दिया।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये है आकाशवाणी अल्मोड़ा का डिस्पैच।
4: सावन के बरसते बादल और पर्वतों को ओढ़े कोहरे के बीच सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा ने 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह ने ध्वजारोहण किया। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप हैं जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह।
5: भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा ये 80th इंडिपेंडेंस डे है। 79 इयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को कंप्लीट हो गए हैं। ये दिन इसलिए जरूरी होता है कि हमें रियलाइज हो कि जो हम देश आजाद हुआ था इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला था और उसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्मोड़ा जनपद में हम स्वच्छता के लिए एक काम करेंगे। जो अधिकारी गण है वो अपने स्तर से काम करेंगे और जो सिटीजन है वो अपने स्तर से काम करेंगे, जो मीडिया है वो अपने स्तर से काम करेगी, जो हमारे लॉयर्स हैं वो अपने स्तर से काम करेंगे और हर क्षण हम ये कोशिश करेंगे हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रख सकें। यदि कोई कूड़ा फेंक रहा है तो उसको जाके प्यार से समझाए कि बंधु ये सही तरीका नहीं है, इसको या तो अभी अपनी जेब में रख लो और आगे अगर बगल में डस्टबिन है तो उसमें डाल दो। समय लगेगा लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर हम सब लोग पहल करेंगे तो एक एक करके हम लोग इस चीज को सुधार में ले आएंगे।
3: आकाशवाणी अल्मोड़ा के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच।
6: राष्ट्र ने आज अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया। देवभूमि उत्तराखंड में स्वाधीनता का ये उत्सव परंपरागत तरीके से उत्साह पूर्वक मनाया गया। लोक भवन उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा,
7: अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आजादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है, उन पर हमको गर्व है।
6: स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
8: मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
6: पुलिस महिला बैंड की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।
3: ये था आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच।
9: श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रातः 7 बजे विरत तौर पर प्रभात फेरियां स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई और इसके पश्चात प्रातः के 9 बजे विकास भवन परिसर पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी द्वारा ध्वजारोहण

0: किया गया। श्रोताओं, 15 अगस्त 2026 के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर पौड़ी में प्रातः 9:30 पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम प्रेक्षागृह संस्कृति भवन पौड़ी में आयोजित किए गए, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवा जीवित पत्नी तथा शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने अपने उद्बोधन में कहा,
1: स्वतंत्रता का 79 वर्ष का यानी 80वां स्वतंत्रता दिवस का था। यह स्वतंत्रता हमने बड़े संघर्षों से ली है। यह स्वतंत्रता हमारे लाखों लाख नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने अपने प्राणों को नछावर करके संघर्ष करके अपना घर बार नया बार सब कुछ छोड़कर तब यह स्वतंत्रता हमें नहीं।
0: श्रोताओं, इस अवसर पर जनपद की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और साथ में यहाँ क्योंकि हम सभी लोग उपस्थित हैं जो कि जनरली जनता की सेवा से हमारे चाहे राजनीति में या फिर हमारे प्रशासनिक सेवा में या सरकारी विभाग के काफी अधिकारी उपस्थित हैं, तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो हमें बस बहुत संवेदनशीलता से उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना है।
3: ये था आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखेंगे, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे, स्वच्छ सुरक्षित और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और वीर शहीदों के बलिदान से परिचित कराएंगे। चलो उठो संकल्प करें हम, भारत का सम्मान रहे जब तक नभ में सूर्य चमकता, तिरंगा ऊंचा शान रहे, अतीत हमारा दीप बने, भविष्य हमारा पथ बने, भारत फिर ऐसा भारत हो जिस पर हर युग को गर्व रहे। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। वाचन और संपादन सहयोग था सुरेंद्र राजेश्वरी का। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया। सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे।

जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कृत सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण

0: खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह।
3: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
3: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान

हरमनप्रीत सिंह ने दो जबकि संजय राणा ने एक गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दो विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।